0: अकेले तुम जो हम तुम संग है तो फिर क्या गम। तू मेरा दिल तू मेरी जान।
1: I love you daddy।

0: उदित नारायण ने। आरती, अक्सर हम हमारे इस कार्यक्रम के जरिए हमारी सखियों को कुछ ऐसी योजनाओं के बारे में बताते हैं जिन योजनाओं से उन सखियों का लाभ हो, साथ ही साथ ऐसी सरकारी योजनाएं जिससे उनके आसपास के भी अगर कोई लोग रहते हैं तो उनको भी बता के उनको भी इस योजना का वो लाभार्थी बनाए। तो इसी कड़ी में आरती, आज हम हमारी सखियों से जो जिस योजना के बारे में चर्चा करेंगी वो है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। ये योजना भारत सरकार द्वारा विशेष रूप से 60 वर्ष या उससे अधिक आयु की वरिष्ठ नागरिकों के लिए चलाई गई एक ऐसी सामाजिक सुरक्षा और पेंशन योजना है सखियों, जिसमें भारतीय जीवन बीमा निगम के माध्यम से संचालित किया जाता है इसे। साथ ही योजना जो है नए निवेशकों के लिए 31 मार्च से चालू की गई है और इस योजना से जो कई नियम है और कुछ ऐसे कुछ मुख्य विवरण है वो आरती आप हमारी सखियों से बताइए कि मतलब ये इस योजना में क्या क्या विशेषता है जो ये हमारी जो सखियां हैं इस योजना का लाभ ले सके या अपने आसपास के लोगों को भी।
1: ये जो योजना है शीतल, ये योजना LIC द्वारा चलाई गई थी और अभी इसकी जगह जो नई एक योजना आ गई है वरिष्ठ नागरिकों के लिए सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। तो ये जो योजना है इसमें जो आवेदन है ये 31 मार्च 2023 तक ही स्वीकार किए गए थे और इसका उद्देश्य था कि वरिष्ठ नागरिकों को नियमित पेंशन और सुरक्षित निवेश का विकल्प प्रदान किया जा सके। साथ ही इसमें 60 वर्ष या उससे अधिक के आयु के नागरिक जो है वो इसके पात्र थे और निवेश सीमा भी जो थी वो अधिकतम 15 लाख प्रति व्यक्ति योजना के अंतिम नियमों के अनुसार थी। और मालूम है कि ये पेंशन जो विकल्प है इसमें कैसा था, इसमें मासिक, तिमाही, अर्धवार्षिक, वार्षिक सब तरीके से पेंशन का विकल्प था और सरकार द्वारा गारंटेड रिटर्न भी था और परिपक्वता जो है वो 10 वर्ष की थी। तो लेकिन अब ये जो स्कीम इसमें लास्ट जो है वो 31 मार्च 2023 तक ही स्वीकार किए गए थे निवेश के आवेदन, वर्तमान में योजना निवेशकों के लिए उपलब्ध नहीं है।
0: तो
1: इस तरीके की जो योजनाएं हैं ये समय समय पर जब भारत सरकार चलाती है तो लोगों को इससे काफी फायदा होता है क्योंकि देखिए हम जब रिटायर्ड होते हैं तो जो गवर्नमेंट जॉब में होते हैं उनके एक पेंशन दी जाती है, लेकिन जो गवर्नमेंट जॉब में नहीं होते उनको ये अपने भविष्य के लिए कुछ ना कुछ सोचना पड़ता है और उसके लिए कुछ छोटा मोटा अमाउंट यदि हम निवेश करते हैं तो जिस समय हम रिटायर्ड हो जाए, मतलब हमारी एज ऐसी हो जाती है कि भाई हम और काम नहीं कर सकते, तो उस समय इस तरीके की जो योजना है इसमें हमारा किया गया निवेश जो है वो हमारे लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। और अब इसमें सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम जो आगे आ गई है इसके द्वारा भी ये योजना जो है देखा जाए तो ये उसी का ही नया रूप है और इसमें वरिष्ठ नागरिकों के लिए इसमें भी बहुत सी चीज़ें हैं नई, लेकिन आज जो हम बात कर रहे थे हमारी इस स्कीम के बारे में इससे काफ़ी सारे हमारे वरिष्ठ नागरिक जुड़े हुए हैं, उन्हें पता है कि उन्हें इस योजना का कितना फ़ायदा रहा है और गवर्नमेंट जो है वो आगे भी इस तरीके की जो योजना है उसे नाम बदल कर दूसरे तरीके से भी और भी चला रही है। तो अगर इस तरीके की कोई स्कीम से आप नहीं जुड़े हैं तो आप ज़रूर जुड़ें ताकि आपका जो बुढ़ापा है, जो भविष्य है वो सुरक्षित हो सके। तो शीतल, बातें हमारी चलती रहेगी, आइए लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक।
2: एक नर्स और उसके अंतर्मन की
3: आगे सैलरी नहीं झुमके
4: ना, पहले बचत,
3: पहले झुमके।
4: सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री।
3: लेकिन झुमकों का क्या,
4: जाती हो कि लगाओ इंजेक्शन।
5: RBI कहता है
6: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।

0: फिल्म बागवान का ही प्यारा सा गीत आप सुन रहे थे सुदेश भोसले और अलका याग्निक की आवाजों में। शीतल, जहाँ हम रहते हैं ना, वहाँ पे हमारे आसपास बहुत सी चीजें होती हैं, हमारा अच्छा सा वातावरण होता है वहाँ का, और वहाँ देखिए काफी सारे पक्षी, पेड़ पौधे, एनवायरनमेंट जो कहते हैं वो सब कुछ होता है। तो ये जो हमारा रहने का एनवायरनमेंट है, ये खाली इन्हीं चीज़ों से नहीं बनता कि हमारा जो घर है उसमें क्या है क्या नहीं, आसपास में खाली पेड़ पौधे हैं कि नहीं है, बल्कि ये जो एनवायरनमेंट है ये तब अच्छा बनता है जब हमारे आसपास के लोग जो हैं उनसे हमारा अच्छा संबंध रहे और अच्छे लोगों के बीच हम रहें। यानी कि कहने का मतलब है कि हमारे आस पड़ोस में जो लोग रहते हैं उनका काफ़ी असर हमारे ऊपर पड़ता है, और इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम अपने पड़ोसियों से जो हमारे पास रहते हैं उनसे हम एक बहुत ही अच्छा संबंध बनाए रखें। क्योंकि देखिए, इंसान जो है वो एक सामाजिक प्राणी है और समाज में ही वो उठता बैठता रहता है। आज हर कदम पे हम ऐसे नहीं कि हम सारे काम अकेले कर लेंगे। अकेले ठीक है कि हम अपनी सफलता की राह में हम आगे बढ़ने के लिए पीछे नहीं देख सकते, उसमें हमें अकेले चलना पड़ेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम जीवन में ही अकेले रहें, हम किसी से मिले ही नहीं, किसी के साथ कोई संबंध नहीं बनाए, ऐसा नहीं है। इंसान जो है वो सामाजिक प्राणी है, तो उसको सबसे संबंध रखना, सबके साथ हिलमिल कर रहना बहुत ज़रूरी है, तभी जो है वो समाज और समाज से देश बनता है। और हमारा देश तो ऐसे भी देखिए कि विश्व को हमेशा हमारे देश का जो है एक उदाहरण मिलता है, हमारे देश की जो संस्कृति है, जो विरासत है, ये लोगों के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करती है। और खासकर अतिथि देवो भव वाली जो हमारे यहाँ पे जो आदत है उसकी वजह से हमारा ये जो पूरा विश्व है ये मंत्रमुग्ध हो जाता है। तो ये सब चीज़ें तभी हमें डेवलप हो पाती है, या हम ये कह सकते हैं कि सब चीज़ें तभी विकसित होती हैं जब हम अपने आसपास के लोगों से एक संबंध बनाते हैं, लोगों से मिलते हैं, लोगों के साथ अच्छे व्यवहार रखते हैं, तभी ये जो भावना है ये हमें आगे आती रहती है।
1: एकदम आपने सही कहा कि हमें, मतलब अक्सर क्या होता है ना कि हम लोग आरती जो है कि इस झिझक में भी अपने आसपास के लोगों से, अपने पड़ोसियों से बात करने से कतराते हैं कि वो सामने वाले का व्यवहार कैसा होगा, कि हमारे बारे में हम उसे क्यों बताएं, लेकिन ऐसा नहीं है। और बाहर शहरों में तो मतलब इतनी हेक्टिक भरी लाइफ है लोगों की कि उन्हें यही नहीं पता रहता कि हमारे पड़ोस में कौन रहता है। तो ये भी थोड़ा सा गलत है कि, मतलब मैं ये नहीं कहती कि एकदम ही हर किसी के पास जाके आप अपने पूरे जीवन का कच्चा चिट्ठा खोल दो, लेकिन सबके साथ व्यवहारिक रूप से रहना चाहिए, क्योंकि कब किसकी ज़रूरत पड़ जाए पता नहीं चलता। और बात अगर करें हमारे आस पड़ोस में हमारे पड़ोसियों से अच्छे संबंध बनाने की, तो उसकी शुरुआत तो हमेशा सिर्फ एक अच्छी मीठी मुस्कान से आप कर दो तो ही बहुत होता है। कि अगर हम अच्छे से मुस्कान भरी बातों से सुबह सुबह एक अभिवादन, गुड मॉर्निंग का कर दे, या उनके हालचाल पूछ ले, या देखा जाए तो उनके सुख दुख में साथ दे देना, उनकी निजता का हम सम्मान कर ले, तो ऐसी छोटी छोटी जो बातें अगर हम करते हैं तो, या छोटे मोटे जो हम सहयोग करते हैं, उससे ही जो रिश्ते होते हैं वो हमेशा मजबूत बनते हैं।
0: ये बात एकदम सही है। और देखिए शीतल, आपने जो कहा कि शहरों में लोगों को पता ही नहीं रहता कि हमारे आसपास कौन है, तो ये बात आज के समय बहुत ज़्यादा हम महसूस करते हैं। देखिए ना, बड़े बड़े शहरों में लोग अपने फ्लैट में रहते हैं और वो एकदम अलग रहते हैं, उनके आसपास कौन रह रहा है कौन नहीं है, लोग जानबूझ के भी ऐसे हो जाते हैं कि भाई हमें क्या करना, कौन हमारे पास रह रहा है। लेकिन कई बार ऐसी विकट स्थितियां होती हैं कि उसमें हमें किसी सहारे की जरूरत होती है, और उस समय जब हम किसी को नहीं जानते, किसी से नहीं मिलते जब अगल बगल में, तो उस समय बहुत दिक्कत होती है। भाई आज के समय में हम देखते हैं कि लोगों के, लोग जब शहर में रहते हैं उनमें एकाकीपन बहुत ज़्यादा हो जाता है। कारण ये है कि जो जीवन हम अपने घरों में अपने परिवार के बीच में रहकर गुजारते हैं, लेकिन जब धीरे कोई काम की वजह से हमें कहीं बाहर जाना पड़ता है या अलग रहना पड़ता है, तो उस समय हम एकदम अलग हो जाते हैं। और ऐसे में क्या होता है कि जो छोटा परिवार रहता है उसमें बच्चे भी जो है वो कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत अकेला महसूस करते हैं। तो ये ज़रूरत होती है कि बच्चों के साथ खेलने के लिए कोई हो, बच्चे किसी से मिले। तो हम जब अपने आस पड़ोस के पड़ोसियों से अच्छा रिश्ता रखते हैं, उनसे एक मजबूत संबंध बनाते हैं, तो उनके बच्चे हमारे बच्चे आपस में मिलते हैं, खेलते हैं, हम भी किसी से एक बात करते हैं, किसी के साथ बैठते हैं, अपनी जो भावनाएं हैं वो शेयर करते हैं, तो इससे क्या है हमको भी बहुत अच्छा महसूस होता है। तो ये जो हमारे यहाँ का जो ये कल्चर था ये आजकल लोगों में धीरे धीरे कम हो रहा है। इसका कारण कहीं ना कहीं जो है ये मोबाइल और सोशल मीडिया का भी असर है। तो ठीक है कि आप आधुनिकता जो है इसे अपनाइए, लेकिन इस लेवल तक आधुनिकता नहीं होनी चाहिए कि आप ये भी ना देखिए कि आपके आसपास कौन है, और आपको अगर कोई देख के आपसे मिलना चाह रहा है तो आप उससे मिले ही नहीं, सिर्फ अपने काम में मशरूफ रहे, इस तरीके की स्थिति जो है ये अच्छी नहीं। क्योंकि आज तो चलिए आप सब तरीके से ठीक है, आप रह सकते हैं अकेले, लेकिन भगवान नहीं करे कि कभी आपकी ऐसी स्थिति हो जाए कि आपके लिए अकेला रहना मुश्किल हो जाए, तो उस समय ये जो आपके अगल बगल लोग रहते हैं ये ही आपके किसी ना किसी तरीके से सहायता करते हैं।
1: एकदम सही कहा आपने आरती। और आरती सबसे पहले बताओ, जो आपने एक बात कही कि ये जो कल्चर जो हमारा जो खत्म हो रहा है, आपने देखा होगा पहले के समय में अगर किसी के घर में शादी ब्याह है तो शादी ब्याह में घर के लोगों से ज्यादा आस पड़ोस के लोग पूरा मतलब सारा काम कर देते थे, पता ही नहीं चलता था। अगर किसी के घर में कोई दुख का माहौल हो गया है तो भी पूरा उनका जो ध्यान रखना करना सारा कुछ जो है हमारे आस पड़ोस में रहने वाले ही करते थे। लेकिन समय के साथ आधुनिकता के साथ भी जैसा आरती ने कहा,
0: ज्यादातर देखिए शहरीकरण में ही ऐसा हो रहा है, क्योंकि गांव में लोग आज भी देखिए एक दूसरे के घर चले जाते हैं, कोई बीमार है तो सब उसका मिलके कर देते हैं काम, किसी के घर में शादी है तो सब मिलकर काम भी कर देते हैं। लेकिन हम क्या है कि अब सब चीजें देखते हैं कि भाई पैसा फेंका और काम हो जाएगा, हमें किसी की जरूरत नहीं है। ये जो हमारी सोच आ गई है ना, इसकी वजह से ये सब हो रहे हैं।
1: नहीं, आपने जैसा आपने कहा आधुनिकता सखियों अपनाना चाहिए, समय के साथ सबको आगे बढ़ना है। लेकिन समय के साथ हम इतना आगे भी ना बढ़े कि हम पीछे जब मुड़ के देखें तो हमारे आसपास कोई खड़ा ही ना हो। तो यही है कि अगर आप भी अपने पड़ोसी है आसपास जो भी आपके रिश्तेदार रहते हैं, और मैं कहती हूँ पड़ोसी क्यों, आप अपने रिश्तेदारों के साथ भी अच्छे संबंध बनाइए। अक्सर हम हमारे काम में और इसमें यही भूल जाते हैं, पहले तो मतलब घर में इतने सारे रिश्तेदार आते थे कि पता ही नहीं चलता था कौन चाचा है, मतलब इतने सारे हो जाते थे आरती। आज के समय में हमारे बच्चों को यही नहीं पता है कि हमारे चाचा कौन है, हमारी मासी कौन है, क्योंकि वो चीज़ें ही खत्म हो गई है। कि मैं तो कहती हूँ पड़ोसी तो चलो ठीक है, आपके आसपास में रहते हैं उनसे भी अच्छे संबंध बनाने चाहिए। रिश्तेदारी भी लोग निभाना बंद कर दी है कि मतलब जो कजिन रिलेशंस होते थे पहले तो उनको भी बहुत बड़ा मान दिया जाता था।
0: भाई पहले लोग ऐसा सोचते ही नहीं थे कि हमारे कजिन है या हमारे चाचा का बेटा है या बहन दूर की है, ये वर्ड्स कभी हम सुनते नहीं थे। लोग यही कहते थे कि हमारी बहन है, चाहे वो कितना भी दूर का रिश्ता हो। लेकिन अब लोगों में ये बहुत ज्यादा आ गया कि ये हमारे कजिन है, ये हमारे ओन है, तो इसकी वजह से ये जो दूरियां ये बढ़ती जा रही हैं।
1: तो बस यही है सखियों, हम आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि जीवन में मिठास मधुरता बहुत जरूरी है, और इसके लिए आपको अपने रिश्तों में भी मिठास लाना जरूरी है, चाहे वो आपके आस पड़ोस के रिश्ते हो, चाहे आपके खुद के घर के रिश्ते हो, सब में मिठास लाना बहुत जरूरी है। मधुरता से रहिए तो देखिए आपका जीवन जो है बहुत ही अच्छे से आराम से सुचारू रूप से चलेगा। अब आरती हमारी सखियों से हम और भी कई विषय है जो हमें आगे उनसे बात करनी है, लेकिन उनसे पहले उनका एक मनोरंजन भी कराना जरूरी है, तो सुनाते हैं उन्हें एक प्यारा सा गीत।

0: खत कर दी आपने। इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति की आवाजों में। शीतल, मुझे तो क्या है, खाना खाना बहुत पसंद है।
1: अच्छा।
0: और खाने में भी कुछ अलग अलग चीजें जब होती हैं तो खाने का मजा ही कुछ और होता है। लेकिन देखिए, खाना जो है ना वो भी कई तरीके का होता है। एक एकदम सात्विक भोजन होता है जिसमें कुछ भी मतलब एकदम सादा खाना जिसे कहते हैं, मिर्च मसाले वगैरह ज्यादा नहीं, कोई लहसुन प्याज नहीं, एकदम सिंपल खाना जो होता है वो सात्विक जो भोजन होता है, उस भोजन का एक अलग ही टेस्ट आता है। और भाई ऐसा भोजन हम लोग सोचते हैं कि भाई किस जब इसमें प्याज वगैरह नहीं हो तो क्या अच्छा लगता है, कि आज के समय बच्चों को बोलो ऐसे खाना खाने तो बच्चे ऐसे ही कहेंगे कि प्याज वगैरह बिना कुछ मजा थोड़ी आता है खाने का। लेकिन सही देख मायने में देखा जाए कि इस तरीके का जो सात्विक भोजन होता है, जो एकदम कम मिर्च मसाले और इन चीजों से बना होता है, इस खाने का एक अपना अलग ही स्वाद आता है। और ऐसा लगता है कि जैसे ये भगवान का प्रसाद है और वो हम खा रहे हैं। तो खाने का जो है इसका असर भी इंसान पे अलग पड़ता है, क्योंकि जब हम सात्विक भोजन करते हैं तो उसका असर भी हमारे ऊपर बहुत बढ़िया पड़ता है।
1: एकदम आपने सही कहा। और देखिए आजकल क्या है ना कि बच्चे जो है बाहर का मिर्च वाला तेल मसाला भुना वाला खाना खाते हैं, तो जैसा वो खाना खाते हैं ना, जैसे वो कहते हैं ना कि जैसी सोच होती है जैसा खाओ खाना वैसी सोच हो जाती
0: जैसा
1: है,
0: जैसा खाए अन वैसा
1: हो जाए मन। तो एकदम आपने सही कहा, तो वही बच्चों के दिमाग में वही आ जाता है, बच्चों में एग्रेशन आने लग गया।

0: से मंगाना जो है वो चालू कर दिया गया है कि कुछ भी अगर काम है तो चलो, आप अगर बहुत ज़्यादा थके हुए हैं या बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो आप बाहर से खाना मंगा लीजिए, लेकिन अगर एक ऐसे ही बस अपनी सहूलियत के लिए कुछ नहीं तो आज बाहर से ही खाना मंगा ले तो वो ना कीजिए, क्योंकि जो घर के खाने का स्वाद होता है ना आरती, वो बहुत अलग होता है। और शुद्ध सात्विक भोजन जैसे जो बिना प्याज लहसुन का खाना होता है, आप देखिए कि आप बड़े बड़े जितने भी मंदिरों में जाएंगे, चाहे वो श्रीनाथ जी नाथद्वारा का मंदिर हो, चाहे जगन्नाथ भगवान का मंदिर हो, चाहे बालाजी का मंदिर हो, यहाँ पे आपको हमेशा बिना प्याज लहसुन का शुद्ध सात्विक खाना ही मिलेगा। और आप देखिए उस खाना खाने के बाद जो हमारी एनर्जी होती है शरीर की, वो एक अलग ही होती है। शरीर में एक पॉजिटिव नियति आ जाती है, हमें अच्छी सकारात्मकता हमारी जो हो जाती है शरीर में। तो खाना हमेशा घर पे भी आप बनाइए सकती हैं तो शुद्ध सात्विक ही बनाइए, और बाहर के खाने को या तेल, ज़्यादा तेल घी का भुसा खाना जो है वो आपके स्वास्थ्य के लिए भी खराब है।
1: और ये जो सात्विक भोजन है ये स्वस्थ मन का आधार इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि देखिए ये जो खाना होता है कम मिर्च मसाले जब हमारे पेट में जाएंगे तो देखिए ऐसे भी हमारे शरीर के लिए बढ़िया है। जितना कम मिर्च खाएंगे, देखिए हरी मिर्च जो है वो इंसान को इतना नुकसान नहीं पहुंचाती है, लेकिन जो लाल मिर्च है ये हमारे लिए बहुत नुकसान करती है। और कितने तरीके के मसाले बाजार में आते हैं, कई अलग अलग सब्जियों के लिए अलग अलग तरीके के मसाले, तो उनमें काफ़ी ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो हमारे शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाती है, और काफी तरीके के प्रिजर्वेटिव भी इसमें डाले जाते हैं ताकि ये खराब नहीं हो मसाले, तो ये सब जाके कुल मिला के हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन जो सात्विक भोजन होता है उसमें हल्की सी मिर्च नमक हल्दी बस यही डली होती है, ज्यादा कुछ भी हमें मिलेगा नहीं, नींबू और या फिर धनिया पत्ती इस तरीके की जो चीजें डली रहती है ये हमारे शरीर के लिए भी बढ़िया होता है। और ऐसे भी हम देखते हैं जब बीमार आदमी होते हैं तो उनको एकदम प्लेन जो खाना दिया जाता है तो वो खाना खाने के बाद वो अपने आप को अच्छा महसूस करते हैं। तो अगर हम अपनी रूटीन ऐसे रखें कि भाई हम रोज साफ साफ सुथरा सात्विक भोजन करें तो उससे हमारी जो हेल्थ है वो अपने आप ही मेंटेन रहती है। भाई आज हम उटपटांग चीजें खाते हैं और उसके बाद हम जिम जाने की कोशिश करते हैं, अपना वजन कम करते हैं, तो इसको करने की बजाय अगर हम अपने खाने पर कंट्रोल कर लें तो हम अपने आप ही हमारा जो वजन है और हमारा दिमाग है दोनों ही कंट्रोल रहेंगे। और रही बात ये कि भाई कुछ ना कुछ तो हम कोई वो है नहीं भाई साधु संत की हम हमेशा ही कभी कुछ नहीं खाएं, कभी कभार कोई चीज़ खाने में इतना नुकसान नहीं है, लेकिन एक आदत जो हम डाल लेते हैं अपने कि 2 दिन हुए नहीं हमें बाहर का खाना खाना है, हमें मसालेदार खाना है, इस तरीके का जो भोजन हम बार बार करते हैं ये कहीं ना कहीं जाकर हमारे शरीर के जो आंतरिक अंग है उनको नुकसान पहुंचाते हैं।
0: एकदम सही कहा। और सखियों मैं आपसे बस यही कहना चाहूंगी कि घर पे आप हमेशा शुद्ध सात्विक खाना ही बनाइए, क्योंकि देखिए अक्सर हम हमारे बच्चों को बाहर के जो पिज्जा बर्गर खिला रहे हैं आरती, उससे आजकल छोटे छोटे बच्चों में भी मतलब डायबिटीज 2 जैसी बीमारी आने लग गई है। मतलब मोटापा तो देखिए एक कॉमन बात हो गई है, बट डायबिटीज 2 जो छोटे बच्चों में होने लगी है उसका कारण यही है,
1: ओबेसिटी है, डायबिटीज है और बीपी है,
0: ये मतलब छोटे छोटे 10-10, 11-11
1: कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है
0: बच्चों में आने लग गया है। उसका सीधा सीधा रीजन यही है कि घर का जो शुद्ध संतुलित पौष्टिक आहार छोड़ के बच्चे बाहर के जो पिज्जा बर्गर जो फास्ट फूड है जितना भी उसको खाने में लगे हुए हैं, और पेरेंट्स की भी कोई तरीके की मनाही नहीं होती है इसमें। तो आपसे बस यही कहेंगे कि बच्चों को फास्ट फूड खिलाइए, बट उनको महीने में एक बार कोशिश कीजिए कि शुरुआत हफ्ते से कीजिए, हफ्ते से फिर महीने पे जाइए।
1: खाने की जो उनकी लिमिट है उस पर आप लोग खुद कंट्रोल रखिए, हमें खुद भी खाना वैसे ही पड़ेगा जब हमारे बच्चे वैसा खाएंगे।
0: और घर पे आप कुछ भी कीजिए, मतलब घर पे भी आप चाहे तो फास्ट फूड जैसा खाना बना सकते हैं, पौष्टिक खाना बना सकते हैं, तो बच्चों की जो हैबिट है वो भी धीरे धीरे सुधरेगी। तो आरती अब हमारी सखियों को एक और प्यारा सा गीत सुनाते हैं, उसके बाद उनसे फिर वापस चर्चा करेंगे।

0: सखियों, अभी आप सुन रहे थे ये प्यारा सा गीत जिसे गाया था हिमेश रेशमिया और श्रेया घोषाल ने। आरती, आजकल जो खाने का, जैसे हमने अभी शुद्ध सात्विक खाने के बारे में बात की कि शुद्ध सात्विक खाना चाहिए, लेकिन आजकल खाने में भी एक ट्रेंड चालू हो गया है बर्तनों में। देखा जाए तो आजकल लोगों के घरों में जो स्टील के बर्तन थे पुराने, पीतल तांबे के बर्तन थे, वो तो विलुप्त हो गए हैं और उसकी जगह नॉनस्टिक बर्तनों ने ले ली है। नॉनस्टिक बर्तनों में आती जो खाना हम पकाते हैं बहुत ही सुविधाजनक होता है, इसमें तेल भी कम लगता है, लेकिन अगर देखा जाए स्वास्थ्य की दृष्टि से तो ये इतना अच्छा विकल्प नहीं है, क्योंकि तेज आंच में जब ये गर्म होते हैं तो इनके ऊपर एक अलग तरीके की कोटिंग की जाती है, केमिकल से वो कोटिंग निकलने लग जाती है, और जिससे मतलब लोगों को जो है कभी कई लोगों को कैंसर या थायराइड जैसी जो बीमारी होती है अक्सर वो इन्हीं बर्तनों के कारण ही कई बार हो जाती है। साथ ही साथ जो रहती है कि हम अक्सर क्या होता है कि आते जब ये बर्तन होते हैं तो इनको लकड़ी के जो होते हैं ना संचय उससे इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन जल्दबाजी में अक्सर महिलाएं जो होती है स्टील के या लोहे के चम्मच इस्तेमाल करने लग जाती है, जिससे इसकी कोटिंग जो है जो इसके ऊपर एक परत बनाई रहती है वो उतर जाती है और साथ में ये खाने में मिलके पेट में चली जाती है। तो इसलिए हम सखियों यही है कि नॉनस्टिक बर्तन अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा है तो उसे कम कर दीजिए, क्योंकि स्वास्थ्य की दृष्टि से इसमें खाना पकाना और फिर खाना बहुत ही खराब है।
1: देखिए शीतल, पहले जो लोग थे वो मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाया करते थे, और मिट्टी के बर्तनों में जो खाना है उसकी पौष्टिकता काफ़ी अच्छी होती है, मतलब कि करीब करीब 100% तक खाना जो है उसमें हमें पौष्टिक मिलता है। और इसके अलावा लोग पीतल के बर्तन यूज़ करते थे, उसमें कली करवा करके उसको यूज़ करते थे। बहुत हमारे तो नानी और जो हमारा ननियाल है, हमारे दादा दादी का घर है, उसमें हमने देखा हुआ है कि हमारी दादी हमारी नानी ऐसे बर्तन यूज़ करती थी जो पीतल के होते थे, उनमें कली की हुई होती थी और उसी में खाना बनाया जाता था, या कुछ मिट्टी के बर्तन होते थे। धीरे धीरे लोगों ने एल्युमिनियम के बर्तन शुरू कर दिए, एल्युमिनियम के बाद आ गया नॉनस्टिक, और अब तो लोगों को ऐसा लगता है कि भाई ये सब जो बर्तन है पीतल वगैरह के ये आउट ऑफ फैशन है और नॉनस्टिक यूज करें। लेकिन अब जो धीरे धीरे एक ट्रेंड वापस लोगों में आने लग गया है कि लोग कांसा और पीतल के बर्तन यूज कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को ये समझ में आने लग गया है कि जो नॉनस्टिक बर्तन है इनके बहुत नुकसान है। आप जब नॉनस्टिक बर्तन बाजार से नया नया लाते हैं और उसका उपयोग करते हैं तब तक तो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं जब तक उसकी कोटिंग सही है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि वो कोटिंग खराब होनी शुरू हो जाती है, और जब खराब कोटिंग होनी चालू हो जाए मतलब सोच लीजिए कि वो बर्तन अब कोई काम का नहीं है। तो ऐसे बर्तनों को हटा देना ही हमारे लिए बढ़िया है। और ये जो इसके ऊपर कोटिंग होती है ये टेफ्लॉन की कोटिंग होती है, जिसमें खाना जो है जल्दी से चिपकता नहीं है, लेकिन जब तक ये सही अवस्था में है तब तक ही ठीक है। मध्यम या धीमी आंच पर इसमें जब खाना बनाया जाता है तब तक ठीक है, और इसके साथ लकड़ी या सिलिकॉन या प्लास्टिक के चम्मच का उपयोग करने के लिए दिया जाता है, उसी में हम खाना बनाते हैं। आजकल देखिए इसमें सिरेमिक कोटिंग होती है, जिससे क्या होता है कि कई बार आप मतलब लकड़ी की बजाय स्टील के बर्तन वो भी दिए जाते हैं चम्मच, जिससे भी आप खाने को हिला सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर है यही कि अगर ये कोटिंग उतरनी शुरू हो जाए और ज़्यादा तेज आँच पर जब इसमें हम खाना बनाते हैं तब ये कोटिंग जो है खराब होनी शुरू हो जाती है, और फिर इससे एक तरीके का रसायन निकलता है जो खाने के साथ मिल जाता है और वो हमारे शरीर में जाकर बहुत तरीके की बीमारियां करता है। तो इसलिए इस तरीके के इस बर्तन जो है इनमें खाना बनाने से बचना चाहिए, और साथ ही साथ जैसे कि कहा कि एल्युमिनियम के जो बर्तन है इसमें भी खाने की जो पौष्टिकता है वो खत्म हो जाती है। करीब 7-8% तक कहते हैं कि खाने की पौष्टिकता बचती है अगर हम खाने को एल्युमिनियम के बर्तन में पकाते हैं, और वही आप पीतल के बर्तन में खाना बनाते हैं तो वो कम से कम आपको 90 या उससे ज्यादा प्रतिशत तक पौष्टिक खाना देते हैं।
0: एकदम आपने सही कहा। और अब सखियों अंत में बस अब यही कहेंगे हम आपको कि अगर आपको बर्तन इस्तेमाल करने हैं घर में तो आप स्टील के कीजिए, कास्ट आयरन के कीजिए या मिट्टी के।
1: हाँ, स्टील के बर्तन में वैसे कोई नुकसान नहीं है
0: जो सबसे सुरक्षित और सेहतमंद माने जाते हैं। और अब समय हमें इजाज़त नहीं दे रहा सखियों कि हम अपनी चर्चा को और भी आगे जारी रख सकें, तो अपनी रेडियो सखी शीतल
1: और आरती को दीजिए इजाज़त।
0: अगले कार्यक्रम में आपसे पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।

0: In a social media post, Dr. Jaishankar shared this information and said he is looking forward to fruitful engagements. During the visit, the External Affairs Minister will meet with the Mongolian leadership and hold discussions with his counterpart, Foreign Minister B. Batsetseg. On the second leg of his visit, the External Affairs Minister will visit South Korea on Wednesday and Thursday. He will hold discussions with Foreign Minister Cho Hyun. He will also deliver the keynote speech at the Jeju Forum for Peace and Prosperity in Jeju on Thursday. In Colombia, right-wing candidate Abelardo de la Espriella has narrowly won Colombia's presidential election, defeating left-wing Senator Ivan Cepeda by a very small margin. According to preliminary results, with almost all votes counted, de la Espriella received about 12.95 million votes, around 49.7% of the votes, while Cepeda received about 12.7 million, around 48.7% of the votes. The election marks a sharp shift in Colombia's politics after the presidency of Gustavo Petro, who was constitutionally barred from running again and backed Cepeda as his successor. An explosion ripped through Qatar's key natural gas export infrastructure, injuring at least 54 people, while 18 others remain missing. According to official reports, the blast occurred in the Ras Laffan industrial area last night, one of the world's most important energy hubs, during ongoing efforts to resume operations at the facility following earlier disruptions linked to regional conflict. The incident triggered a major fire at the Barzan gas supply facility, prompting emergency response teams to rush to the site. State energy giant Qatar Energy confirmed the incident, saying operations were underway to restart parts of the export terminal when the explosion took place. Officials have not yet confirmed whether the blast was accidental or linked to external factors. Global crude oil prices declined sharply by up to 3% today after talks between the United States and Iran concluded in Switzerland, easing concerns over supply disruptions and raising hopes of increased Iranian oil exports. International benchmark Brent crude fell more than 2% to around $79 a barrel, while U.S. West Texas Intermediate crude traded near $75 per barrel, a decrease of 3%. The decline came after senior U.S. and Iranian officials reportedly wrapped up the first round of talks aimed at extending a fragile ceasefire and reducing tensions in the region. The Intermeteorological Department, IMD, has issued a red alert for extremely heavy rainfall over Assam and Meghalaya today. IMD has also predicted heavy rainfall conditions at isolated places over Sub-Himalayan West Bengal, Karnataka, Telangana, Kerala, Goa, Odisha, and northeastern parts of the country till tomorrow. Similar conditions will also prevail over Bihar, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Lakshadweep, Puducherry, and Karaikal during the day. The Met Department has also forecast thunderstorms accompanied by lightning and gusty winds over Haryana, Chandigarh, Delhi, Punjab, Himachal Pradesh. News just in, Keir Starmer has resigned as Prime Minister of the United Kingdom. In a statement outside 10 Downing Street, he said every decision he has made in office has been about putting the country that he loves first. In the FIFA World Cup 2026, Egypt registered their first ever World Cup victory 3-1 over New Zealand in Vancouver this morning. Liverpool star Mohamed Salah scored his first goal of the tournament. With this win, Egypt took over the first place in Group G. Earlier, Cape Verde held Uruguay to a 2-2 draw in their Group H match in Florida today. Iran and Belgium also played out a goalless draw in their Group G clash in California last night. In today's fixtures, Argentina will take on Austria in Group J. The match will begin at 10:30 p.m. IST. In men's hockey, India defeated the Netherlands 3-2 in their last match of FIH Pro League Rotterdam leg yesterday. Jugraj Singh, Abhishek and Rajinder Singh scored the goals, helping India register their second win of the leg against the Dutch side. Stand-in captain Hardik Singh was named player of the match for his leadership and strong midfield performance. Benchmark domestic equity indices were trading around 0.5% up in the afternoon session today. The Sensex rose 375 points to 77,178, while the Nifty advanced 108 points to 24,121 when reports last came in. In the broader market on the National Stock Exchange, Mid-cap 100 index added 0.3%, while the small-cap 100 index was trading 0.5% up a short while ago. And now before we end the bulletin, the headlines once again. BJP government in West Bengal presents first full budget focusing on social welfare, infrastructure development and employment, announces a slew of women-centric schemes. BRICS National Security Advisors meeting begins in New Delhi to discuss emerging security challenges. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar arrives in Mongolia to hold meeting with his counterpart to deepen economic ties. IMD forecasts heavy to very heavy rainfall over Assam and Meghalaya today. And in FIFA World Cup, Egypt beat New Zealand 3-1 to secure first ever World Cup victory. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ लता। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। सामाजिक कल्याण, अवसंरचना विकास और रोजगार पर ध्यान केंद्रित करते हुए महिलाओं के लिए कई योजनाओं की घोषणा। नई दिल्ली में आज से ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक शुरू। उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर मंगोलिया पहुंचे। आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने पर अपने समकक्ष से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। और फीफा विश्व कप में मिस्र ने न्यूजीलैंड को 3-1 से हराकर विश्व कप में पहली जीत दर्ज की। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। रोजगार और जनकल्याण को बढ़ावा देते हुए राज्य के विभिन्न विभागों में 1,00,000 खाली पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई है। वित्त मंत्री स्वप्न दास गुप्ता ने बजट पेश करते हुए बताया कि नौकरियों में 33% पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। इनमें शिक्षकों और शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के लिए 50,000 पद और पुलिस विभाग में 20,000 नियुक्तियां शामिल हैं। अग्निवीरों के लिए आवश्यकता अनुसार 10% आरक्षण शुरू किया गया है। सिविक वॉलंटियर्स, होमगार्ड, ग्रीन पुलिस कर्मियों और एनवीएम कर्मचारियों का मासिक मानदेय ₹2,000 बढ़ाया गया है। कोलकाता क्षेत्र के लिए कल्याणी के पास एक नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का प्रस्ताव है। बजट में दो प्रमुख रक्षा केंद्रों के विस्तार और विकास में मदद के लिए हासीमारा एयरफोर्स स्टेशन को 25 एकड़ और कलाईकुंडा एयरफोर्स स्टेशन को 37 एकड़ जमीन सौंपने का प्रस्ताव भी है। एक रिपोर्ट।
2: राज्य सरकार ने सरकारी अर्ध सरकारी कर्मचारी, शिक्षक और शिक्षा कर्मियों के लिए 20% महंगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा की है। महंगाई भत्ता बढ़ के 38% हो जाएगा। यही सुविधा पेंशन भोगियों को भी मिलेगा। वित्त मंत्री ने बताया कि ये दर 1 अक्टूबर से लागू होगी। वित्त मंत्री ने बताया कि वर्तमान में राज्य पर कुल ऋण 8,15,891 करोड़ रुपए की है। इस कारण सामाजिक परियोजनाओं और वित्तीय अनुशासन की बीच संतुलन बनाए रखना सरकार की सबसे बड़ी परीक्षा है। बजट में अन्नपूर्णा योजना के लिए 36,000 करोड़ रुपए की प्रावधान किया गया है। पार्श्व शिक्षक का वेतन 5,000 रुपए बढ़ाया गया है। आंगनवाड़ी कर्मी और आशा कर्मियों के लिए मासिक मानदेय में 5,000 रुपए की वृद्धि की गई है। संदीपन दास गुप्ता के साथ काश्मीर नाहर, आकाशवाणी समाचार, कोलकाता।
1: तमिलनाडु विधानसभा में आज कर्नाटक की प्रस्तावित मेकेदातु बांध परियोजना पर चर्चा हुई। AIADMK, PMK और CPM सहित विपक्षी दलों ने आशंका जताई कि इस परियोजना से कावेरी जल बंटवारे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और तमिलनाडु के हित प्रभावित हो सकते हैं। राज्य सरकार ने परियोजना के विरोध में अपना रुख दोहराते हुए कहा कि वो तमिलनाडु के जल अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने मेकेदातु जल न्यायाधिकरण के गठन की मांग से जुड़े विधानसभा के सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव का भी उल्लेख किया। ओडिशा में विधानसभा अध्यक्ष सुरमा पाढ़ी ने मार्च में राज्यसभा चुनाव के दौरान बीजू जनता दल बीजेडी और कांग्रेस की क्रॉस वोटिंग के आरोपी विधायकों को अयोग्य ठहराने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। अध्यक्ष ने कहा

0: कि दल बदल विरोधी कानून के अंतर्गत याचिकाओं में गंभीर प्रक्रियात्मक कमियां और सबूतों का मानक अभाव था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में कुनो नेशनल पार्क में चीता मित्रों और सहरिया जनजाति के सदस्यों से बातचीत की। उन्होंने प्रोजेक्ट चीता में उनके योगदान की सराहना की। राष्ट्रपति ने कहा कि इस महत्वाकांक्षी संरक्षण कार्यक्रम की सफलता में स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। एक रिपोर्ट।
1: राष्ट्रपति ने कुनो नेशनल पार्क में सफारी की और चीता पुनर्वास परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने चीता कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा किया। उन्होंने प्रोजेक्ट चीता पर लगी प्रदर्शनी देखी और जानवरों की निगरानी, ट्रैकिंग और संरक्षण के लिए किए जा रहे उपायों के बारे में जानकारी ली। अधिकारियों ने राष्ट्रपति को बताया कि भारत में अभी 52 चीते हैं, जिनमें 49 कुनो नेशनल पार्क में है, जबकि 3 को गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य में स्थानांतरित कर दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2022 में प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत की थी। उन्होंने नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को कुनो नेशनल पार्क में छोड़ा था। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना से और चीते लाए गए। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: नई दिल्ली में ब्रिक्स के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों एनएसए की बैठक चल रही है। 2 दिन की इस बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल कर रहे हैं। बैठक में समूह के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख भागीदारी कर रहे हैं। इन देशों में भारत, ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। बैठक का मुख्य विषय वर्तमान समय में गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियां हैं। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरों के तेजी से बदलते स्वरूप और उभरते सुरक्षा जोखिमों में नई तकनीकों की भूमिका पर चर्चा की जाएगी। गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार ने देश के विकास में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF की अहम भूमिका पर जोर दिया है। नई दिल्ली में आज CISF के मुख्यालय के इमारत के भूमि पूजन और ई उद्घाटन समारोह में उन्होंने कहा कि CISF के जवान देश की तरक्की को सुरक्षित रखने वाले आर्थिक सैनिक के तौर पर काम करते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर मंगोलिया पहुंचे। डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे भारत और मंगोलिया के बीच विशेष साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए सार्थक वार्ता की आशा करते हैं। इस यात्रा के दौरान विदेश मंत्री मंगोलिया के विदेश मंत्री बी बत्सिसक के साथ वार्ता करेंगे। यात्रा के दूसरे चरण में विदेश मंत्री बुधवार और बृहस्पतिवार को दक्षिण कोरिया जाएंगे। यात्रा के दौरान डॉक्टर जयशंकर वहां के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ चर्चा करेंगे। वे बृहस्पतिवार को जेजू में शांति और समृद्धि के लिए जेजू फोरम पर मुख्य भाषण भी देंगे। विदेश मामलों की स्थायी समिति ने सामरिक सीमा सुरक्षा और विदेश नीति मुद्दों की समीक्षा के लिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 4 दिन की अध्ययन यात्रा शुरू की। सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता में ये समिति सीमांत क्षेत्रों में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा स्थिति का प्रत्यक्ष अवलोकन करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 25 जून तक समिति जम्मू, श्रीनगर, करगिल और लेह की यात्रा करेगी। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर जलपाईगुड़ी के जलदाबाड़ी में एक सड़क दुर्घटना में 2 और घायलों की मृत्यु होने के बाद मृतकों की संख्या 6 हो गई है। मृतकों में 2 महिला और 1 बच्चा भी शामिल है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और 2 मंत्रियों ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। उत्तर प्रदेश में कुख्यात अपराधी ललन सिंह को कल रात सहारनपुर में उत्तर प्रदेश विशेष कार्यबल STF ने मुठभेड़ में मार गिराया। उस पर 1,25,000 रुपए का इनाम था। झारखंड में पिछले 24 घंटे में बिजली गिरने से लगभग 8 लोगों की मृत्यु हो गई और 12 से अधिक लोग घायल हुए हैं। बिजली गिरने की घटनाएं रामगढ़, गिरिडीह, खूंटी, देवघर, धनबाद और साहिबगंज जिलों में हुई है। बिजली गिरने की घटना में मरने वालों में CPI के एक नेता, एक वार्ड सदस्य, एक किसान और अन्य निवासी शामिल हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज लुधियाना में प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक और पद्म भूषण से सम्मानित सरदारा सिंह जोहल से मुलाकात की। श्री नवीन ने उनके साथ पंजाब के कृषि संकट पर चर्चा की। बैठक के बाद श्री नवीन ने कहा कि श्री जोहल के साथ बातचीत के दौरान कृषि के मुद्दों पर अमूल्य जानकारी प्राप्त हुई।

0: मैं मानता हूं कि ऐसी शख्सियत जिसने किसानों की भावनाओं को समझा, कृषि को समझा और कृषि को कैसे एक सही रूप से आगे बढ़ाया जाए, इस चीज को उन्होंने एक रिसर्च के रूप में देखा है, तो निश्चित रूप से ऐसे शख्सियत से मिलना मेरे लिए भी सौभाग्य का विषय है।
1: केंद्रीय सूचना और प्रसारण तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन आज शाम 2 दिन के मध्य प्रदेश दौरे पर भोपाल पहुंच रहे हैं। डॉक्टर मुरुगन कल देवास जिले की कन्नौज तहसील के डोकाकुई जाएंगे। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में अपर केंद्रीय आयुक्त पूर्णेंदु भूषण वर्मा परिचर्चा में हिस्सा लेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @TIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर एक बयान में प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि पद पर रहते हुए उन्होंने जो भी फैसले किए उनमें देश को सबसे पहले रखने की बात ही मुख्य रही है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर में 0.5% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 375 अंक बढ़कर 77,178 पर, जबकि निफ्टी 108 अंक बढ़कर 24,121 पर कारोबार कर रहा था। स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता समाप्त होने के बाद आज कच्चे तेल की वैश्विक कीमत में 3% तक की गिरावट दर्ज की गई। इससे आपूर्ति बाधा को लेकर चिंताएं समाप्त होने और ईरान के तेल निर्यातों में वृद्धि की आशा बढ़ गई है। पश्चिम एशिया में नाजुक संघर्ष विराम को बढ़ाने तथा तनाव को कम करने पर केंद्रित पहले दौर की वार्ता के समापन की खबर अमेरिका और ईरान के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दिए जाने के बाद ये गिरावट आई है। ताइवान की सेना ने 5 दिवसीय तत्काल युद्ध तत्परता अभ्यास शुरू किया है। इस अभ्यास का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि किसी भी आपात स्थिति में सैन्य बल तुरंत और प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया दे सके। ताइवान के रक्षा मंत्रालय के अनुसार इस अभ्यास के जरिए सैन्य इकाइयों की शांतिकाल से युद्धकालीन संचालन में तेजी से बदलाव करने की क्षमता को मजबूत किया जाएगा। यह अभ्यास ऐसे समय में हो रहा है जब हाल के वर्षों में चीन ने ताइवान के आसपास अपना सैन्य अभ्यास और गतिविधियां बढ़ा दी हैं। फीफा विश्व कप 2026 में मिस्र ने आज सुबह वैंकुवर में न्यूजीलैंड पर इस विश्व कप में 3-1 से अपनी पहली जीत दर्ज की। लिवरपूल के स्टार खिलाड़ी मोहम्मद सलाह ने टूर्नामेंट में अपना पहला गोल किया। इस जीत के साथ मिस्र ग्रुप सी में पहले स्थान पर पहुंच गया है। आज ग्रुप जे में अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। मैच रात 10:30 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल तक पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, कर्नाटक, तेलंगाना, केरलम, गोवा, ओडिशा और पूर्वोत्तर के कुछ स्थानों पर तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, लक्षद्वीप, पुदुचेरी और कार्यकाल में भी दिन के दौरान ऐसी स्थिति रहेगी। आज हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तेज हवा तथा बादल गरजने के साथ वर्षा का भी अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, विदर्भ और तेलंगाना में कल तक लू चलने की संभावना है। हरियाणा के राखीगढ़ी पुरातात्विक स्थल से खुदाई में मिले मानव कंकाल अवशेषों को उन्नत वैज्ञानिक अध्ययन के लिए भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण को सौंप दिया गया है। ये प्रक्रिया भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण के बीच हाल ही में हुए समझौता ज्ञापन के अंतर्गत की गई है। करीब 550 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला राखीगढ़ी सिंधु सरस्वती सभ्यता की सबसे बड़ी ज्ञात बस्ती माना जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इन कंकालों के अध्ययन से सिंधु सरस्वती सभ्यता के लोगों के जीवन, स्वास्थ्य और सामाजिक संरचना से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हो सकेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का एक लेख साझा किया। इस लेख में कानूनी व्यवस्था को मजबूत करने, न्याय की प्रक्रिया को आसान बनाने और नागरिकों के लिए सरकारी सेवाओं को अधिक सुलभ बनाने की सरकार की कोशिशों का उल्लेख किया गया है। अपने लेख में श्री मेघवाल ने कहा कि न्यायिक संस्थान एक पुल की तरह काम करते हैं जो हर हितधारक को न्याय की व्यापक खोज और सामूहिक भलाई के साथ विश्वास, अपनापन और जुड़ाव की भावना विकसित करने में मदद करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सफलता इस बात का प्रमाण है कि योग न केवल विश्व भर में लाखों लोगों को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने में मदद कर रहा है बल्कि उन्हें सकारात्मक जीवन जीने के लिए प्रेरित भी कर रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। सामाजिक कल्याण, अवसंरचना विकास और रोजगार पर ध्यान केंद्रित करते हुए महिलाओं के लिए कई योजनाओं की घोषणा। नई दिल्ली में आज से ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक शुरू। उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर मंगोलिया पहुंचे। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया और फीफा विश्व कप में मिस्र ने न्यूजीलैंड को 3-1 से हराकर विश्व कप में पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सदाबहार नगमे में।

जानी कैसा छाने लगा नशा ये प्यार का।

0: थोड़ा थोड़ा आने लगा मजा बहार का।
1: हम सुन रहे थे ये गीत जबक फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में प्रेम धवन के बोलो चित्रगुप्त के संगीत के साथ। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन और आइए सुनते हैं ये संदेश।
2: जानी मानी फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे

0: किससे?
1: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़नी चुनरिया तेरे नाम।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है,
2: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम, अंदर शायर पैदा हो रहा था। मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल सुनो। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
0: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी। इस मंगलवार सेलुलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
0: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन सदाबहार नन्हे कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं सदाबहार नगमे कार्यक्रम में ये सुंदर सा गीत जिसे हमने चुना है ससुराल फिल्म से। मोहम्मद रफी की आवाज है, हसरत जयपुरी के हैं बोल और संगीतकार हैं शंकर जयकिशन।

संभल कर चला करो, जुल्फों को गिरा लो डालो पर मौसम की नजर ना।

वहीं रुक जाता है, एक झलक जो पाता है राही वहीं रुक जाता है। देख के तेरा रूप सलोना चांद भी सर को झुकाता है। देख

0: हम सुन रहे थे स्त्री फिल्म का यह गीत लता मंगेशकर की आवाज में भरत व्यास के बोल और सी रामचंद्र के संगीत के साथ में। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: विविध भारती पर आ रही हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
2: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: एक बेटी की यादों में उसके पिता
4: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
3: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
4: मुझे याद है

0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे में ससुराल फिल्म का यह गीत लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाजों में शैलेंद्र के बोल और शंकर जयकिशन के संगीत के साथ।
2: एक सवाल मैं करूं, एक सवाल तुम करो, एक सवाल मैं करूं, एक सवाल तुम करो। हर सवाल का सवाल ही जवाब हो।
3: एक सवाल मैं करूं, एक सवाल तुम करो, एक सवाल

प्यार की बेला साथ सजन का फिर क्यों दिल घबराए, नहीं हर से घर जाती दुल्हन क्यों नैना चलता।

0: काजल से नैनों की शोभा क्यों दुगनी हो जाए, गोरे गोरे गाल पे काला दिल क्यों मन को भाए,
1: गोरे गोरे गाल पे काला दिल क्यों मन को भाए।
2: एक बार मैं करूँ।

0: एक सवाल मैं करूं, एक सवाल तुम करो, एक सवाल मैं करूं, एक सवाल तुम करो। हर सवाल का सवाल ही जवाब हो, एक सवाल मैं करूं, एक सवाल तुम करो, एक सवाल मैं करूं, एक सवाल तुम करो।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविद भारती पर।
3: आप सुन रहे हैं विविद भारती राष्ट्रीय सेवा।

0: की सुरीली धड़कन। आइए सुनते हैं सदाबहार नगमे इस कार्यक्रम में, जब प्यार किसी से होता है फिल्म से यह गीत जो गाया है लता मंगेशकर ने और मोहम्मद रफी ने। हसरत जयपुरी के बोल हैं और संगीतकार शंकर जयकिशन।
1: साल पहले मुझे तुम

हो एक बिजली सी चमक जाती है मुझे जीते जी ओ दिल भर तेरा इंतजार था आज भी है।

हम सुन रहे थे गीत जब प्यार किसी से होता है फिल्म से, लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाजों में, हसरत जयपुरी के पूर्व शंकर जयकिशन के संगीत के साथ। आइए चलिए सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे का अगला नगमा, संजोग फिल्म से। लता मंगेशकर मुकेश की आवाजें हैं, राजेंद्र कृष्ण की बोल है, मदन मोहन का संगीत।

वादी अब तो मिलन के नगमे सुना रही है, ओ नगमे सुना रही है।

0: फिर प्यार न कैसे हो।
1: कार्यक्रम सदाबहार नगमे का अंतिम गीत आइए सुनते हैं, जंगली फिल्म से मोहम्मद रफी की आवाज में, हसरत जयपुरी के बोल और शंकर जयकिशन के संगीत के साथ। और आज्ञा दीजिए मुझे यानी विधि जैन को आज के इस कार्यक्रम से। नमस्कार, आप सबका मंगल हो।

मिटा दो, चाहे बना दो चाहे मिटा दो, मर भी गए तो देंगे दुआएं, मर भी गए तो देंगे दुआएं। उड़ उड़ के कहेगी खा

0: की सहेली।
1: सखी सहेली सुनने वाले सभी सखियों को और श्रोता भाइयों को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। और आज हमारे साथ है दीपा महेश्वरी। तो दीपा, आपको भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे
2: मंजरी?
1: बिल्कुल अच्छे हैं। और तुम्हारे साथ हमारे सभी सखियों को, श्रोता भाइयों को मेरा दीपा महेश्वरी का हेल्दी नमस्कार।
2: क्या बात है,
1: हेल्दी इसलिए हमेशा ही बताते हैं कि कोई एक दिन, जैसे कि कल गया हमारा इंटरनेशनल योगा डे, एक दिन स्वास्थ्य को ध्यान रखने के लिए नहीं है, वो इसलिए है ताकि हम साल भर हर दिन अपना ध्यान खूब अच्छे से रख सकें और अपने परिवार को भी उसी वजह से खुशहाल भी रख सकें।
2: बिल्कुल दीपा, और ये बहुत अच्छी चीज है कि हमारे पास देखो मोबाइल की सुविधा भी उपलब्ध है, तो हम हर दिन अपने दोस्तों को ग्रुप में डाल सकते हैं कि आज योग किया कि नहीं किया, इस तरह भी हम उन्हें याद भी दिला सकते हैं। तो एक दूसरे को जब हम प्रेरणा देंगे ना रोज रोज, गुड मॉर्निंग की जगह साथ में ये भी उसमें लगा दें कि आज योगा किया कि नहीं किया,
1: सही
2: तो सबकी सेहत अच्छी रहेगी।
1: भले ही 10 मिनट के लिए या 15 मिनट के लिए, जितना भी आपके पास वक्त है, जो भी अच्छा लगता है, जो तरीका आपको अच्छा लगता है, जिस तरीके से आप एक कुछ वक्त अपने दिन का अपने स्वास्थ्य पर जरूर समर्पित कीजिए।
2: बिल्कुल। और दीपा, आज हमारी जो सखी सहेली के विषय हैं, तो वो हम बता देते हैं कि आज प्रादेशिक व्यंजन में हम कानपुर उत्तर प्रदेश की रंग बिरंगी चाट और हरी धनिया के आलू की तो बात करेंगे और हमारे साथी जो कुछ लेकर भेजेंगे तो उनको भी इसमें शामिल करेंगे।
1: बिल्कुल। और देखो, वर्षा ऋतु आने को है, इंतजार तो हो ही रहा है, सब लोग चाह रहे हैं कि अब जल्द से जल्द बारिश शुरू हो। तो उसके साथ साथ बहुत सारी सावधानियां शुरू हो जाती हैं, जैसे कि मच्छरों से बचाव, तो इस पे भी हम बात करेंगे। और संदेश आए हैं, हम चाहते हैं और ज्यादा से ज्यादा संदेश हमारे सभी श्रोता लिखकर भेजे।
2: बिल्कुल। और कथा सुधा में आज हम सुनवाने वाले हैं आभूषण कहानी का भाग 4। तो अभी तक लगातार सबने सुनी है आभूषण कहानी, तो आज उसका चौथा भाग, अंतिम भाग सुना जाएगा। और नवीन शिक्षा सत्र की शुरुआत जैसे कि हो गई है और हम देखते हैं दीपा की आज बच्चे जो है, छोटे छोटे बच्चे, बड़े बच्चे सब तैयार होकर स्कूल जा रहे हैं, तो उनका कैसा अनुभव होता है, या आपने बच्चों को स्कूल भेजने के पहले क्या क्या तैयारी करी, वो सब भी हमें छोटी छोटी बातें छोटे छोटे संदेशों में लिख सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा।
1: बिल्कुल। और एक ये गुंछा बना लिया है हमने कार्यक्रम का, तो ये सब तो हम कर ही रहे हैं बातें और आप सारे संदेश तो आएंगे, तब तक सुनते हैं ये सुंदर सा गीत।

0: मंजरी, अब तो बिना कुछ कहे हम चलेंगे सीधे कदासुदा की तरफ,
1: बिल्कुल,
0: जहां पे हम सुनने वाले हैं आभूषण का भाग 4।
1: जी
2: कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा। कथा सुधा में सुनिए मुंशी प्रेमचंद की कहानी आभूषण।
0: पिछले भाग में आपने सुना
3: विमल सिंह को घर छोड़े 2 साल हो गए थे। शीतला को अब उनके बारे में भांति भांति की शंकाएं होने लगी थी। आठों पहर उसके चित्त में ग्लानी और क्षोभ की आग सुलगा करती थी। विमल की खेती बेगार में होती थी। उसके जाने के बाद सारे खेत परती रह गए, कोई जोतने वाला न मिला, असामियों ने लगान न दिया। शीतला ने महाजन से रुपए उधार लेकर काम चलाया। दूसरे वर्ष भी यही कैफियत रही। अब की महाजन ने रुपए नहीं दिए, शीतला के गहनों के सिर गई। दूसरा साल समाप्त होते होते घर की सब लेई पूंजी निकल गई, फाके होने लगे। 4 प्राणियों का खर्च था। उस पर ये और मुसीबत हुई, मायके में एक फौजदारी हो गई। 2 छोटे भाई, 1 बहन और माता, 4 प्राणी और सर पर आ डटे। गाड़ी पहले ही मुश्किल से चलती थी, अब जमीन में धस गई। सारी अमंगल शंकाएं इस विरोधाग्नि में शांत हो गईं। बस अब यही चिंता थी कि इस दशा से छुटकारा कैसे हो। उसकी सोचने की शक्ति निश्चल हो गई थी। चारों तरफ निगाहें दौड़ाती कि कहीं कोई शरण का स्थान है, पर कहीं निगाह न जमती। कुंवर साहब को गांव वालों से विमल सिंह के परिवारों के कष्ट की खबर मिली थी। वो गुप्त रूप से उनकी कुछ सहायता करना चाहते थे। मंगला के गृह त्याग के 3 महीने पीछे आज वो पहली बार घर से निकले थे। इसमें संदेह नहीं कि कुंवर साहब मन में शीतला के रूप रस का आस्वादन करते थे। मंगला के जाने के बाद उनके हृदय में एक विचित्र दुष्कामना जाग उठी। मनुष्य में बुद्धि के अंतर्गत एक अज्ञात बुद्धि होती है, जैसे रणक्षेत्र में हिम्मत हार कर भागने वाले सैनिकों को किसी गुप्त स्थान से आने वाली कुमक संभाल लेती है, वैसे ही इस अज्ञात बुद्धि ने सुरेश को सचेत कर दिया। वो संभल गए, ग्लानि से उनकी आंखें भर आईं। उसी क्षण उन्होंने शीतला को पत्र लिखा।
4: बहन, तुमने इतने कष्ट झेले पर मुझे खबर तक न दी। मैं कोई गैर न था, मुझे इसका दुख है। खैर, अब ईश्वर ने चाहा तो तुम्हें कष्ट न होगा। इस पत्र के साथ अनाज और रुपये भेज रहा हूँ।
5: भैया क्षमा करो, जब तक जीऊंगी तुम्हारा यश गाऊंगी। तुमने मेरी डूबती नाव पार लगा दी है।
2: कहानी आगे क्या मोड़ लेती है, इसके लिए सुनिए मुंशी प्रेमचंद की कहानी आभूषण का 4वां और अंतिम भाग।
3: कोयल आम की डालियों पर बैठकर मछली शीतल निर्मल जल में क्रीड़ा करके और मृग शावक विस्तृत हरियालियों में छलांगे भरकर भी इतने प्रसन्न नहीं होते जितना मंगला के आभूषणों को पहनकर शीतला प्रसन्न हो रही है। उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ते। वो दिन भर आईने के सामने खड़ी रहती है, कभी केशों को संवारती है, कभी सुरमा लगाती है। कोहरा फट गया है और निर्मल स्वच्छ चांदनी निकल आई है। वो घर का एक तिनका भी नहीं उठाती। उसके स्वभाव में एक विचित्र गर्व का संचार हो गया है। लेकिन श्रृंगार क्या है? सोई हुई काम वासना को जगाने का घोर नाद उद्दीपन का मंत्र। शीतला जब नखशिक से सज कर बैठती है तो उसे प्रबल इच्छा होती है कि मुझे कोई देखे। वो द्वार पर आकर खड़ी हो जाती है। गांव की स्त्रियों की प्रशंसा से उसे संतोष नहीं होता। गांव के पुरुषों को वो श्रृंगार रस विहीन समझती है, इसलिए सुरेश सिंह को बुलाती है। पहले वो दिन में एक बार आते थे, अब शीतला के बहुत अनुनय विनय करने पर भी नहीं आते। पहर रात गई थी, घरों के दीपक बुझ चुके थे। शीतला के घर में दीपक जल रहा था। उसने कुंवर साहब के बगीचे से बेले के फूल मंगवाए थे और बैठी हार गूंथ रही थी, अपने लिए नहीं, सुरेश के लिए। प्रेम के सिवा एहसान का बदला देने के लिए उसके पास और था ही क्या। एकाएक कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई दी और दम भर में विमल सिंह ने मकान के अंदर कदम रखा। उनके एक हाथ में संदूक था, दूसरे हाथ में एक गठरी थी। शरीर दुर्बल, कपड़े मैले, दाढ़ी के बाल बढ़े हुए, मुख पीला, जैसे कोई कैदी जेल से निकल कर आया हो। दीपक का प्रकाश देखकर वो शीतला के कमरे की तरफ चले। मैना पिंजरे में तड़फड़ाने लगी। शीतला ने चौंक कर सिर उठाया, घबरा कर बोली, कौन? फिर पहचान गई। तुरंत फूलों को एक कपड़े में छिपा दिया। उठ खड़ी हुई और सिर झुकाकर पूछा,
5: इतनी जल्दी सुध ली?
3: विमल ने कुछ जवाब न दिया। विस्मित हो होकर कभी शीतला को देखता, कभी घर को, मानो किसी नए संसार में पहुंच गया है। यह वो अधखिला फूल न था जिसकी पंखुड़ियां अनुकूल जलवायु न पाकर सिमट गई थी। यह पूर्ण विकसित कुसुम था, ओस के जल कणों से जगमगाता और वायु के झोंकों से लहराता हुआ। विमल उसकी सुंदरता पर पहले भी मुग्ध था, पर यह ज्योति वो अग्निज्वाला थी जिससे हृदय में ताप और आंखों में जलन होती थी। ये आभूषण, ये वस्त्र, ये सजावट। उसके सिर में एक चक्कर सा आ गया, जमीन पर बैठ गया। इस सूर्यमुखी के सामने बैठते हुए उसे लज्जा आती थी। शीतला अभी तक स्तंभित खड़ी थी। वो पानी लाने नहीं दौड़ी, उसने पति के चरण नहीं धोए, उसको पंखा तक नहीं झला। हत बुद्धि सी हो गई थी। उसने कल्पनाओं की कैसी सुरम्य वाटिका लगाई थी, उस पर तुषार पड़ गया। वास्तव में इस मलिन वदन अर्धनग्न पुरुष से उसे घृणा हो रही थी। ये घर का जमींदार विमल न था, वो मजदूर हो गया था। मोटा काम मुखाग्नि पर असर डाले बिना नहीं रहता। मजदूर सुंदर वस्त्रों में भी मजदूर ही रहता है। सहसा विमल की मां चौंकी, शीतला के कमरे में आई तो विमल को देखते ही मातृ स्नेह से विह्वल होकर उसे छाती से लगा लिया। विमल ने उसके चरणों पर सिर रखा। उसकी आंखों से आंसुओं की गरम गरम बूंदें निकल रही थी। मां पुलकित हो रही थी, मुख से बात न निकलती थी। एक क्षण में विमल ने कहा,
4: अम्मा ये देखता क्या हूं?
1: अरे तुम तो जानते ही हो, स्वभाव ही ऐसा है तो कोई क्या करे।
4: सुरेश ने मेरा हुलिया क्यों लिखाया था?
1: अब वो तो तुम्हारी खोज लेने के लिए। अरे उन्होंने दया ना की होती ना तो आज घर में किसी को जीता ना पाते तुम।
4: बहुत अच्छा होता।
5: अपनी ओर से तो तुमने सबको मार ही डाला था। फूलों की सेज नहीं बिछा गए थे?
4: अब तो फूलों की सेज ही बिछी देखता हूँ।
5: तुम किसी के भाग्य के विधाता हो?
3: विमल सिंह उठकर क्रोध से कांपता हुआ बोला,
4: अम्मा अम्मा मुझे यहां से ले चलो, मैं इस पिशाचिनी का मुंह तक नहीं देखना चाहता। मेरी आंखों में खून उतरता चला आता है। मैंने इस कुल कलंकनी के लिए 3 साल तक जो कठिन तपस्या की है उससे तो ईश्वर मिल जाता, पर इसे ना पा सका।
3: ये कहकर वो कमरे से निकल आया और मां के कमरे में लेट रहा। मां ने तुरंत उसका मुंह और हाथ पैर धुलाए। वो चूल्हा जलाकर पूरियां पकाने लगी, साथ साथ घर की विपत्ति कथा भी कहती जाती थी। विमल के हृदय में सुरेश के प्रति जो विरोधाग्नि प्रज्वलित हो रही थी वो शांत हो गई, लेकिन हृदय दाह ने रक्त दाह का रूप धारण कर लिया। जोर का बुखार चढ़ाया, लंबी यात्रा की थकान और कष्ट तो था ही, बरसों के कठिन श्रम और तप के बाद यह मानसिक संताप और भी दुसह हो गया। सारी रात वो अचेत पड़ा रहा। मां बैठी पंखा झलती और रोती रही। दूसरे दिन भी वो बेहोश पड़ा रहा। शीतला उसके पास एक क्षण के लिए भी ना आई।
0: इन्होंने मुझे कौन से सोने के कौर खिला दिए हैं जो इनकी धौस सहूं? यहां तो जैसे कंता घर रहे वैसे रहे विदेश, किसी की फूटी कौड़ी नहीं जानती। बहुत ताव दिखाकर तो गए थे, क्या लाद लाए।

0: संध्या का समय था, सुरेश को खबर मिली, तुरंत दौड़ते हुए आए। आज 2 महीने के बाद उन्होंने उस घर में कदम रखा। विमल ने आंखें खोली, पहचान लिया, आंखों से आंसू बहने लगे। सुरेश के मुखारविंद पर दया की ज्योति झलक रही थी। विमल ने उसके बारे में जो अनुचित संदेह किया था उसके लिए वो अपने को धिक्कार रहा था। शीतला ने ज्यों ही सुना कि सुरेश सिंह आए हैं, तुरंत शीशे के सामने गई, केश छिटका लिए और विपत की मूर्ति बनी हुई विमल के कमरे में आई। कहां तो विमल की आंखें बंद थी, मूर्छित सा पड़ा था, कहां शीतला के आते ही आंखें खुल गईं। अग्निमय नेत्रों से उसकी ओर देखकर बोला,
1: अभी आई है? आज के 3रे दिन आना, कुंवर साहब से उस दिन फिर भेंट हो जाएगी।
0: ये सुनकर शीतला उल्टे पांव चली गई। सुरेश पर घड़ों पानी पड़ गया। मन में सोचा, कितना रूप लावण्य है पर कितना विषाक्त, हृदय की जगह केवल श्रृंगार लालसा। आतंक बढ़ता गया। सुरेश ने डॉक्टर बुलवाए पर मृत्युदेव ने किसी की न मानी। उनका हृदय पाषाण है, किसी भांति नहीं पसीजता। कोई अपना हृदय निकाल कर रख दे, आंसुओं की नदी बहा दे, पर उन्हें दया नहीं आती। बसे हुए घर को उजाड़ना, लहराती हुई खेती को सुखाना उनका काम है, और उनकी निर्दयता कितनी विनोदमय है। ये नित्य नए रूप बदलते रहते हैं, कभी दामिनी बन जाते हैं तो कभी पूर्णिमाला, कभी सिंह बन जाते हैं तो कभी सियार, कभी अग्नि के रूप में दिखाई देते हैं तो कभी जल के रूप में। 3रे दिन पिछली रात को विमल की मानसिक पीड़ा और हृदय ताप का अंत हो गया। यम के दूत प्रायः रात ही को सबकी नजर बचाकर आते हैं और प्राण रत्न को चुरा ले जाते हैं। रात शोक का बाह्य रूप है। उसी समय विमल के घर से आर्तनाद सुनाई दिया, वो नाद जिसे सुनने के लिए मृत्युदेव विकल रहते हैं। शीतला चौंक पड़ी और घबराई हुई मरणशैया की ओर चली। उसने मृत देह पर निगाह डाली और भयभीत होकर एक पग पीछे हट गई। उसे जान पड़ा विमल सिंह उसकी ओर अत्यंत तीव्र दृष्टि से देख रहे हैं। बुझे हुए दीपक में उसे भयंकर ज्योति दिखाई पड़ी। वो मारे भय के वहां ठहर न सकी। द्वार से निकल ही रही थी कि सुरेश सिंह से भेंट हो गई। कातर स्वर में बोली,
2: मुझे यहां डर लगता है।
0: उसने चाहा कि रोती हुई इनके पैरों पर गिर पड़ूं, पर वो अलग हट गए। जब किसी पथिक को चलते चलते ज्ञात होता है कि मैं रास्ता भूल गया हूं, तो वो सीधे रास्ते पर आने के लिए बड़े वेग से चलता है, झुंझलाता है कि मैं इतना असावधान क्यों हो गया। सुरेश भी अब शांति मार्ग पर आने के लिए विकल हो गए। मंगला की स्नेहमयी सेवाएं याद आने लगी। हृदय में वास्तविक सौंदर्य उपासना का भाव उदय हुआ। उसमें कितना प्रेम, कितना त्याग, कितनी क्षमा थी। उसकी अतुल पति भक्ति को याद करके कभी कभी वो तड़प जाते।
3: मैंने घोर अत्याचार किया है, ऐसे उज्जवल रत्न का आदर न किया। मैं यूं ही जड़वत पड़ा रहा और मेरे सामने ही लक्ष्मी घर से निकल गई।
0: मंगला ने चलते चलते शीतला से जो बातें कही थी वे उन्हें मालूम थी, पर उन बातों पर विश्वास न होता था। मंगला शांत प्रकृति की थी, वो इतनी उद्दंडता नहीं कर सकती। उसमें क्षमा थी, वो इतना विद्वेष नहीं कर सकती। उनका मन कहता था कि वो जीती है और कुशल से है। उसके मैके वालों को कई पत्र लिखे, पर वहां व्यंग और कटु वाक्यों के सिवा और क्या रखा था। अंत में उन्होंने लिखा,
3: उस रत्न की खोज में मैं स्वयं जाता हूं, या तो लेकर ही आऊंगा या कहीं मुंह में कालिख लगाकर डूब मरूंगा।
0: इस पत्र का उत्तर आया,
4: अच्छी बात है, जाइए, पर यहां से होते हुए जाइएगा, यहां से भी कोई आपके साथ चला जाएगा।
0: सुरेश सिंह को इन शब्दों में आशा की झलक दिखाई दी। उसे दिन प्रस्थान कर दिया और किसी को साथ नहीं लिया। ससुराल में किसी ने उनका प्रेममय स्वागत नहीं किया, सभी के मुंह फूले हुए थे। ससुर जी ने तो उन्हें पति धर्म पर एक लंबा उपदेश दिया। रात को जब वो भोजन करके लेटे तो दोनों सालियां आकर बैठ गईं और मुस्कुराकर बातें करने लगी। ये बातें कोई सामान्य बातें न थी, उनमें व्यंग था। वो शब्द थे जो उसे मुंह चिढ़ा रहे थे और हकीकत बयां कर रहे थे और उसे आईना दिखा रहे थे। तभी एक क्षण में मंगला की माता आकर बैठ गई और बोली,
5: बेटा तुम तो बहुत पढ़े लिखे हो, देश विदेश घूम आए हो, कहीं सुंदर बनने की कोई दवा नहीं देखी?
3: माता जी, अब ईश्वर के लिए और लज्जित न कीजिए।
5: तुमने तो मेरी प्यारी बेटी के प्राण ले लिए, मैं क्या तुम्हें लज्जित करने से भी गई? जी में तो था कि ऐसी ऐसी सुनाऊंगी कि तुम भी याद करोगे, पर मेहमान हो, क्या जलाऊं? आराम करो।
0: सुरेश आशा और भय की दशा में पड़े करवटें बदल रहे थे। तभी अचानक द्वार पर किसी ने धीरे से कहा, कुछ फुसफुसाहट सुनाई दी। सुरेश ने आवाज पहचानी, मानो प्यासे को पानी मिल गया। एक क्षण में मंगला उसके सम्मुख आई और सिर झुकाकर खड़ी हो गई। सुरेश को उसके मुख पर एक अनूठी छवि दिखाई दी, जैसे कोई रोगी स्वास्थ्य लाभ कर चुका हो। रूप वही था, रंग वही था, पर आंखें आंखें और थीं।
6: अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानी आभूषण का चौथा और अंतिम भाग। पात्र परिचय इस प्रकार से है, सूत्रधार रेणु चतुर्वेदी, विमल सिंह, जी श्याम, शीतला, पूनम त्रिपाठी, सुरेश सिंह, जयंत पात्रीकर, मंगला, ममता सिंह, शीतला की सास दीपा माहेश्वरी, मंगला की माँ राजश्री त्रिवेदी, प्रस्तुति अनुश्री पाठक, परिकल्पना एवं निर्देशन रेणु चतुर्वेदी।

0: ना जाने क्या हो गया कि सब कुछ ला दी नया नया, कि सब कुछ ला दी नया नया, कि सब कुछ ला दी नया।
1: दीपा समय हो चला है अंतराल का, तो अंतराल के बाद फिर मिलते हैं, सबसे बातें करते हैं। चलिए

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 22 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: तो दीपा, हम लोगों ने बहुत सारी जानकारी और कहानी भी प्रस्तुत करी है।
4: बिल्कुल, और कहानी सुनकर वाकई में सभी को आनंद आया, हमें भी आनंद आया। और अब देखो
3: क्या देखो नवीन शिक्षा सत्र की जो शुरुआत हुई है तो उसमें देखते हैं कि शुरुआत, या यूं कह लें कि बच्चे अगले क्लास में जाने लगते हैं तो उनके अंदर बहुत उत्साह, खुशी होती है क्योंकि उनको स्कूल यूनिफॉर्म से लेकर किताबें, कॉपी, बैग, बॉटल, टिफिन, जूते, सब कुछ नए मिलते हैं दीपा। और कौन से दोस्त पुराने नए मिलेंगे, टीचर कौन सी होंगी, हर छोटी छोटी बातें उनके दिमाग में चलती हैं और तभी खुशी से स्कूल जाने के लिए बच्चे तैयार हो जाते हैं।
4: कुछ तो बच्चे तैयार हो जाते हैं, लेकिन ऐसा भी होता है कि कुछ बच्चों को डर भी लगता है, फिर से पढ़ना पड़ेगा, मिस पता नहीं कैसी होंगी, गुस्सा तो नहीं करेंगी, दोस्त नए कैसे होंगे, फिर वही भारी बस्तें, किताबें, कितना सब कुछ कठिन होगा, है ना। लेकिन मिस, उन्हें ये भी लगता है मिस डांटेंगी तो नहीं, मम्मी पापा से दूर जाना होगा, कुछ ऐसे ही मानसिक शैक्षिक तनाव और स्कूल जाने का डर मन में कई बच्चों की ये भी कुछ इस तरह से भी बैठ जाता है।
3: बिल्कुल दीपा, बैठ जाती है। और बच्चों के सामने कुछ आने वाली समस्याएं भी होती है, जैसे वहां पर कैसे अपना एडजस्टमेंट बैठाएंगे, उन्हें नया माहौल होता है चूंकि बच्चों के लिए, और सख्त नियमों और अलग पढ़ाने के जो तरीके होते हैं, नए शिक्षक वहां पर आएंगे और वो अब किस तरह से बच्चों को पढ़ाते हैं, वो भी उनके ऊपर एक मानसिक दबाव होता है। तो उनको कैसे तालमेल बिठाना है, बच्चों को ये सब सोच के ही थोड़ी सी दिक्कत सी लगने लगती है। और स्कूल जाने का डर और घबराहट से वे कई तरह के बहाने बनाने लग जाते हैं। और अक्सर देखा होगा तुमने, बच्चे सुबह उठते ही रोना शुरू कर देते हैं कि मम्मी आज नहीं जाऊंगा, पेट दर्द कर रहा है, सर दर्द कर रहा है, इस तरह के बहाने बनाने लग जाते हैं। और कई बच्चे तो बड़े चिड़चिड़े हो जाते हैं, कुछ कहेंगे भी नहीं, बस रोए जा रहे हैं।
4: हाँ, तो ऐसा भी होता है, भाई देखो ना क्या हो गया है, अब गर्मियों की छुट्टियां तो खत्म हो गई है, जो खेल कूद और मस्ती भरे दिन थे वो भी कहीं उड़नछू होते चले जा रहे हैं। एक लंबे समय के बाद अचानक पढ़ाई के रूटीन में जब बच्चे लौटते हैं ना, तो ऐसा व्यवहार हम देखते ही हैं अक्सर। और

0: वही पढ़ाई का कहीं ना कहीं एक बोझ सा भी उनको लगने लगता है, नई शिक्षा के कठिन जो ये सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, और फिर जो होमवर्क आ जाता है, उनको गृह कार्य आ जाता है, इसमें समय उनका पूरा निकल जाता है और उनको एक दबाव सा शुरुआत में लगता है।
1: बिल्कुल
0: फिर वो
1: बिल्कुल
0: धीरे धीरे उसकी आदत में आते हैं, लेकिन पहले उनको ऐसा लगता है अभी तो हम दिन दिन भर खेल रहे थे, अब
1: हाँ
0: अचानक से एक नियम उनके ऊपर बन
1: सही
0: गया, एक
1: बात।
0: रूटीन उनका बनना शुरू हो गया है।
1: बिल्कुल। और जो उनकी दोस्त मित्र मंडली है, सहकर्मियों का दबाव भी उनके ऊपर पड़ता है दीपा, और दोस्तों का साथ छूटना या नए साथियों के बीच खुद को स्थापित करना, साबित करना और सामाजिक स्वीकृति पाने का तनाव भी बच्चों में देखा जाता है। और इसके साथ ही सुबह जल्दी उठने, स्क्रीन टाइम कम करने और खेलने पढ़ने के बीच संतुलन बनाने में बच्चे अक्सर असमर्थ रहते हैं। उनको लगता है अरे हम खेल नहीं पाएंगे, सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। तो जल्दी उठना और खेल नहीं पाना, इसके बीच में बच्चे बड़े फंसे रहते हैं, उलझे रहते हैं कि अब तो पढ़ना ही पड़ेगा, उनको पढ़ाई से पीछे भागती है। क्योंकि होता यही कि इतने दिन छुट्टियां होती हैं लंबी, तो बच्चों की वो छुट्टियों में आराम से उठने की आदत होती है और
0: बिल्कुल
1: घंटों घंटों खेलना रहता है, पढ़ाई से कोई वास्ता नहीं रहता है, तो नए सत्र में ये चीजें रहती। तो वही माता पिता और शिक्षक
0: देखो
1: उनकी बच्चों की
0: इनकी,
1: मदद करें,
0: हाँ
1: है ना।
0: बिल्कुल, इनका सपोर्ट और इनका मदद की बहुत ज्यादा जरूरत है बच्चों को, छोटे बच्चे जहां हैं, और अगर उनकी अगर हम बात करें तो प्यार से उनसे बात करना बहुत जरूरी है, उनके मन की बात जानना, उनसे उनके मन में क्या चल रहा है, क्या उथल पुथल चल रहा है ये पूछना। फिर बच्चों को डराने के बजाय, हम लोग क्या डरा डरा करके, कई बार ऐसा हो जाता है ऐसा नहीं करोगे तो देखो ऐसा हो जाएगा, वैसा नहीं करोगे तो देखो वैसा हो जाएगा, ये नहीं करके दोस्ताना व्यवहार रखना बहुत जरूरी है, ताकि वो अपनी जितने भी समस्याएं हैं वो खुलकर बता सकें। फिर बच्चों के लिए एक नियमित दिनचर्या बनाना होता है, वो
1: बिल्कुल
0: उसमें ऐसा नहीं कि आज बनाया तो वो कल ढल जाएंगे, धीरे धीरे थोड़ा सा समय जाएगा
1: बिल्कुल
0: लेकिन वो उसमें ढल जाएंगे। फिर इस दिनचर्या में पढ़ाई, खेल और फिर अच्छे से सोना, इन सब का एक सही संतुलन होना बहुत जरूरी है। अब होमवर्क है, फिर बैग पैक करना, ये सारी तैयारियां करनी एक दिन पहले करना बहुत
1: बिल्कुल
0: जरूरी हो गया है। जूते पे पॉलिश है या नहीं, यूनिफॉर्म पे बराबर इस्त्री है या नहीं, धुले हैं या नहीं, ये सब बहुत छोटे बच्चे हैं तो पेरेंट्स देखेंगे, लेकिन जहां बड़े बच्चे हैं वहां उनको ये सब चीज देखना होती है।
1: बिल्कुल
0: तो थोड़े से एक रूटीन, जो बिल्कुल स्वच्छंद अभी रूटीन था, कुछ
1: जी,
0: रूटीन ही नहीं था
1: रूटीन ही
0: असल
1: नहीं
0: में,
1: था कहना
0: और अब
1: चाहिए।
0: एक सिस्टम बनता चला जा रहा है, एक दिनचर्या उनके ऊपर आ रही है कि नियमित तरीके से ये करना होगा आपको, तो थोड़े से परेशान होते हैं लेकिन हमें उनकी भी उलझन को समझना बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल, उनको छोटी छोटी चीजें उनकी उनसे करवाएं और उनकी तारीफ भी करें कि देखो भाई तुमने अच्छे से अपनी यूनिफॉर्म रखी है और साथ में बैग भी तुमने अच्छे से लगा लिया है और शूज भी सही जगह से तुमने रखे हैं पॉलिश करके, तो और देखो तुम्हारे पास कितनी अच्छी अच्छी चीजें हैं, इनको लेके जाओगे स्कूल में तो बच्चे कितने खुश होंगे और साथी तुम्हारे कितने खुश होंगे, नई टीचर बहुत प्यार करेगी। इस तरह से बच्चों को थोड़ा सा कहना चाहिए कि हम बहला फुसला कर बच्चों को स्कूल भेजें तो बच्चों का मन भी लगेगा,
0: बिल्कुल।
1: है ना। तो
0: और
1: हमारे
0: वही देखिए
1: साथी
0: जी, संदेश भी आए हैं हमारे श्रोताओं के। एक संदेश कहता है कि नवीन शिक्षा सत्र की शुरुआत को नई ऊर्जा और योजना के साथ करना ही सफलता की कुंजी है। नवीन सत्र की शुरुआत केवल नई कक्षाओं में प्रवेश भर नहीं है, बल्कि नए सपनों, नए संकल्पों और नई संभावना की ओर बढ़ाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। यह समय है पुराने अनुभव से सीख लेकर नई ऊर्जा और उत्साह के साथ ज्ञान के पथ पर आगे बढ़ने का।
1: बिल्कुल। और हमारे एक साथी लिखते हैं कि नई शिक्षा सत्र की शुरुआत, भाई हम लोग के समय में शिक्षा सत्र की शुरुआत जुलाई माह से शुरू हुआ करती थी और फरवरी मार्च तक परीक्षाएं शुरू हो जाया करती थी, लेकिन अब गतिशील समाज में शिक्षा को दान का विषय न मानते हुए स्वयं के लिए वित्तीय वर्ष के अनुसार मार्च से अप्रैल तक कर दिया गया है। फलस्वरूप दान का विषय पूरी तरह से व्यापार विषय का दृष्टिकोण हो चुका है। इस तरह से इन्होंने बातें लिखी हैं। लेकिन देखा जाए दीपा, तो हम लोग के समय में भी जब हम लोग बच्चे थे तो बहुत सारी तैयारियां करते थे जाने के लिए, मम्मी लोग कितनी तैयारियां करती थी, फिर हम लोग भी पहले दिन तो बड़े खुशी खुशी जाते थे, फिर अगली बार जब एक हफ्ते बाद लगता था अरे फिर से जाना है, फिर से पढ़ना है, तो कहीं ना कहीं मन पीछे की ओर भागता था, लेकिन भाई माता पिता इतने प्यार से करते थे तो पढ़ना तो पड़ता ही था, और पढ़ना तो सब बच्चे के लिए बहुत अच्छी बात है ना।
0: बिल्कुल, क्योंकि ये
1: तो
0: आपके जीवन के जो नींव है वो बनाती है।
1: बिल्कुल, तो भाई अपने बच्चों को बहुत प्यार से भेजें स्कूल, उन्हें डराए नहीं, और बल्कि अब चलिए उनको एक गीत सुना देते हैं सबको।
0: चलिए

0: मंजरी, जैसे शिक्षा सत्र की शुरुआत हो रही है वैसे ही बस अब कुछ ही दिनों में मच्छरों की आतंक की शुरुआत होने
1: हम
0: वाली है।
1: इतना मतलब ये
0: जी
1: तो बात है ही, लेकिन साथ में एक सुखद अनुभव ये भी होगा कि बरसात की, वर्षा ऋतु की भी शुरुआत हो जाएगी।
0: बिल्कुल, गर्मी
1: और हर एक
0: से
1: अच्छी चीज के
0: जी
1: साथ एक चीज है जो कि कहीं वो उसमें एक खामियां भी लेकर आती है ना, साथ साथ
0: बिल्कुल,
1: में
0: क्योंकि
1: होती
0: देखो
1: है।
0: गर्मी का जो मौसम चल रहा है इसमें जब बारिश की फुहारें आएंगी और जो कहीं कहीं हल्की हल्की बारिश हुई भी है तो कहीं नहीं हुई है तो वो लोग बारिश के लिए बेताब भी हैं, लेकिन जब बारिश होती है तो इन सब कीट जो पतंगे होते हैं इन सब का घर में आना जाना, मच्छरों का आना जाना बहुत शुरू हो जाता है।
1: बिल्कुल
0: तो मच्छरों से बचाव के लिए बहुत ध्यान रखना पड़ता है हमको। तो उसके लिए कि पहला तो मच्छरों से बचाव के लिए घर में और आसपास पानी जमा मत होने दीजिए, हमारे साथी लिख रहे हैं। और साथ में आपके अंदर, घर के अंदर भी बहुत सारे हम ऐसे इंडोर प्लांट रखते हैं जिनमें पानी, हम भर के पानी में पौधे उगाते हैं, तो उन पानी को आप बदलते रहें हर दो दो दिन पे तो बहुत अच्छा रहेगा, जिससे उसमें लार्वा ना पनपने पाए। तो इन चीज का हमें ध्यान रखना है।
1: बिल्कुल। और ये हमारा एक और संदेश है जो कहता है कि हमारे यहाँ यानी सूरत से है ये, और कह रही है कि सुबह सुबह हल्की सी बारिश हो गई थी, वो भी अब लगता है कि कहीं झपकी के मोड़ में आ गई है, यानी कि थोड़ी सी बारिश हुई होगी फिर रुक गई होगी। और बारिश हो और मच्छरों का उपद्रव ना हो ये तो संभव नहीं हो सकता। ये तभी कर सकते हैं कि आप अपने घर के आसपास या गमलों में पानी ना जमा होने दें, अगर हो तो उसको निकाल लें क्योंकि ये करना बहुत जरूरी है। और सोते समय मच्छरदानी का उपयोग अवश्य करें, घर की खिड़कियां या दरवाजे पर भी जाली अवश्य लगवा लें, घर में कपूर जलाएं या नीम के तेल का दिया जलाएं, ये मच्छरों को भगाने में मदद करता है।
0: और हमारे एक साथी और लिखते हैं कि मच्छरों से बचाव गर्मी की एक सबसे बड़ी समस्या है होती है। गर्मी और बरसात की जारी जारी है, मच्छरों से बचाव के लिए अपने आसपास जहां पानी जमा रहता है वहां पानी जमा ना होने दें, और साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखें कि अपने जो आसपास की, आपने जो आसपास जो कलर वगैरह कराया है वो हल्के रंगों का हो और सफाई करें। और ये बहुत जरूरी है कि क्योंकि वहीं पर सबसे ज्यादा मच्छरों के जो लार्वा है वो पनपते हैं, और जब भी सोए मच्छरदानी के को लगा करके आप सोए, और मच्छर से बचाव करने वाले जो कुछ आप उपाय कर सकते हैं।

0: आप सफाई करना, लेकिन ये एक बार अगर आपने पहले से ही कर दिया तो बारिश आने के पहले ही अगर सफाई हो जाएगी तो वहां पे गंदा पानी होगा ही नहीं, और उसके बाद कुछ कुछ दिनों में वो सफाई हमें करते रहने पड़ेगी, क्योंकि हर मौसम का एक अपना अगर सुकून है तो ध्यान रखने की बात भी जरूरी
1: बिल्कुल है। और शाम हो, जैसे ही शाम होने लगे तो उस समय घर के दरवाजे खिड़कियां बंद कर दीजिए।
0: बिल्कुल
1: खिड़कियों में या दरवाजों में जाली लगी हो तो आपके हर घर में, हर उसमें लगी हो कमरों में, तो आपको बहुत आराम रहेगा, मच्छर आने नहीं पाएंगे और मच्छरों से
0: और ये
1: बचना है।
0: इसमें ये भी जोड़ना चाहती हूँ कि 5 से 7 बजे के बीच में मच्छर आ जाते हैं तब क्या उजाला रहता है, हमें लगता है नहीं अभी बंद कर देंगे तो थोड़ी गर्मी लगने लगेगी और हम खिड़कियां खुली रखते हैं, लेकिन ऐसा ना करते हुए 5 बजे 6 बजे के बीच में ही आप सारी खिड़कियां बंद कर लें। बाद में थोड़ी देर के बाद अगर आप खोलते हैं तो चलता है, लेकिन मच्छर की वाली अगर जो बारीक छेद वाली अगर खिड़कियां हैं तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि विशेष तौर पर मच्छर से बचने के लिए दरवाजे भी बनाए गए हैं आजकल, तो छोटी छोटी खिड़कियां भी होती हैं, स्लाइडिंग विंडोज भी होते हैं, इस तरह की चीजों का आप इस्तेमाल करें। छोटे बच्चे घर में हैं तो उनको कपड़े पूरे
1: पूरे
0: बाहर के
1: पहनाएं।
0: और पूरे पैरों को ढके, उनके शरीर उनका ढका हुआ रहे, भले ही वो पतला कॉटन का कपड़ा हो,
1: और दीपा
0: लेकिन
1: इसके साथ ही जो घर में हम चादर वगैरह बिछाते हैं वो भी हल्के कलर के होने चाहिए।
0: जी
1: अगर हम गहरे रंगों के, भूरे हैं, काले नीले बिछाएंगे तो उसमें मच्छर बैठेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा। जितना हल्का कलर होगा उतनी जल्दी आप उनको देख सकते हैं और उनसे बच सकते हैं। फिलहाल तो हम एक गीत सुन सकते हैं।
0: इससे हम बचना बिल्कुल नहीं चाहते।
2: पलकों के पीछे से क्या तुमने कह डाला, फिर से तो फरमाना।

मुश्किल था एक तो पहले ही दिल का पहलना, आफत फिर उस पे लट में तुम्हारा मुखड़ा छिपा के चलना। अरे तौबा मेरी तौबा, मुश्किल था एक तो पहले ही दिल का पहलना, आफत फिर उस पे लट में तुम्हारा मुखड़ा छिपा के

बच बच के हमसे ओ मतवाली है ये कहाँ का इरादा, नाजुक लबों से फिर करती जाओ मिलने का कोई वादा, बच बच के हमसे ओ मतवाली है ये कहाँ का इरादा, नाजुक लबों से

0: से क्या तुमने कह डाला फिर से तो फरमाना।
1: नैनों ने सपनों की महफिल सजाई है तुम भी जरूर आना।
0: पलकों के पीछे से क्या तुमने कह डाला फिर से
2: अब तो भाई सुरीले सा संगीत हो और फिर कुछ ही दिनों में झमाझम बारिश होगी, ऐसे में अगर चाट मिल जाए रंग बिरंगी उत्तर प्रदेश की तो फिर क्या ही बात है। तो फिर चलिए उसके लिए क्या क्या चाहिए ये भी हम देख लेते हैं। टिक्की बनानी होगी, उसके लिए उबले हुए मैश किए हुए आलू लेना है 4-5, अरारोट या फिर कॉर्नफ्लोर आप ले लीजिए 3-4 चम्मच, और छोले यानी कि सूखी सफेद मटर होती है वो लेना है 1 कप रात भर भीगी हुई, रात को ही भिगा लीजिएगा अगर आपको अगले दिन बनाना है। हल्दी 1 छोटा चम्मच, नमक, गरम मसाला ये सब आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं, और चटनी है स्वाद अनुसार, और गार्निश के लिए हरी चटनी आपको लेना है, उसमें पिसी हुई धनिया, पुदीना, हरी मिर्ची, अदरक और नींबू होते हैं। ये तो बन गई आपकी हरी धनिया की चटनी। मीठी चटनी भी बनानी होगी, उसके लिए आपको इमली या अमचूर और चीनी मिलाकर या गुड़ मिलाकर गाढ़ा सा एक आपको चटनी बनानी है, मीठी चटनी, ये भी ऊपर से डाला जाएगा, और फिर फेंटा हुआ मीठा दही चाहिए, भुना हुआ जीरा पाउडर चाहिए, काला नमक, चाट मसाला चाहिए, लाल मिर्च पाउडर और कटे हुए प्याज, और ऊपर से सब सजाने के लिए हरा धनिया। भाई हमारे सखियां कहेंगी बहुत सारी चीजें, लेकिन भाई मजा भी तो तभी है ना, उसका स्वाद भी उसी तरह से बढ़ेगा। अब मटर आप उबाल लीजिए भीगी हुई जो आपने रात भर रखी थी, इसमें हल्दी नमक डालकर पानी डालकर कुकर में 4-5 सीटी ले लीजिएगा। मटर गाढ़ी और थोड़ी लिपटी सी हुई होनी चाहिए। टिक्की कैसे तैयार करना है, मैश किए हुए आलुओं में अरारोट और नमक मिला लेना है, इसे आटे की तरह गूंद लेना है। अब छोटी छोटी लोइयां बनाकर गोल और चपटी टिक्कियां तैयार कर लीजिए। फिर तवे पर आपको जैसे आपको पसंद हो घी से या तेल से आप इसको सेक लीजिए दोनों तरफ से सुनहरा और कुरकुरा होने तक। प्लेटिंग कैसे करनी है, एक प्लेट में 2 टिक्की या जैसे आपको घर में पसंद है उस तरह से रखिए, उसके ऊपर गरम जो माफ कीजिएगा उसके ऊपर जो तैयार की है आपने गरम मटर वो डालिए, मसाले और चटनी डालना है, और अब इसमें जो ऊपर से इसके ऊपर फेंटा हुआ दही, फिर हरी चटनी और बहुत सारी मीठी चटनी डालिएगा, या घर में अगर आपके किसी घर में तीखा पसंद है तो हरी चटनी ज्यादा डालिए। इसके बाद चाट मसाला, काला नमक, भुना जीरा, लाल मिर्च पाउडर ये सब हल्का हल्का भो रखना है, और फिर आखिर में कटे हुए प्याज डाल के हरा धनिया से आप इसे सजाकर सर्व कीजिए।
3: और इसी तरह हरी धनिया के आलू भी बनते हैं, हरी धनिया पुदीने की बढ़िया चटनी बनाइए, उबले आलू लीजिए और उसके सबको मिक्स कर दीजिए, तो आपके हरी धनिया के आलू जो चाट है वो तैयार हो जाए।

0: छठा एक दिन रूठ कर शाम से, रूठ कर शाम से।
1: तो दीपा देखो, बात तो करते करते एकदम समय का पता ही नहीं चला। हमारे सभी साथियों ने बहुत सारे संदेश भेजे और बहुत अच्छी सी रेसिपी भी लिखकर भेजी।
2: बिल्कुल, तो और रेसिपी जो भेजी है उसको आप, लंबी है लेकिन बनाइएगा जरूर, क्योंकि बारिश के मौसम में ये बहुत स्वादिष्ट और मजेदार लगेगी। और अपना ध्यान रखिएगा मच्छरों से भी, और बच्चे नहीं अभी जब स्कूल जाने के लिए थोड़ा सा जिद करेंगे या मन उनका नहीं होगा तो उनका मन को बहलाइए खूब अच्छी इस तरह की रेसिपी बना के।
1: तो अभी विदा लेते हैं प्रोग्राम से सभी को, मंजरी वर्मा और
2: दीपा माहेश्वरी का नमस्कार।

0: सखी
1: सहेली
0: कार्यक्रम की प्रस्तुत करता अनुश्री पाठक। सखी सहेली।

0: नमस्कार श्रोताओं, सेहतनामा कार्यक्रम में हम आज आपके लिए लेकर आए हैं सुप्रसिद्ध गैस्ट्रो एंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता से एक मुलाकात। आपसे बातचीत की है ममता सिंह ने। आज सुनिए इस बातचीत का पहला भाग।
1: नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह और आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है एक ऐसे डॉक्टर को जो हेपेटोलॉजी गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के सीनियर कंसल्टेंट है कोकिलाबेन हॉस्पिटल में। आप हैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता। डॉक्टर साहब, आपका विविध भारती के स्टूडियो में हम बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। नमस्कार।
2: नमस्कार, धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए, ये अवसर देने के लिए, आपसे बात करने के लिए।
1: डॉक्टर साहब, यहाँ विविध भारती के स्टूडियो में आकर आपको कैसा महसूस हो रहा है, कैसा लग रहा है?
2: नहीं, बहुत बढ़िया लग रहा है। काफी दूर है हमारा हॉस्पिटल से, इतना बड़ा स्टूडियो, इतनी बड़ी जगह, इतनी खुली जगह देख के बहुत अच्छा लग रहा है। काफी बड़े स्टूडियोज हैं, फिर सब लोगों को मिलकर बहुत अच्छा लगा।
1: जी, आज सेहतनामा कार्यक्रम में हम चर्चा कर रहे हैं फैटी लिवर और पेट की अन्य तमाम बीमारियों के बारे में। तो डॉक्टर साहब, फैटी लिवर आजकल बहुत कॉमन हो गया है, हर चौथा पांचवा मरीज ऐसा सुनने में आता है और सोशल मीडिया के माध्यम से तो हर कुछ पॉपुलर हो जाता है, मशहूर हो जाता है। तो बताइए कि ये फैटी लिवर है क्या और इससे कौन कौन सी बीमारियां उत्पन्न होती हैं?
2: आपने बिल्कुल सही किया, फैटी लिवर अभी बहुत बहुत कॉमन हो चुका है। आपने कहा हर चौथे पांचवे आदमी को फैटी लिवर है, पर मैं कहूंगा हर दूसरे तीसरे आदमी को फैटी लिवर है। अगर आप देखें ओवरऑल फैटी लिवर को, तो कहने में आया है कि बड़े शहरों में जो हम अर्बन पॉपुलेशन कहते हैं, उनमें अबाउट 30-40% लोगों को ये बीमारी है फैटी लिवर। अगर आप गांवों में चले जाए, छोटे शहरों में चले जाए, तो ये बीमारी थोड़ी कम है। और इसके कारण भी मैं आपको बताऊंगा। फैटी लिवर का मतलब होता है लिवर के अंदर ज्यादा फैट जमा हो जाना। हमारे लिवर के अंदर फैट होना जरूरी है फॉर बॉडी के कई फंक्शंस के लिए, बट जब ये फैट ज्यादा हो जाता है तब ये लिवर को नुकसान देता है, और अगर लिवर खराब हो जाए तो बॉडी के कई और ऑर्गन्स पे ये इफेक्ट करता है। अगर हमारे लिवर के अंदर फैट 5% मतलब 5% से ज्यादा हो जाए तो ये आगे जाके प्रॉब्लम दे सकता है। सबको नहीं, किसी किसी लोगों को ये प्रॉब्लम देता है।
1: जी, तो इसके कारण क्या है डॉक्टर साहब, क्यों फैटी लिवर होता है?
2: तो सबसे बड़ा कारण आई थिंक हमारे यहाँ है कि हमारी डाइट, अभी हमारी डाइट काफी सैचुरेटेड डाइट हो गई है। हम वेस्टर्नाइज डाइट हमने अडॉप्ट कर ली है, हम फास्ट फूड ज्यादा खाते हैं, तो हमारी कार्बोहाइड्रेट की जब जो मात्रा होती है, अगर वो ज्यादा हो तो ये एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट जो हम खाते हैं वो लिवर में फैट करके स्टोर हो जाता है और लिवर को खराब करता है। डायबिटीज होना, प्री डायबिटीज होना, एक्सरसाइज नहीं करना, आजकल सब ऑटो में जाते हैं, टैक्सी में जाते हैं, वॉक करना तो ऑलमोस्ट सबने छोड़ ही दिया है, सबके वजन बढ़ रहे हैं, तो ये कई कारण है जिससे लिवर में फैट ज्यादा होता है और उससे लिवर को नुकसान पहुंच सकता है।
1: तो फैटी लिवर से और कौन कौन सी बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं, और एक बात और दूसरी बात ये बताइए कि इसके लक्षण क्या है, कैसे मरीज को पता चले कि फैटी लिवर हो गया है उसको?
2: तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि हमको पता ही नहीं चलता कि ये प्रॉब्लम हो रही है। जब पेशेंट हमारे पास आता है ये प्रॉब्लम के साथ, तब काफी लेट हो चुका होता है, ऑलरेडी लिवर पूरी हद तक खराब हो चुका होता है, जिसको हम सिरोसिस कहते हैं। अगर हम इसको जल्दी पकड़े तो इसकी ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। आपका फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का था कि ये क्यों होता है और इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, लक्षण क्या होते हैं। तो नॉर्मली इसके लक्षण बहुत कम होते हैं, कभी कभी हमको हमारे पेट के ऊपर के हिस्से में थोड़ा दर्द हो सकता है, थकान आ सकती है। अगर हम अपने ब्लड टेस्ट चेक करें, उसमें हमको डायबिटीज हो सकती है या प्री डायबिटीज हो सकता है।

0: कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आता है ब्लड के अंदर। तो ये दो तीन लक्षण है जिससे हमको सोचना चाहिए कि हमको शायद फैटी लिवर हो। क्लियरली अगर आपका वजन बढ़े जा रहा है, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, खाना ठीक से नहीं खा रहे हो, तो आपको फैटी लिवर होने की संभावना है। बट अगेन मैं यही कहूंगा कि चेकअप करना जरूरी है, क्योंकि इसके कोई सिम्टम्स होते नहीं है, सिम्टम्स बहुत आगे जाके आते हैं जब हम कुछ नहीं कर सकते।
1: जी, तो क्या है चेकअप का तरीका, क्या होता है डॉक्टर साहब फैटी लिवर का, किस तरह की जांच पद्धति है?
0: तो इस बेसिक चेकअप जो होता है, हमें सादे जो ब्लड टेस्ट होते हैं, जो हम रेगुलर ब्लड टेस्ट करते हैं, उसमें हम देख लेते हैं कि हमको डायबिटीज है कि नहीं, हमारा HbA1c कितना है, हमारा ट्राइग्लिसराइड्स कितना है, LDL कोलेस्ट्रॉल कितना है, हमारा वजन कितना है। अगर वजन हमारा बढ़ रहा है या ज्यादा है, हम ओबीस कैटेगरी में आते हैं, जिसमें हम नंबर कैलकुलेट करते हैं BMI, जो हाइट और वेट पे डिपेंड करता है, और अगर वो 23 से ज्यादा हो तो देयर इज अ रिस्क कि आपको शायद फैटी लिवर हो। फिर एक्चुअल डायग्नोसिस के लिए सोनोग्राफी लगती है। अगर आप पेट की सोनोग्राफी कराओ, कोई और कारण भी कराओ, उसमें अगर लिवर दिखे और उसमें आए कि लिवर फैटी है, तो वो आपकी डायग्नोसिस होगी फैटी लिवर है। पर ये खाली कह रहा है कि आपको फैटी लिवर है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको तकलीफ है। फैटी लिवर कई लोगों को होता है, पूरी जिंदगी लिवर में थोड़ा फैट ज्यादा होता है, पूरी जिंदगी कट जाती है, लिवर को कुछ नहीं होता है। बट ऐसे थोड़े पेशेंट्स हैं जिनको हमको ढूंढना पड़ता है, जिनको आगे जाके ये फैटी लिवर नुकसान देवा दे सकता है। टेस्ट करने के लिए कि कितना लिवर डैमेज है, दो तीन तरह के टेस्ट होते हैं। एक मशीन आती है हमारे ओपीडी में, जिसमें मशीन से लिवर को हाथ लगाते हैं, वो 2 मिनट के अंदर बता देता है कि फैट कितना है पर नुकसान है कि नहीं। अगेन अगर नुकसान है तो उसकी ट्रीटमेंट करने की जरूरत है। कई नई अल्ट्रासाउंड आए हैं जो अगेन लिवर को स्कैन करके बता देते हैं फैट है और डैमेज है कि नहीं। थोड़े एडवांस टेक्नोलॉजीज भी है हमारे हॉस्पिटल में, क्योंकि हम काफी ट्रांसप्लांट्स करते हैं हमारे डिपार्टमेंट में, तो एक MRI करके स्कैन आता है जिससे हम पता करते हैं कि लिवर में डैमेज है कि नहीं, और एक स्पेशल CT स्कैन भी अवेलेबल है। अब ये सारे जो टेस्ट है सिंपल टेस्ट है, हमको आराम से मिल जाते हैं सब जगह से। अगर आपको चाहिए कि कोई फाइनल टेस्ट हो जो बताए कि कितना लिवर खराब है, तो लिवर बायोप्सी करते हैं, लिवर का एक टुकड़ा लेते हैं। पर मुझे याद नहीं है लास्ट मैंने लिवर बायोप्सी फैटी लिवर के लिए कब की थी, क्योंकि हमारे जो न्यू टेक्नोलॉजीज है वो इतने सोफिस्टिकेटेड, इतने एडवांस हो चुके हैं कि 2 मिनट के अंदर मैं पेशेंट को बता देता हूं कि आपको लिवर में खाली फैट है कि फैट के साथ नुकसान है। बट इसके लिए पेशेंट हैज टू बी एजुकेटेड, पेशेंट को पता होना चाहिए कि मुझे ये टेस्ट करने हैं। अगर हमारे पास वो टेस्ट लेके आओगे तो हम आगे आपको टेस्ट करके आंसर दे पाएंगे।
1: जी, और सबसे बड़ी बात यह है कि जरा भी तकलीफ होती है या यूं ही फैट बढ़ रहा है तो डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। अमूमन लोग डॉक्टर के पास जाने में ही परहेज करते हैं, अपने आप ही गूगल के जरिए कुछ कुछ दवाइयां ले लेते हैं, ये भी ठीक नहीं है। खासतौर से उन श्रोताओं के लिए ये बात हम कह रहे हैं जो ग्रामीण इलाकों में, कस्बों में बसते हैं, तो उनकी जानकारी के लिए बड़ी कारगर बातें आपने बताई। डॉक्टर साहब, आगे बढ़ने से पहले एक गाना हम अपने श्रोताओं को सुनवा दें, आपकी पसंद का गाना बताइए।
0: मेरा एक गाना जो बहुत मुझे पसंद है, जब मैं अमेरिका में था काफी साल, 14-15 साल मैंने वहां बिताया।
1: अच्छा।
0: तो यहाँ बॉम्बे का ही हूँ, यहाँ ही पढ़ा लिखा हूँ MBBS की, मगर बाहर जाके ट्रेनिंग की, एडवांस ट्रेनिंग की, प्रैक्टिस की काफी साल। तो 14-15 साल छोड़ के मैं वापस आ गया, क्योंकि मेरे पेरेंट्स यहाँ थे। तो वहां मैंने एक सॉन्ग बहुत सुनता था, वो स्वदेश पिक्चर का एक सॉन्ग था शाहरुख खान का,
1: ये जो देश है मेरा।
0: ये सॉन्ग मुझे बहुत बहुत पसंद।
1: क्या बात है, सुनते हैं यही गाना स्वदेश फिल्म का।

0: डॉक्टर साहब, आपने जिक्र किया कि आप अमेरिका में रहे बहुत साल, तो किस तरह की पढ़ाई वहां पर थी आपकी?
1: तो बेसिक MBBS मैंने यहाँ से की, बॉम्बे से की। फिर वहां पे मेरे फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली वहां रहती थी, तो मैं वहां जाके पहले अपना बेसिक MD मेडिसिन की हमने वहां पे, तीन तीन साल का कोर्स होता है वहां पे, तो MD मेडिसिन MBBS के बाद करते हैं। फिर उस टाइम पे मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि वहां पे लिवर के लिए पढ़ाई करूँ एक्स्ट्रा, जो स्पेशल फेलोशिप होती है हेपेटोलॉजी की, जब हम लिवर और लिवर ट्रांसप्लांट के बारे में सीखते हैं हाउ टू डू, तो मैंने 1 साल का कोर्स किया। इसके पीछे भी एक रीजन है कि क्यों मैंने ये फील्ड चूज की थी, मैं बताऊंगा आपको आगे। और सब्सिक्वेंटली पूरी ट्रेनिंग खत्म करने के लिए गैस्ट्रोएंटरोलॉजी जो करते हैं हम, एंडोस्कोपी वो की, एंड फाइनली मैंने हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में जाके एडवांस एंडोस्कोपी सीखी, जो स्पेशलाइज एंडोस्कोपीज होती है, एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड, ERCP करके टेस्ट होते हैं जो हमारे ट्रांसप्लांट पेशेंट पे भी करते हैं, वो सीखी। तो ओवरऑल 8 से 9 साल लगे वहां पे पढ़ने को, फिर 4-5 साल उधर काम किया, फिर 14 साल बाद आई डिसाइडेड कि वापस आना चाहिए अपने देश। तो जैसे मेरी माँ कहती है ना, वनवास करके आ गया वापस।
0: अरे क्या बात है, ये बहुत बड़ी बात आपने बताई, और हमारे बहुत सारे युवा श्रोता सुनते हैं प्रोग्राम, तो कितनी अच्छी बात है कि अपने देश की प्रतिभा को वापस अपने देश में आपने दिया। और अपने श्रोताओं को ये बताते हुए हमें अच्छा लग रहा है कि हम निजी तौर पर भी डॉक्टर साहब को जानते हैं, और बड़े अनुभव का खजाना है हमें पता था, लेकिन इतनी सारी नॉलेज का भी खजाना है ये हमें आज पता चला। डॉक्टर साहब, आज फैटी लिवर पे हम पहले बात कर रहे हैं, उसके बाद हम बहुत सारी पेट की बीमारियों पर भी चर्चा करेंगे। हमें बताइए कि दवाइयों से क्या फैटी लिवर का इलाज संभव हो सकता है, या कोई ऑपरेशन या परहेज कुछ करना पड़ता है?
1: बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि जब भी पेशेंट हमारे पास आता है, वो पेशेंट की एक्सपेक्टेशन रहती है कि हम एक दवाई लिख के दें। तो फैटी लिवर ऐसी बीमारी है जो अगर जल्दी पकड़े जाए तो उसके लिए दवाई की जरूरत नहीं है। अगर आप अपने बॉडी का 5 to 10% भी वजन कम कर पाए, किस तरह भी, चाहे आप डाइट करो, एक्सरसाइज करो, अगर 5 से 10% आपने वेट कम कर लिया तो बीमारी पूरी तरह से मिट जाती है मोस्ट पेशेंट्स में। पर ये करना बहुत मुश्किल है, कहना आसान है। तो मोस्ट पेशेंट को कोई ना कोई दवाई की जरूरत पड़ती है। पहले हम विटामिन ई देते थे, एक गोली आती थी वो देते थे उसके लिए। उसके बाद और नई दवाई, एक इंडियन दवाई आई है जो हम देते हैं, जिससे फैटी लिवर भी कम होता है और लिवर का डैमेज भी थोड़ा थोड़ा कम होता है। अमेरिका में दो और दवाई अभी अप्रूव हुई है, एक साल पहले हुई थी, अभी 6 महीने पहले हुई है। आजकल जो सबसे अधिक दवाई हम यूज करते हैं इसके लिए, वो है सेमाग्लूटाइड, एक तरह का इंजेक्शन होता है जिससे वेट लॉस होता है, जो आजकल काफी फेमस हो चुका है फॉर गुड एंड बैड रीजंस। तो देर आर मेडिसिन अवेलेबल हैं दवाइयां, मगर ये डॉक्टर के देख के डॉक्टर है सुझाव कि कौन सी दवाई आपके लिए सही है। मेरा मानना होता है कि पेशेंट्स खुद, जैसे आपने कहा, गूगल करके दवाई ले लेते हैं, स्पेशली ये जो हर्बल मेडिसिन होते हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन।

0: में, तो उसमें थोड़ा ध्यान से लेना चाहिए क्योंकि उनमें कभी कभी भस्म होता है, उसमें लिवर को डैमेज करने का और चांस होता है। तो ये दवाइयां थोड़ा ध्यान से लेनी चाहिए। अगेन बिना दवाई के हो सकता है, मेरे हर एक पेशेंट को पहले मैं 3 से 6 हफ्ते का चांस देता हूं कि वेट लॉस करो। अगर वजन नहीं कम कर पा रहे और नहीं हो रहा है आपका फैटी लिवर रिवर्स, फिर हम दवाई शुरू करते हैं।
1: जी, तो डॉक्टर साहब आजकल ये समस्या युवाओं में भी बढ़ रही है, उसका कारण स्ट्रेस है, पढ़ाई का बोझ है, और अगर वो कंपनीज में काम कर रहे हैं तो उसका बोझ है, तो क्या तनाव भी एक कारण है? एक बात ये बताइए, और साथ में हमें ये भी बताइए कि लिवर के, फैटी लिवर के कारण और कौन कौन सी बीमारियां पैदा हो जाती हैं?
0: हाँ, तो बहुत सही कहा आपने, फैटी लिवर स्ट्रेस वो हैंड इन हैंड। आजकल मैं देखता हूँ मेरे जो पेशेंट्स आते हैं और फैमिली मेंबर्स भी, उन्होंने 12-12 घंटे काम कर रहे हैं, 14 घंटे काम कर रहे हैं, स्पेशली पढ़ाई कर रहे हैं, बैठे रहते हैं। मैं अपने लड़के के बारे में बोलूं, बैठे रहेंगे, वजन बढ़ेगा, एंड यू नो फिर उस टाइम पे कुछ सूझता नहीं है, जो हाथ में आया खा लिया, एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं है, जंक फूड खा लिया, डाइट इज बेसिकली नॉन एग्जिस्टेंट है अभी। तो आई थिंक स्ट्रेस ऑफ वर्क, स्ट्रेस ऑफ स्टडीज, स्ट्रेस ऑफ जॉब, ट्रैवल, वो सबसे भी अपने बॉडी के हार्मोन्स फ्लक्चुएट होते हैं, जिसमें वेट गेन होना बहुत रैपिडली होता है। फिर वो स्ट्रेस को कम करने के लिए हम खाना खाते हैं, जो बोलते हैं स्ट्रेस ईटिंग। हम ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खाएंगे, प्रोटीन कम खाएंगे, यू नो प्रोसेस्ड फूड्स खाएंगे, स्विगी ऑर्डर कर लिया, इंस्टा ऑर्डर कर लिया, 5 मिनट में घर पे आ गया, खा लिया और काम खत्म। तो ऑल दीज कैन देन लीड टू फैटी लिवर, एंड देन वंस फैटी लिवर हो गया, then fatty liver again is not the problem. The fatty liver अगर आपको है तो कह रहा है कि आपको बॉडी में और प्रॉब्लम होने की चांसेस है, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, किडनी डिजीज, ये सब वेट से रिलेटेड है, सब फैट से रिलेटेड है। तो लिवर तो बेचारा एक ऑर्गन है जो सब स्टोर कर रहा है, बट उसकी इफेक्ट सारे ऑर्गन्स पे हो सकती है।
1: जी जी, तो ये फैटी लिवर के बारे में अवेयरनेस बहुत कम है, तो हमारे बहुत सारे श्रोता जो विविध भारती के फेसबुक पेज से जुड़े हैं, उन्होंने कुछ सवाल भी भेजे हैं, तो फैटी लिवर के बारे में बताया है लेकिन सवाल उन्हें नहीं सूझा, तो मैं ही सब पूछ रही हूँ अपनी तरफ से, उन श्रोताओं की ओर से भी, कि फैटी लिवर पर अगर ध्यान नहीं दिया गया, थोड़ी बहुत लापरवाही या असावधानी की वजह से, तो क्या लिवर सोरायसिस या लिवर कैंसर जैसी बीमारियां भी पनप सकती हैं क्या?
0: बिल्कुल, अगर 100 पेशेंट्स को लें, 100 लोगों को लें जिनको फैटी लिवर है और उनको और कोई और बीमारी नहीं है, तो इनमें से 2 से 3% लोगों को आगे जाके लिवर सिरोसिस होगा। ये बहुत बड़ा नंबर है, ये मैं डायबिटीज वालों को नहीं बोल रहा, मैं रेगुलर पेशेंट्स को बोल रहा हूँ। अगर आप देखें हमारी इंडियन पॉपुलेशन इज क्लोज टू 250 करोड़, उसमें अगर आप 3% लोगों को भी लिवर सिरोसिस दे दे, दैट्स अ वेरी बिग नंबर। बहुत लोगों को लिवर सिरोसिस होता है, एक बार लिवर सिरोसिस हो जाए वो परमानेंट है, तो लिवर सिरोसिस पेशेंट को फिर लिवर कैंसर होने की संभावना 20 से 30 गुना ज्यादा होती है। तो लिवर फैटी लिवर से सिरोसिस होता है, सिरोसिस के साथ आगे कैंसर होने के चांसेस कई ज्यादा।
1: जी जी, डॉक्टर साहब यहाँ पर एक गाना सुनते हैं, बताइए आपकी पसंद का कौन सा गाना सुनाएं अपने श्रोताओं को।
0: दूसरा गाना जो मुझे बहुत पसंद है वो मैं एक्सरसाइज के टाइम कभी कभी सुनता हूँ।
1: जी जी, तो जी।
0: थोड़ी बीट सोनी चाहिए, भाग मिल्खा भाग वाला गाना,
1: क्या बात है,
0: मुझे पसंद है।
1: सुनते हैं, फरहान अख्तर पर्दे पर है और अच्छी एक्टिंग करते हैं और भाग रहे हैं सचमुच, तो बेहतरीन गाना चुना है, सुनते हैं यही गाना। और ये भाग मिल्खा भाग फिल्म का गाना सुनते हुए अपने श्रोताओं से ये भी कहना जरूरी है कि बस भागना जरूरी है जिंदगी में, क्योंकि अगर डॉक्टर साहब ने जैसा बताया कि बैठे बैठे आप बीमारियों के शिकार हो सकते हैं, तो कसरत कीजिए और भागिए।
2: अरे शक्ति मार रहा संसार, अब तू आने दे ललकार, तेरी तो बाहें पतवार, कदम है तेरे हाहाकार, तेरी नस नस लोहाकार, तू है आग मिल्खा, ओ बस तू भाग मिल्खा। अरे छोड़ दे बीते कल की बोरी, काट दे रस्सी सुतली डोरी, तुझसे पूछेगी ये मट्टी, करके सांस सांस को भट्टी, अब

ओ सरिया मोड़ दे आप का दरिया कश्ती ओ डूब जाने में ही है हस्ती।

हो जंगल हो जंगल, आज शहरों से है तेरा दंगल। अब तू भाग भाग भाग भाग भाग मिलखा।

मुश्किलें हो गई सारी का पुत बन जा नाग नाग नाग नाग नाग मिलखा अब तू भाग मिलखा तेरा तो बिस्तर है मैदान ओढ़ ना धरती तेरी शान तेरे सरहाने है चट्टान पहन ले पूरा आसमान तू पगड़ी बांध मिलखा अब तू भाग मिलखा भाग मिलखा भाग मिलखा अब तू भाग भाग भाग भाग भाग मिलखा अब तू भाग मिलखा ओ भंवर भंवर है चक्कर चक्कर चक्कर गोदी में उठाया मामे चक्कर चक्कर चक्कर ओ गोदी उठाया बापू ने चक्कर

पटखनी दे उलझन को चीख बना दे सरगम को वो चक्कर वो चक्कर वो चक्कर चक्कर चक्कर उतार के बैठ दे सब जंजाल बीते कल का हर कंगाल तेरे तल में है तेरी नाल तुझे तो करना है हर हाल अब तू जाग मिलखा जाग मिलखा जाग मिलखा अब तू भाग मिलखा खोल तू रख के पहिए खोल बना के चक्कर सुदर्शन बोल जंग के फीते कस के बांध खुली है आज शेर की मांग तू गोली दाग मिलखा दाग मिलखा दाग मिलखा अब तू भाग भाग भाग भाग भाग मिलखा अब तू भाग मिलखा।

0: मिलखा, अब तू भाग मिलखा, अब तू जाग मिलखा, तू बन जा नाग मिलखा, तू पगड़ी बांध मिलखा, तू गोली दाग मिलखा, और तू है आग मिलखा, ओ तू भाग मिलखा, अब तू भाग भाग भाग भाग भाग मिलखा, अब तू भाग मिलखा।
1: और अब हमारे श्रोताओं को बताइए कि आपने जो लिवर सोराइसिस के बारे में जानकारी दी, तो इसके क्या लक्षण हैं और किस तरह इसका ट्रीटमेंट हो सकता है?
2: जब लिवर सिरोसिस होता है तो अनफॉर्चुनेटली पेशेंट डॉक्टर के पास आता है, उनको तकलीफें शुरू हो जाती हैं। सबसे बड़ा सिम्टम होता है फिटी, थकान रहना, पूरे दिन थका हुआ रहता है आदमी। कभी कभी फैमिली मेंबर नोटिस करता है कि आंखें पीली हो रही है, येलो हो रही है। कभी कभी पेट फूलना शुरू हो जाता है, वजन कम होता है मगर पेट फूल रहा है, पेट में पानी जमना शुरू हो जाता है। रेयरली कभी कभी पेशेंट को वॉमिटिंग होती है, उसमें कभी कभी खून की उल्टी भी हो सकती है, क्योंकि सिरोसिस के कारण खाने के पाइप में कोई नसें फट जाती हैं। तो ये सारे लक्षण जब आते हैं तो वो कह रहा है आपको कि लिवर काफी हद तक खराब हो गया है, और तभी नॉर्मली पेशेंट डॉक्टर को मिलने आता है।
1: जी, तो इसका इलाज संभव है पूरी तरह, या ये एक लाइलाज बीमारी है, हमेशा दवा खानी पड़ती है?
2: नहीं, दवाई तो हमेशा खानी पड़ती है, इसकी ट्रीटमेंट हो सकती है अगर हमको कोई और कारण पकड़ में आ जाए। कभी कभी सिरोसिस के साथ हेपेटाइटिस होता है, जो इंडिया में कॉमन है, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, उसको हम अगर ट्रीट कर दें तो खराब लिवर को भी बचा सकते हैं और जिंदगी कट सकती है। फैटी लिवर मगर ऐसी बीमारी है जिसमें कोई ट्रीटमेंट नहीं है, अगर आपको सिरोसिस हो जाए तो आगे जाके धीरे धीरे बढ़ती है। हम बेसिकली उसके जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, जैसे खून की उल्टी होना, पेट में पानी बनना, थकान होना, हीमोग्लोबिन कम होना, उसको ठीक कर सकते हैं, पर एक बार सिरोसिस सेट हो गया है तो वो इरिवर्सिबल बीमारी, और फिर आगे जाके हमको मोस्ट पेशेंट्स का लिवर बदलना पड़ता है, लिवर ट्रांसप्लांट बोलते हैं।
1: डॉक्टर साहब, हम जानना चाहते हैं कि फैटी लिवर से डायबिटीज का क्या संबंध है? क्या ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं कि मतलब फैटी लिवर हो गया तो डायबिटीज

0: जरूरी है
1: हाँ,
0: रहता
1: ये अच्छा सवाल है, क्योंकि अगर आप इंडिया में देखा जाए तो अगर आप देखें जिनको फैटी लिवर है
0: जी
1: उनका हम अगर डायबिटीज का चेकअप करें तो काफी लोगों को प्री डायबिटीज होता है,
0: जी
1: मतलब डायबिटीज शुरुआत होने की चांसेस है। HbA1c जो बोलते हैं वो 5.7 5.8 होता है मोस्ट प्लेसेस में। अगर आप देखें अब्रॉड, अगर आपका HbA1c 5.6 5.7 है, आपको प्री डायबिटीज है, आपको 10 या 12 साल बाद डायबिटीज शुरू होनी होनी है। इंडिया में फॉर सम रीजन ये हमारा जेनेटिक्स है या कुछ है कि अगर हमको फैटी लिवर है और हमारा HbA1c प्री डायबिटिक रेंज में है, 3 से 4 साल में या 5 साल में आपको डायबिटीज हो सकती है। तो अगर आपको फैटी लिवर है ये कह रहा है कि आपको आगे जाके डायबिटीज हो सकती है। नाउ उल्टा सवाल, अगर आपको डायबिटीज है तो रिस्क ऑफ फैटी लिवर इज वेरी हाई। नॉट ओनली रिस्क ऑफ फैटी लिवर इज हाई, रिस्क ऑफ फैटी लिवर विद कॉम्प्लिकेशन, मतलब जो डैमेज फाइब्रोसिस बोलते हैं, वो काफी हाई होती है। तो अगर आप देखें आजकल की जो डायबिटीज की दवाई शुरू हुई है, जो न्यू दे रहे हैं, जो वेट लॉस ड्रग जो डायबिटीज के लिए एक्चुअली अप्रूव्ड है, वो फैटी लिवर को भी हेल्प करती है। सो इट वर्क बोथ वेज।
0: अच्छा, तो इसके लिए क्या अवेयरनेस क्या होनी चाहिए कि इन बीमारियों से मरीज मतलब उसके चपेट में ना आए, उसके लिए क्या करना
1: ना
0: चाहिए?
1: अवेयरनेस यही है कि जैसे हमने कहा है खाने पे ध्यान दो, हमारा जो इंडियन डाइट है वो काफी पुअर है इन टर्म्स ऑफ प्रोटीन इनटेक। कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा है, प्रोटीन बहुत कम है। तो अगर हम प्रोटीन बढ़ाएं डाइट में, कार्बोहाइड्रेट कम करें, तो अपने आप थोड़ा वेट लॉस होगा, मसल मास बढ़ेगा, रिस्क ऑफ डायबिटीज कम हो जाएगा। एक्सरसाइज करो, जो मैंने गाना थोड़ी देर पहले बजाया था भाग मिल्खा भाग, उसका यही है कि भागो एक्सरसाइज करो। बहुत से पेशेंट हमारे पास आते हैं, हम सबको पूछता हूँ, मेरा पहला सवाल यही होता है कि एक्सरसाइज कर रहे हो, और सबका सवाल सब आधे लोग बोलते हैं हम वॉक करते हैं। तो वॉक इज नॉट गुड। अगर आप जो भी डेटा देखें तो 150 से 200 मिनट की एक्सरसाइज हफ्ते की जरूरी है अगर आपको अपनी बॉडी को फिट रखना है, जिसमें इट इंक्लूड्स कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज, जिसमें आप वॉकिंग करते हैं, और आपकी सांस फूलनी चाहिए, पसीना आना चाहिए। आप खाली वॉक करो, काम पे जाओ, स्टेशन तक जाओ, वापस आ जाओ, दैट इज नॉट एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में सांस फूलनी चाहिए, हार्ट रेट बढ़ना चाहिए एज अप्रोप्रिएट, और थोड़ी मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए। हफ्ते में 2 दिन थोड़े वेट्स करने चाहिए जिससे आपका मसल बढ़े। अगर आपका मसल का साइज बढ़ेगा, आपका वेट लॉस जल्दी होगा, डायबिटीज नहीं होगी या कंट्रोल में आएगी, बॉडी का फैट निकलेगा क्योंकि मसल ज्यादा बर्न करेगा एनर्जी को। तो अगेन चेकअप कराते रहिए, बेसिक ब्लड टेस्टिंग का, एक्सरसाइज कर कीजिए 150 मिनट्स मिनिमम अ वीक, खाने में ध्यान दीजिए, प्रोटीन बढ़ाइए अपने खाने में, और रेगुलर अपना हेल्थ चेकअप कराते रहिए।
0: जी, कई बार लोग ये भी भ्रांति है मतलब गलतफहमी है लोगों में कि प्रोटीन खाने से पाचन की समस्या बढ़ती है, एक उम्र के बाद प्रोटीन लोगों को कम कर देना चाहिए, तो दाल कम कर देते हैं लोग, चने खाना, तो इसके बारे में थोड़ा
1: हाँ, ये अच्छा सवाल है बहुत, क्योंकि जब भी मैं पेशेंट को बोलता हूँ कि आपको फैटी लिवर है, तो उनके दो जवाब होते हैं सबके, कि हम तो अल्कोहल पीते नहीं है, क्योंकि सबके मन में भ्रम है कि अल्कोहल से फैटी लिवर होता है,
0: जी
1: और दूसरा होता है कि हम तो शाकाहारी है, हम तो कांदा लहसुन भी नहीं खाते। मेरा मानना है कि इन इंडिया बींग अ वेजिटेरियन इज अ रिस्क फैक्टर फॉर लिवर डिजीज, बिकॉज वेजिटेरियंस में हम ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं। अगर हमारी डाइट देखे 70 to 80% कार्ब्स है, 10% फैट होगा, 10 से 15% प्रोटीन है। अरे ये वेस्टर्नाइज डाइट देखो तो 30% तक प्रोटीन होता है डाइट में। तो प्रोटीन डाइजेस्ट करना इजी है, इनफैक्ट हमारे जो दालें हैं वो ज्यादा इजी है डाइजेस्ट करना देन अदर फॉर्म्स ऑफ प्रोटीन, जैसे अपने एग्स हो गए, मीट्स हो गए। तो हम शाकाहारी तो हम नहीं खा सकते, तो ये भ्रम है कि आगे जाके नहीं खाते हम। इनफैक्ट बढ़ाना चाहिए थोड़ा, उससे आपकी शुगर कंट्रोल में रहेगी, आपकी मसल स्ट्रांग रहेगी, बोन स्ट्रांग रहेंगे, फ्रैक्चर्स होने के चांस कम हो जाते हैं।
0: जी, तो अभी जो भी श्रोता सुन रहे हैं तो अपने डायटिशियन से संपर्क करें या ये खोजें कि कहाँ कहाँ प्रोटीन ज्यादा मात्रा में है, और आज से प्रोटीन की डाइट शुरू करें। इसमें हम भी शामिल हैं, हम अपने को भी शामिल करते हैं इसमें। और अब एक गाना सुने डॉक्टर साहब।
1: बिल्कुल। तो एक और गाना जो मुझे बहुत पसंद है, स्कूल डेज में हमने सुना था जब मेरे 10th खत्म हुई थी, जो जीता वो सिकंदर का गाना, यहाँ के हम सिकंदर।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया गाना चुना है, और सभी हमारी बातचीत से मेल खा रहे हैं। अगर अपनी सेहत अच्छी रहेगी और स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो जाहिर सी बात है हम अपने क्षेत्र में सिकंदर बने रहेंगे। सुनते हैं ये गाना।

0: डॉक्टर साहब, ये जो जीता वही सिकंदर फिल्म का गाना था, और इस गाने के साथ खुद को सिकंदर बनाए रखने के लिए अपनी सेहत को ठीक रखना बहुत जरूरी है। अपने श्रोताओं को बताते हैं विविध भारती से यह कार्यक्रम सेहतनामा, और आज हम बात कर रहे हैं फैटी लिवर और पेट से संबंधित अन्य बीमारियों के बारे में। हमारे साथ विविध भारती के स्टूडियो में है मुंबई के मशहूर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता। डॉक्टर साहब, हमारे श्रोताओं की ओर से कुछ सवाल आए हैं। ये कार्यक्रम विविध भारती के फेसबुक पेज पर भी उपलब्ध है, तो वहां से कुछ श्रोताओं ने लिखा है कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम क्या होता है। मतलब कई श्रोताओं ने लिखा है, किसी ने लिखा है कि हमारे माँ को है, किसी ने लिखा मुझे, किसी ने लिखा मेरी बहन को है। तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम क्या है IBS, और कैसा होना चाहिए खान पान इसके लिए?
1: तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम प्रोबेबली फैटी लिवर के बाद सबसे कॉमन, अगर पेट की बीमारी देखें तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, जिसमें पेशेंट को लगता है कि पेट फूल जाता है, कभी कभी पेट दर्द करता है, कभी लूज मोशन हो जाते हैं, कभी कब्जियत हो जाती है, कभी आगे पीछे होते रहता है। और इन पेशेंट्स को हम सारी जांच पड़ताल कर ले, हमको कुछ नहीं मिलता, सारा कुछ नॉर्मल मिलता है। तो लॉट ऑफ टाइम ये स्ट्रेस रिलेटेड रहता है या सिचुएशन रिलेटेड रहता है। जैसे बच्चे हों, उनको अगर एग्जाम देने जा रहा हूं तो बोलते पेट दर्द कर रहा है, या वॉमिटिंग जैसी फीलिंग हो रही है, उल्टी जैसा लग रहा है, या लूज मोशन शुरू हो जाते हैं स्ट्रेस में, तो इसको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता है। इसमें इधर आपको डायरिया होता है या कॉन्स्टिपेशन होता है, पेट फूलता है, और अगर पेट साफ हो जाए तो अच्छा लगता है। तो इसकी ट्रीटमेंट बेसिकली होती है, यू नीड टू फाइंड आउट द स्ट्रेस, ट्रीट द स्ट्रेसर, और डाइट के थोड़ा ध्यान दो। अगर अगर कॉन्स्टिपेशन है तो डाइट में फाइबर ज्यादा लो, फल फ्रूट ज्यादा लो। अगर लूज मोशन हो रहे हैं तो कच्चा खाना मत खाओ, पका हुआ खाना खाओ, थोड़ा ब्रेड्स खाओ, राइस खाओ, जिससे पेट थोड़ा बन जाए।
0: ये है। और बाकी नॉर्मल किस तरह की तकलीफ होती है, वोमिटिंग और जो एसिडिटी की समस्या भी होती है इससे?
1: इरिटेबल बाउल सिंड्रोम अलग बीमारी है, एसिडिटी अलग बीमारी है। एसिडिटी होता है जब हमको खाने के पाइप में या पेट में या छाती में जलन होनी थी है, वो खाने के बाद हो सकती है, खाली पेट हो सकती है, सोने के बाद होती है, खाना हम लेट खाएं और लेट जाएं और छाती में जलन होती, तो उसको एसिडिटी या गर्ड बोलते हैं। एक बात आपने सही की कि ये IBS गर्ड पेशेंट जब हमारे पास आते हैं तो सबकी एक हमको एसिडिटी हो गई है। तो एसिडिटी इज अ वेरी स्पेसिफिक टर्म। एसिडिटी मतलब जलना, पेट के ऊपर के हिस्से में जलना, छाती में जलना, कभी कभी उसे खांसी भी हो सकती है, कभी कभी खाना अटकता है गले में, ऐसे लग रहा है, तो उसको एसिडिटी बोलते हैं। IBS होता है पेट फूलना, छाती के नीचे का प्रॉब्लम है वो, पेट फूलना, लूज मोशन होना, कॉन्स्टिपेशन होना। तो ये जानना बहुत जरूरी है, इसलिए जब पेशेंट हमारे पास आते हैं हमको काफी सवाल पूछने पड़ते हैं कि एक्चुअली बीमारी क्या है। क्योंकि इंडिया में सॉर्ट ऑफ हो गया कि सब बीमारी एसिडिटी, हर एक बीमारी का, अगर लूज मोशन को एसिडिटी बोल देते हैं, कॉन्स्टिपेशन को एसिडिटी बोल देते हैं, पर एसिडिटी इज अ सेपरेट प्रॉब्लम।
0: जी।

0: डॉक्टर साहब, गाने के बाद हम जानना चाहते हैं कि दरअसल डॉक्टर साहब, कुछ मरीज को ये समस्या भी होती है कि उन्हें जलन नहीं महसूस होती है, एसिडिटी फील नहीं होता है, लेकिन फिर उनको ऐसे लगता है ऊपर ऊपर कुछ आ रहा और वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है, कई वॉमिटिंग, तो ये क्या?
1: हाँ, तो ये भी इट्स अ पार्ट ऑफ एसिडिटी ओनली। इसमें बेसिकली खाना ऊपर चढ़ के आ रहा है, तो जो हमारे खाने का पाइप होती है, इसोफेगस जिसको बोलते हैं, और पेट होता है, उसके बीच में एक वाल्व होता है। किसी किसी का वाल्व लूज हो जाता है विद टाइम, उसके कई कारण होते हैं। उसके बाद अगर हम हेवी खाना खा लें तो खाना ऊपर चढ़ चढ़ के आएगा, वो शायद ना जले मगर ऊपर चढ़ चढ़ के आएगा, मुंह में आएगा, कभी कभी मुंह में खट्टा पानी आ जाता है, कभी लेट खाना खाओ, लेट जाओ तो रात को उठना पड़ता है क्योंकि खट्टा पानी ऊपर आ गया है और खांसी शुरू हो गई है। तो इसको रिगर्जिटेशन बोलते हैं, मतलब जो पेट का खाना है, जो पेट के नीचे जाना चाहिए, वो अभी वापस खाने के पेट में आ गया है।
0: जी, तो इसका किस तरह से ट्रीटमेंट किया जा सकता है?
1: तो इसका बेसिक ट्रीटमेंट तो हम वही करते हैं कि खाना टाइम पे खाओ, स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लो। सबसे इम्पोर्टेंट है खाने में और सोने में 3 घंटे का गैप रखिए। खाने के बाद टहलिए थोड़ा, 10-15 मिनट तक खाना नीचे चले जाए। दूसरी चीज कहूंगा, जो चीज आपको लग रहा है आपको तकलीफ दे रही हो, तो किसी किसी को स्पाइसी फूड तकलीफ देता है, तला हुआ तकलीफ देता है, या ज्यादा पानी नहीं पीना खाने के साथ, जैसे बहुत लोग आजकल कोका कोला पीते हैं या एरिएटेड ड्रिंक्स पीते हैं खाने के साथ, तो वो फिर गैस ऊपर चढ़ के आती है, खाना भी उसके साथ चढ़ के आता है। तो स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स, लेट नाइट मील्स मत खाओ, जो चीज आपको तकलीफ देती है वो मत लो, दैट शुड हेल्प योर सिम्टम्स। अगर इसके बावजूद नहीं ठीक हुआ फिर हम दवाई शुरू करते हैं।
0: जी जी, तो ये जो प्रॉब्लम्स है ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, मैंने तो हर किसी को सुना है कि एसिडिटी की प्रॉब्लम है, तो इसकी जांच की कोई व्यवस्था है कि कैसे पता चले कि एसिडिटी है, क्या वजह, कारण क्या है, असली कारण क्या है?
1: हाँ, तो ये भी बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि मोस्ट टाइम हम देखते हैं पेशेंट फार्मेसी के पास जाते हैं, केमिस्ट के पास जाते हैं, एक दवाई ले ली, वो लेते रहते हैं, लेते रहते हैं। बट ये दवाई भी लंबे देर तक लेना नहीं चाहिए। दूसरा, थोड़े सवाल हम पूछते हैं पेशेंट्स को, जैसे अगर खाना अटके, जब खाओ खाना अटके तो वो सही नहीं है, मतलब आपको एसिडिटी इतनी होगी कि खाने की पाइप छोटी होगी, तब हमको एंडोस्कोपी से देखना पड़ता है। खाना अटकना लगे, वॉमिटिंग होनी शुरू हो जाए, वजन कम हो, या आफ्टर द एज ऑफ 40-50 थोड़ा एज हो गई और फिर सडनली न्यू सिम्टम शुरू हो जाए, या खांसी हो रही हो रात भर, तब उस टाइम पे दीज आर व्हाट वी कॉल अलार्म सिम्टम्स। अलार्म सिम्टम्स मतलब ये जब पेशेंट हमको बोलना शुरू करता है तब हमारे सॉर्ट ऑफ एंटीना ऊपर चढ़ जाते हैं कि ये भी देखना पड़ेगा क्या प्रॉब्लम है, तब हम एक एंडोस्कोपी करके देखते हैं खाने के पाइप में और पेट में कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है।
0: और डॉक्टर साहब, अगर मान लीजिए कुछ मरीज को हमने ये भी सुना है कहते हुए कि एसिडिटी की प्रॉब्लम है, मैंने सारे टेस्ट करवा लिए और सारे ट्रीटमेंट कर लिए, सारी दवाएं खा ली, लेकिन कुछ नहीं हुआ, और मैं तो अभी योगा एक्सरसाइज भी कर रही हूं, मतलब ये अमूमन लोग कहते हैं, तो फिर क्या होता है? और कई लोगों ने तो ये भी कुछ एक वायरस एच पायलोरी नाम का वायरस होता, उसकी भी जांच नॉर्मल है, फिर क्या?
1: हाँ, तो एक्चुअली एच पायलोरी एक कॉमन इन्फेक्शन है जो पेट के लाइनिंग में रहता है, पर एक्चुअली जिसको एच पायलोरी होता है उसको छाती की एसिडिटी कम होती है, क्योंकि ये जो ऐसा बैक्टीरिया है जो एसिड बनने नहीं देता है। इनफैक्ट अगर हम एंडोस्कोपी एसिडिटी के लिए कर रहे हैं, गर्ड के लिए जिसको बोलते हैं रिफ्लक्स डिजीज, तब हम एच पायलोरी को ढूंढने की कोशिश नहीं करते। अगर पेट में जलन हो रही है, मतलब छाती में नहीं बोल रहा, खाली पेट में दुख रहा है, या पेट में जलन हो रही है, तब हम एंडोस्कोपी करके या कोई स्टूल टेस्ट करके या ब्रेड टेस्ट करके एच पायलोरी को ढूंढते हैं। अगर एच पायलोरी मिले उसको ट्रीट करें तो काफी लोगों के पेट के सिम्टम्स ठीक हो जाते हैं। बट जस्ट बिकॉज हमको एच पायलोरी मिला डज नॉट मीन

0: वो ढूंढने की कोशिश करते हैं। कभी कभी ये स्ट्रेस रिलेटेड भी रहती है, तो वन ऑफ द मेडिसिन वी गिव पेशेंट्स इज स्ट्रेस कम करने की, एंग्जाइटी कम करने की मेडिसिन देते हो, लॉन्ग टर्म ले सकते हो। उससे माइंड काम होता है तो पेट काम होता है, माइंड एंड स्टमक का कनेक्टेड, उसको गट ब्रेन एक्सेस बोलते हैं। अगर पेट ठीक नहीं होगा तो मन ठीक नहीं होता, इसी तरह अगर मन ठीक नहीं हुआ तो पेट ठीक नहीं होगा,
1: दोनों एक दूसरे के पूरक है और वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो बहुत सारे मन को ठीक करने के लिए कई बार हम संगीत का दामन थाम लेते हैं, तो एक गाना सुनते हैं और यहाँ पर अपने सारे श्रोताओं के मन को ठीक किया जाए।
0: तो एक गाना मुझे बहुत पसंद है, अगेन शाहरुख खान का ही गाना है, छैया छैया।
1: चल छैया छैया सुनते हैं यही गाना।

यार है जो खुशबू की तरह, जिसकी जुबान उर्दू की तरह, शाम रात मेरी छाया ना, सोया हूँ मैं, अच्छा ही

0: तेरी महके तो नजर आ जाए कहीं।
1: गुलपोश कभी इतना कहीं
0: महके तो नजर जा जाए कहीं। तावीज बना के तेनू उसे आयत की तरह मिल जाए कहीं।

0: डॉक्टर साहब, ये बात जो चल रही थी एसिडिटी की, ये तो बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। मैंने देखा है कि महानगरों में ये समस्या ज्यादा होती है, छोटे शहरों में जब जाते हैं तो लोगों को हम कम सुनते हैं ऐसा कहते हुए। तो एक तो ये बात बताइए कि ये जो समस्या है एसिडिटी की, सारे टेस्ट नॉर्मल आए हैं, तो क्या इन बीमारियों के लिए जो दवाएं खाई जाती हैं एसिडिटी की, लोग गोली खा लिए, कुछ लोग तो ये भी ट्राई करते हैं कि 2 दिन के गैप के बाद खा लो ठीक रहेगा, तो ये कहाँ तक तर्कसंगत है, ठीक है या नहीं करना चाहिए?
1: हाँ, तो बेसिकली कभी भी हम ये दवाई दें ना, तो हमेशा एंड पॉइंट होना चाहिए कि कब ये दवाई बंद करें। तो मोस्ट टाइम्स हम पेशेंट्स को ये दवाई बंद करने की कोशिश करते हैं। एक प्रॉब्लम हमारे यहाँ ये समस्या है कि हमारे जो फार्मास्यूटिकल जो केमिस्ट है वो रेगुलेटेड नहीं है। आप जाके दवाई मांगो, आपको दे देंगे दवाई। तो ये बाहर के मुल्कों में संभव नहीं है, बिकॉज ये दवाई है कि साइड इफेक्ट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एसिडिटी की दवाई अगर ज्यादा देर तक लेते रहो तो बोन लॉस होता है, किसी किसी को विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है। पेट में थोड़ा एसिड तो चाहिए डाइजेशन के लिए, तो कभी कभी पेट के इन्फेक्शन होने के रिस्क भी ज्यादा रहते हैं। विटामिन न्यूट्रिएंट्स जो पेट से अब्सॉर्ब होते हैं पेट के आगे से, वो नहीं होंगे, जैसे B12 डेफिशिएंसी हो जाए। कभी कभी आयरन भी कम हो जाता है दवाई लंबे देर तक लेने के लिए, तो रेयरली ये किडनी को भी इफेक्ट करता है। तो ये दवाइयां जरूरी है हमारे काफी ऐसे पेशेंट जो सालों साल लेते हैं, मगर वी हैव टू फाइंड अ वैलिड रीजन कि इनको क्यों चाहिए ये दवाई। जितना हो सके हमको दवाई बंद करनी चाहिए। काफी लोग ऐसे भी करते हैं, जैसे आपने कहा दवाई दूसरे दिन तीसरे दिन ले लेते हैं, उसको ऑन डिमांड मेडिसिन बोलते हैं, विच इज प्रॉब्ली अ गुड वे टू डू, कि अगर आपको हमेशा जरूरत नहीं तो क्यों लोगे। मैं कई पेशेंट्स को कहता हूं कि एक बार आपका कोर्स खत्म हो जाए, सपोज आपने रात को खाना खाने जाना है, शादी पे जाना है, खाना लेट होने वाला, आपको पता है आपको रात को तकलीफ होगी, तो शादी के जाने के पहले एक गोली लेते हो जाओ।
0: जी जी,
1: सो दैट इज कॉल्ड ऑन डिमांड मेडिसिन, विच इज प्रॉब्ली बेटर देन टेकिंग अ मेडिसिन रोज।
0: जी, लेकिन वो आदत न डाल ले, ये गड़बड़ है। और ये एक जो समस्या उल्टी के बारे में, उल्टियां होती हैं कुछ मरीज को, फिर रुकती नहीं है उल्टियां, तो क्या वो भी इसी वजह से होती हैं? ये किस तरह की बीमारी का द्योतक है?
1: अगर कंटिन्यूसली पेशेंट्स को उल्टी होते रहे तो दैट इज अ इंडिकेशन कि हमको एक बार एंडोस्कोपी करके देखना चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है। इसके कई कारण हो सकते हैं, अगेन माइंड से लेके पेट से लेके। आजकल हम ज्यादा देखते हैं डायबिटीज पेशेंट्स को, जैसे डायबिटीज पेशेंट्स को अगर डायबिटीज बहुत देर तक हो जाए तो जो मेन नसें होती हैं जो पेट को स्टिमुलेट करती है, जब हम खाना खाते हैं तो पेट हिलना शुरू करता है, तो डायबिटीज पेशेंट को पेट हिलता नहीं है इतना, तो उसको गैस्ट्रोपेरिसिस बोलते हैं कि पेट जो खाना खाया है वो पेट में ही रहता है, तो थोड़ी देर के बाद वॉमिट हो जाती है। अगेन स्ट्रेस से भी हो सकती है, एंग्जाइटी से वॉमिटिंग, किसी किसी को पेट में अल्सर हो सकता है, जिसके कारण पेट की जो एंड पॉइंट है जहां से खाना इंटेस्टाइन में जाता है वो छोटा हो जाता है, तो खाना उधर अटक के वॉमिट हो जाता है। एंड रेयरली अगर वॉमिटिंग जारी रहे तो वी हैव टू थिंक अबाउट अदर प्रॉब्लम्स लाइक कैंसर्स ऑफ द इंटेस्टाइन आल्सो।
0: तो मतलब किसी भी बीमारी को, मतलब पेट से संबंधित ये जो एसिडिटी की समस्या है, छोटी समस्या लगती है, लेकिन इग्नोर न करें, डॉक्टर से संपर्क करें।

0: डॉक्टर क्या कहते हैं वैसा करें।
1: आप सुन रहे थे सुप्रसिद्ध गैस्ट्रो एंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता से ममता सिंह की बातचीत का पहला भाग। इस बातचीत का दूसरा भाग आप सुनेंगे अगले हफ्ते आज ही के दिन इसी समय। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल, संपादन सहयोग रीमा जोशी, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
1: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है बंद। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती है, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
0: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी। इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
1: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
0: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। जानी मानी फिल्मी गीतकार सुधाकर।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विविध भारती से प्रसारित कार्यक्रम, जिसे हम आकाशवाणी मुंबई केंद्र से रिले कर रहे थे। FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी जैसलमेर का ये गोल्डन सिटी चैनल है। शाम के 5 बजे हैं, आइए सुनते हैं हमारे युवा साथियों के लिए कार्यक्रम युवानी।

शिववाणी सुनने वाले सभी साथियों को आपकी दोस्त मनीषा का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, सबसे पहले जिस बारे में आज हम बात कर रहे हैं वो है इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि नवाचार और हम कह सकते हैं उद्यमिता, जो कि एक तरह से तो एक गाड़ी के ही दो पहिए हैं, क्योंकि नवाचार जो है वो नए विचारों या यूं कह सकते हैं कि समाधान जो होता है उन्हें जन्म देता है, और उद्यमिता उन्हें एक सफल व्यवसाय में बदलती है। जी हाँ, क्योंकि इन दोनों का तालमेल जो है वो किसी भी स्टार्टअप या हम कह सकते हैं कि व्यवसाय जो है उसको शून्य से शिखर तक जो है पहुँचाने में सबसे सटीक मदद करता है। जी हाँ, बिल्कुल। और अगर हम आधुनिक युग यानी कि अभी देखें तो उसमें युवाओं का बहुत ज़्यादा योगदान जो है इसमें रह रहा है, और नवाचार और उद्यमिता जिसकी हम बात करें तो इसको सफलता किस तरीके से प्राप्त होती है, या हम कह सकते हैं कि किस पीढ़ी किस का पायदान से शुरू होकर के ये हमें शिखर तक पहुंचाती है। जैसे हमने कहा ना, शून्य से शिखर तक का सफ़र जो है, सबसे पहले तो एक अगर हमें सफल व्यवसाय करना है तो हमें

जो है समस्या की पहचान होनी चाहिए, क्योंकि हमेशा जो है किसी वास्तविक समस्या के समाधान से ही एक सफल व्यवसाय जो है वो शुरू होता है। क्योंकि अपने आसपास आप लोग देखें और पता करें कि लोगों को किन चुनौतियों का जो है सामना करना पड़ सकता है। कई बार जो है पैसे की कमी के कारण व्यवसाय शुरू नहीं हो पाता है, तो इसलिए जो है सरकार भी मदद करती है, कई लोन्स जो है वो देती है, बहुत सी योजनाएं जो है वो भी शुरू कर रखी है सरकार ने इसके लिए। इसके अलावा आप में किस चीज़ का स्किल जो है, आप में किस चीज़ की काबिलियत है और क्या आप कर सकते हैं, और जिसमें आपकी रुचि है, सबसे ज़रूरी ये भी है कि आपकी रुचि उसमें होनी बहुत ज़रूरी है, तो इससे भी व्यवसाय में सफलता पाने के लिए बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। आपका उत्पाद या सेवा मौजूदा विकल्पों से अलग, बेहतर और किफ़ायती होना चाहिए। ये तो हम यूँ कह सकते हैं कि यूनिक आइडियाज जो होते हैं वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसे ही तो नवाचार कहते हैं। अगर नए नए यूनिक से आइडियाज आप ला रहे हैं, कुछ नई सोच ला रहे हैं, कोई नई पहल कर रहे हैं ताकि लोगों को आप आकर्षित कर सकें, जैसे हम विज्ञापन जो बात कर सकते हैं विज्ञापन के बारे में, तो विज्ञापन भी दे करके जो एक तरह की अपनी ऐड करते हैं, अपनी चीज़ का प्रमोशन करते हैं, तो ये भी एक तरह का नवाचार ही है। उसमें भी किस तरीके से जो है अगर आप उस ऐड को प्रेजेंट कर रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है। और इसके अलावा दोस्तों अपने विचारों को आप जो है आय में बदलने में एक स्पष्ट खाका तैयार कर सकते हैं, क्योंकि ये समझना ज़रूरी है कि आपका नवाचार कैसे और कहाँ से पैसा जो है वो कमाएगा, यानी कि आपके माइंड में जो आपका व्यवसाय है, जो बिजनेस है, उसका एक मॉडल होना चाहिए कि आपको क्या करना है, कहाँ से शुरुआत करनी है और कहाँ तक आपको है पहुँचना है। तो ये अगर आपके माइंड में पूरी तरह से रहता है, या यूँ कह सकते हैं कि इसका एक खाका बना करके आप तैयार कर लें, तो आपके व्यवसाय जो आप करेंगे उसमें आपको आसानी रहेगी और सफलता की राह जो है वो आपको ज़रूर मिलेगी। और इसके अलावा हम बात करें कि मार्केट रिसर्च जो होती है कि भाई मार्केट में क्या चल रहा है, क्या नया है और किस चीज़ के बारे में लोग क्या सोचते हैं, ये पता होना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाज़ार की मांग, ग्राहकों की पसंद और अपने प्रतिस्पर्धियों के बारे में पूरी जानकारी जो है वो आपको होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों इसके अलावा अगर हम बात करें कि उद्यमिता की हम बात कर रहे हैं कि आप किस तरीके से व्यवसाय कर सकते हैं, इसमें हम कहें कि जोखिम जो है वो हमेशा होता है, तो लेकिन अगर एक सफल व्यवसायी बनना है तो हमेशा पूरी रिसर्च के बाद ही कदम जो है उठाना चाहिए, यानी कि सोच समझ कर इन्वेस्ट करना चाहिए, मार्केट को रिसर्च कर लें, बिजनेस मॉडल तैयार कर लें और नए नए यूनिक से आइडियाज़ आपके पास हों, तो फिर आपकी जो व्यवसाय की जो आपकी राह जो है वो सफलता की ओर दौड़ेगी, हम कह सकते हैं। और नवाचार के बहुत से प्रकार भी होते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें उत्पाद नवाचार की, यानी कि प्रोडक्ट इनोवेशन, बिल्कुल नया या उन्नत उत्पाद बनाना, कोई नई चीज़ के बारे में जो हम जानकारी प्राप्त करें और कोई नई चीज़ निकालें मार्केट में, वो हो सकता है। और एक है प्रक्रिया नवाचार, यानी कि प्रोसेस इनोवेशन, यानी काम करने या सेवा देने के तरीके को अधिक कुशल और सस्ता बनाना। इसके अलावा व्यावसायिक मॉडल, यानी कि बिजनेस मॉडल इनोवेशन, ग्राहकों तक पहुंचने या फिर हम कह सकते हैं कि पैसा कमाने के पारंपरिक तरीके को बदलना, जिसके बारे में हमने पहले भी आपको बताया कि किस तरीके से जो है आप अपनी चीज़ को सामने वाले को कैसे बेचोगे, उसके लिए आपके पास आइडियाज़ होने चाहिए और ऐसे ऐसे विज्ञापन होने चाहिए सामने वाला उसे लेने के लिए बिल्कुल लालायित रहे, तैयार रहे। तो यही बिजनेस के जो आइडियाज़ जो होते हैं उद्यमिता के, तो यही एक नवाचार लाते हैं और हम कह सकते हैं कि हमारी जो व्यवसाय की जो चाल है उसे उसकी रफ्तार तेज़ करते हैं। और हम जैसे बात कर रहे हैं कि उद्यमिता और इसकी, तो इसमें स्टार्टअप इंडिया, जैसे कि स्टार्टअप इंडिया हमने कहा ना, आपकी बहुत सी योजनाएं जो हैं वो सरकार चला रही है, ताकि जो जिसमें भी नवाचार है, कुछ नए आइडियाज़ हैं, उन्हें वो अपने व्यवसाय में लगा सके। तो इसके लिए बहुत सी योजनाएं चल रही है, उन योजनाओं का फ़ायदा उठा सकते हैं, उत्पाद

0: आधारित या सेवा आधारित व्यवसाय जो है आप वो बना सकते हैं। नवाचारी जो आइडिया है आपके अंदर, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, तकनीकी के हो, कृषि हो, रिटेल हो, किसी में भी हो, उसमें आप अपनी शुरुआत कर सकते हैं। शुरुआती मार्गदर्शन और तकनीकी सहायता के लिए जो है आपको नज़दीकी सरकारी या फिर यूँ कहें कि निजी इंक्यूबेशन सेंटर्स जो होते हैं, आप उससे जुड़ सकते हैं ताकि आप अपने कौशल को जो है सुधार सके। तो इसके लिए सरकार ने भी योजनाएं बना रखी है, कौशल विकास योजना, ताकि आप में अगर किसी चीज़ की प्रतिभा है तो आप उसे निखार सकें और उसके अंदर अपनी व्यवसाय की, जो आप व्यवसाय करना चाहते हैं, जो आप में कौशल है उसका व्यवसाय आप करें, उसमें आप आगे बढ़ें और तरक्की पाएं। तो देश में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए जो है नीति आयोग जो है उसकी भी पहल तैयार की गई है, तो उसके बारे में भी पढ़ें और व्यवसाय के बारे में जितनी जानकारी हो सके उतनी पहले इकट्ठा कर लें, अपना मॉडल तैयार करें, नए नए आइडियाज तैयार करें और फिर जो है व्यवसाय की दुनिया में कदम रखकर अपने उद्यम को जो है नई एक पहचान दें। जी हाँ, और इसीलिए जो है नवाचार और उद्यमिता बिल्कुल सफलता की राह पर अगर आपको चलना है तो इसके लिए आपको नवाचार भी आना चाहिए और उद्यमिता भी, यानी कि नए नए विचार, नए नए आइडियाज आपके पास होने चाहिए और व्यवसाय करने की टेक्निक भी आप में होनी चाहिए, तो आपको व्यवसाय में सफलता जरूर प्राप्त होगी। चलिए दोस्तों, अब हम ले रहे हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक।
1: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
2: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
2: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस और सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
5: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे, कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
2: जब एक परिवार को अपना घर मिलता तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता।
5: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: चलिए दोस्तों, अब हम चल रहे हैं फिल्म संगीत की दुनिया में और सुन रहे हैं ये गीत।

आप सुन रहे थे कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में इतिहास फिल्म का ये गीत। तो अब हम बात कर रहे हैं प्रतियोगी परीक्षा में किस तरीके से जो है आप सफलता पा सकते हैं। तो मतलब कह सकते हैं कि प्रतियोगी परीक्षा में सफलता के लिए सटीक रणनीति जो है वो सबसे जरूरी होती है। जी हाँ, क्योंकि सबसे पहले जो है परीक्षा के सिलेबस और पैटर्न को आपको समझना चाहिए, और इसके बाद एक हम कह सकते हैं कि टाइम टेबल बनाना चाहिए, यानी कि ठोस टाइम टेबल, यानी कि आप उसको माने हर समय, और आपके जितने भी कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर होने चाहिए, स्पष्ट होने चाहिए। और सबसे ज़रूरी है कि अपनी गति और सटीकता सुधारने के लिए नियमित रूप से पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र और मॉक टेस्ट का अभ्यास जो है वो आपको करते रहना चाहिए। यानी कि अगर आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आपको सफलता पानी है तो बहुत सी चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। यानी कि परीक्षा पैटर्न और सिलेबस की समझ होना सबसे ज़रूरी है। अपनी तैयारी शुरू करने से पहले परीक्षा का पूरा पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस जो है और परीक्षा पैटर्न वो निकालना चाहिए, और इसके आधार पर महत्वपूर्ण विषयों की पहचान करनी आपको चाहिए। इसके बाद है सही अध्ययन सामग्री का चुनाव, यानी कि आपके पास जो आप पढ़ रहे हैं जो पुस्तकें हैं मानक पुस्तकें होनी चाहिए, विश्वसनीय ऑनलाइन स्रोतों का ही उपयोग करना चाहिए, अनावश्यक किताबों का बोझ बिल्कुल नहीं बढ़ाना चाहिए। एकदम सटीक और सही अगर आप अध्ययन सामग्री का चुनाव करेंगे तो सफलता आपको जरूर मिलेगी। और सबसे ज़रूरी, जैसे हमने कहा कि ठोस टाइम टेबल, यानी कि आप उसका पालन हर हाल में करिए। नियमित अध्ययन और टाइम टेबल बहुत ज़रूरी है। अपनी क्षमता के अनुसार एक व्यवहारिक समय सारणी और उसका सख्ती से पालन करें, क्योंकि दोस्तों निरंतरता जो है वही सफलता की कुंजी होती है। जी हाँ, तो इसके लिए आपको टाइम टेबल अगर आप बना रहे हैं तो उसका आपको पालन करना बहुत ज़रूरी है। तो आप अपना टाइम टेबल जो हम कह सकते हैं कि अपनी क्षमता के अनुसार बनाएं, जितनी आपने कैपेसिटी है, जो समय में जितना काम आप कर सकते हैं उस हिसाब से ही बनाएं, ताकि उसको आप नियमित रख सकें और उस पर अडिग रह सकें। जैसा कि बताया हमने आपको पहले भी कि मॉक टेस्ट का अभ्यास जो है वो बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, यानी कि स्पीड आपकी, गति आपकी कैसी है, एक्यूरेसी यानी कि सटीकता आपकी कैसी है, इनको बढ़ाने के लिए निर्धारित समय सीमा में मॉक टेस्ट लें, और गलतियां जितनी भी आपने की है उनका विश्लेषण करें, उन्हें सुधारें। क्योंकि अब जब आप मॉक टेस्ट करते हैं तो आपको अपने अंदर जितनी भी आपकी जो गलतियां हो रही हैं उसे आप खुद समझ पाते हैं, और उस पर जो है फिर से विचार करके उसे फिर से सुधार सकते हैं। तो इसलिए मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी है, ये अभ्यास जो है वो आपको करते रहना चाहिए। तो इसके लिए आप जितने भी, हमने पहले बताया कि पिछले प्रश्न पत्र जो होते हैं पिछले सालों के, उन्हें उसका उपयोग कर सकते हैं, उनके द्वारा जो आप मॉक टेस्ट अभ्यास जो है वो कर सकते हैं। और ये बहुत ज़रूरी भी होता है, क्योंकि इससे आपकी गति का भी पता चलता है, आप कितनी जल्दी कितनी आंसर कितने कर सकते हैं, कितने समय में कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जो है सफलता के लिए बहुत ज़रूरी है। और रिवीजन तो होना चाहिए, जैसे कि जो भी आपने पढ़ा है उसका आप साप्ताहिक या यूँ कह सकते हैं कि मासिक रिवीजन अवश्य करें। बिना रिवीजन के पढ़ी हुई चीज़ें परीक्षा में हमेशा जो है वो भ्रमित कर सकती है, क्योंकि कई बार जो है आप किसी चीज़ को एक बार पढ़ के छोड़ देते हैं, उसे फिर से नहीं पढ़ पाते।

0: आते हैं तो समय नहीं मिलता है क्योंकि आपके पास समय सारणी नहीं है। तो इसीलिए जो है आप इन सब चीज़ों को बैलेंस करके रखिए। तो अगर आप फिर से रिविजन करते हैं, एक चीज़ को दोबारा पढ़ रहे हैं, तीसरी बार पढ़ रहे हैं, तो उससे वो चीज़ आपके माइंड में बैठ जाएगी, स्थायी हो जाएगी, तो आप उसे कभी भी जो है भूल नहीं पाएंगे। तो इसलिए रिविजन जो है वो बहुत ज़रूरी है। और इन सब चीज़ों में जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया कि आप टाइम टेबल अपने अनुसार बनाएं, अपने सहूलियत के हिसाब से बनाएं, आपके शारीरिक उसमें स्वास्थ्य की बात अगर हम करें तो वो भी अच्छा रहना चाहिए। यानी कि आपको स्वास्थ्य आपका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, यानी कि आपको नींद भी पूरी लेनी है और बिल्कुल तनाव मुक्त रहना है। क्योंकि अगर आपकी नींद पूरी हो जाएगी तो आप बहुत अच्छी तरीके से फ्रेश माइंड से पढ़ पाएंगे, आप तनाव में नहीं रहेगा, किसी भी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा ना सोचें और हमेशा जो है वो पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। पढ़ाई के साथ साथ जैसा कि हम कह रहे हैं कि पर्याप्त नींद होना बहुत ज़रूरी है, जी हाँ, और संतुलित आहार आप लेते रहें, यानी कि खाना भी बहुत ज़रूरी है। कई बार पढ़ने में इतना तल्लीन हो जाते हैं, इतना व्यस्त हो जाते हैं कि हम हमारा जो है खाना सही समय पर नहीं ले पाते, तो उससे भी जो है बहुत सी समस्या हो जाती है। खाना समय पर नहीं लेने से कई बार कोई बीमारी में हम आ जाते हैं, चाहे वो पेट दर्द हो, चाहे वो उल्टी हो, दस्त हो, इन सब चीज़ों में आ जाते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा उससे हम तनाव में आ जाते हैं अगर खाना सही समय पर नहीं ले पाते। तो इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखें और खाना भी उतना ही लें, यानी कि संतुलित आहार लें, फास्ट फूड अवॉइड करें, उससे नींद भी आपको बहुत आएगी। बहुत ज़्यादा नींद नहीं लेनी है, लेकिन आपको जितनी ज़रूरत होती है 7 से 8 घंटे की नींद, वो आपको पर्याप्त नींद जो है वो ज़रूरी है, वो आपको लेनी चाहिए। और जैसा कि तनाव मुक्त, यानी कि बहुत परीक्षार्थियों को जो है हम कह सकते हैं कि प्रतियोगियों को टेंशन हो जाती है परीक्षा के समय में, तो आप तनाव मुक्त रहें तो इसके लिए आप योग कर सकते हैं, मेडिटेशंस कर सकते हैं, और हमेशा जो है पॉजिटिव तरीके से सोचें, पॉजिटिव माइंड रखें, अपना आप सकारात्मक दृष्टिकोण रखें। ये सब चीज़ें आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने में बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं कि आपको फायदा दिलाएगी, आपके काम भी आएगी, बहुत ज़्यादा आपको मददगार साबित हो सकती है। तो इसीलिए अगर आप किसी भी तरह की प्रतियोगी परीक्षा में पार्ट ले रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं, तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए दोस्तों, अब हम फिर से ले रहे हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक।
1: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
2: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
2: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस और सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
5: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे, कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
2: जब एक परिवार को अपना घर मिलता तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता।
5: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: तो चलिए दोस्तों, अब हम फिर से चल रहे हैं फिल्म संगीत की दुनिया में और सुन रहे हैं ये गीत।

0: इश्क अल्लाह की नेमत है,
1: इश्क जिंदा हकीकत है,
0: इश्क के दिन अनोखे हैं,
1: इश्क की रात निराली है,
0: इश्क हर शाय पे हावी है,
1: इश्क की बात निराली है।
0: आदमी को अगर चाहे
1: सच्चा इंसान बना दे,
0: इश्क पत्थर को जो पूजे
1: उसको भगवान बना दे।
0: इश्क सीने की धड़कन है,
1: इश्क सांसों की सरगम है,
0: इश्क दिल भर का वादा है,
1: इश्क चाहत का मौसम है,
0: इश्क आँखों का है काजल,
1: इश्क होठों की है लाजी,
0: इश्क कर लो तो समझोगे,
1: इश्क बिन दुनिया है खाली,
0: इश्क रस में नहीं जाने,
1: इश्क कसम में नहीं जाने,
0: इश्क बस इश्क को समझे,
1: इश्क बस इश्क को माने।

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे उदित नारायण, अलका याग्निक और विनोद राठौर की आवाजों में इश्क है तुमसे फिल्म का ये गीत। तो दोस्तों अब समय हो चला है हमारे विशेष कार्यक्रम करंट अफेयर्स का।

तो दोस्तों, ये है हमारा विशेष कार्यक्रम करंट अफेयर्स, यानी कि जो भी प्रतियोगी परीक्षा में भाग ले रहे हैं प्रतियोगी, उन सभी के लिए ये बहुत यूँ कह सकते हैं कि फ़ायदे की चीज़ है और उनकी इस परीक्षा में काम आने लायक है। और इसके अलावा, जैसा कि हम हमेशा कहते आए हैं कि जनरल नॉलेज यानी कि जीके की जानकारी जो है वो हर किसी को होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी के साथ बैठ रहे हैं, किसी के साथ बात कर रहे हैं, किसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं, तो आपको भी उसका पूरा नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो आइए अब शुरुआत करते हैं सबसे पहले एक्शन टास्क फोर्स के बारे में, यानी कि हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में भारत की ओर से उपाध्यक्ष पद के लिए विवेक अग्रवाल को चुना गया। जी हाँ, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण पर नजर रखने वाली दुनिया की सबसे प्रभावशाली संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है, इसमें पहली बार भारत को उपाध्यक्ष का पद मिला है। जी हाँ, भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी विवेक अग्रवाल को इस ऐतिहासिक जिम्मेदारी के लिए चुना गया है। हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा भारत के पहले स्वदेशी वीडियो स्टोरी जनरेटिंग AI मॉडल का अनावरण किया गया है। जी हाँ, और इसका नाम है वारिया। वारिया भारत का पहला स्वदेशी डिजिटल वीडियो स्टोरी जनरेटिंग AI मॉडल है। इसे मेटवाई द्वारा विकसित किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य स्वदेशी तकनीक के माध्यम से वीडियो निर्माण और कहानी कहने की क्षमता को बढ़ाना है। दोस्तों, भारत और फ्रांस के प्रौद्योगिकी, नवाचार और अनुसंधान के क्षेत्र में दीर्घकालिक सहयोग के लिए इनोवेशन रोडमैप 2030 को अपनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता में इस रोडमैप को अपनाया गया है। इसका उद्देश्य उन्नत रक्षा, विनिर्माण और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गवर्नेंस पर संयुक्त कार्य समूह स्थापित करना है। पंद्रह जून 2026 को भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार बने। जी हाँ, 1998 बैच के IAS अधिकारी ज्ञानेश कुमार ने 27वें मुख्य चुनाव आयुक्त पद को संभाला और ये 2027 के लोकसभा चुनाव और 2026

के 5 राज्य विधानसभा चुनाव कराएंगे। 16 जून 2026 को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2026 था और हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी इसमें थीम रखी गई जो कि थी फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन, वुल्स बैक बायोडिवर्सिटी। यूएन ने 2026 की थीम रखी क्योंकि 2022 में हुए कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडिवर्सिटी फार्मवर्क को अब जमीन पर लागू करना है। भारत ने 30x30 टारगेट पर काम शुरू भी कर दिया है। दोस्तों 17 जून 2026 को भारत ने सिंगापुर देश के साथ डिजिटल करेंसी समझौता साइन किया। जी हां, आरबीआई और एमएस ने यूपीआई पे नाउ लिंक को सीबीडीसी लेवल तक बढ़ाया। अब भारतीय डिजिटल रुपया ई रुपीज और सिंगापुर डॉलर से डायरेक्ट लेन देन होगा। सीमा पार पेमेंट सिर्फ 2 सेकंड में। अठारह जून 2026 को ऑटिस्टिक प्राइड दिवस मनाया गया। जी हां, और भारत सरकार ने समावेशी शिक्षा मिशन 3.0 की घोषणा की। शिक्षा मंत्रालय ने 18 जून को मिशन 3.0 लॉन्च किया। 2026 से 31 तक 50 लाख ऑटिस्टिक बच्चों को मेन स्ट्रीम स्कूल में स्किल ट्रेनिंग प्लस एआई बेस्ड लर्निंग टूल मिलेंगे। 19 जून 2026 को भारत का सबसे लंबा केबल ब्रिज सुदर्शन सेतु 2.0 गुजरात में शुरू हुआ है। ओखा और भेट द्वारका को जोड़ने वाले सुदर्शन सेतु का फेज 2 शुरू हुआ। लंबाई 2.32 किलोमीटर प्लस 4 लेन। अब द्वारका दर्शन 45 मिनट में सोलर पैनल से लाइट भी होगी। 20 जून 2026 को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया गया और इसमें इस वर्ष की थीम रही एवरीवन हैज द राइट टू सीक सेफ्टी। UNHCR ने थीम रखी और भारत ने अफगानिस्तान और म्यांमार के शरणार्थियों के लिए स्वास्थ्य संजीवनी कार्ड स्कीम बढ़ाई। 5 लाख लोगों को मुफ्त इलाज भी मिला। दोस्तों 21 जून 2026 को 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में हुआ। पीएम ने आरके बीच पर 3 लाख लोगों के साथ योग किया और इस वर्ष की थीम रही योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। आंध्र की राजधानी अमरावती शिफ्ट होने के बाद ये पहला बड़ा इवेंट था। 22 जून 2026 को इसरो ने GS-8032 सैटेलाइट LVM3M5 रॉकेट से लॉन्च किया। श्री हरिकोटा से LVM3M5 से GS-8032 लॉन्च किया गया। ये 6G कम्युनिकेशन और दूर दराज के गांवों में इंटरनेट के लिए है और इसका वजन 4.3 टन और इसकी 15 साल की लाइफ टाइम है। जून 2026 में उत्तराखंड ने मुख्यमंत्री महिला उद्यम निधि योजना शुरू की। जी हाँ, 20 जून को सीएम ने स्कीम लॉन्च की और महिलाओं को बिजनेस के लिए बिना गारंटी 5 लाख तक का लोन और 3% ब्याज दर पर और इसका यूं कहें कि 2 लाख महिलाओं को ये लोन दिया जा रहा है। 22 जून 2026 को भारत और फ्रांस देश की नौसेना का वरुण 2026 का अभ्यास जो है वो खत्म हुआ। अरब सागर में 10 दिन चला वरुण 2026 INS विक्रांत प्लस फ्रेंच कैरियर चार्ल्स डी गोल ने हिस्सा लिया और इसका मकसद रहा एयर डिफेंस और सबमरीन वॉरफेयर के लिए। 15 जून 2026 को मिशन कर्मयोगी के तहत 2 करोड़ सरकारी कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जा चुकी थी। जी हां, DOPT रिपोर्ट के अनुसार 2 करोड़ प्लस कर्मचारियों ने IGOT कर्मयोगी पोर्टल पर स्किल बेस्ड ट्रेनिंग पूरी की। सिविल सेवकों की क्षमता बढ़ाने के लिए जो है ये ट्रेनिंग दी जा रही है। 16 जून 2026 को भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 715 अरब डॉलर था। जी हाँ, RBI के साप्ताहिक डेटा में 715 अरब डॉलर का ऑल टाइम हाई। मजबूत FDI और एक्सपोर्ट से रिजर्व भी बढ़ा। 18 जून 2026 को सोनम वांगचुक भारतीय को गोल्ड मेल एनवायरमेंट प्राइज 2026 मिला। जी हाँ, लद्दाख के इंजीनियर

सोनम वांगचुक को हिमालय में आइस स्टूपा तकनीक से ग्लेशियर बचाने के लिए मिला है और एशिया के लिए ये प्राइज दिया जाता है। 19 जून 2026 को भारत नेपाल के बीच बथनाहा विराट नगर नया रेल कॉरिडोर शुरू हुआ है। बिहार के बथनाहा से नेपाल के विराट नगर तक 18.6 किलोमीटर ब्रॉडगेज लाइन शुरू की गई है और नेपाल के पूर्वी हिस्से की कनेक्टिविटी से बढ़ेगी। 20 जून 2026 को फसाई ने सिंगल यूज प्लास्टिक 120 माइक्रोन प्लास्टिक पर बैन को 1 जुलाई 2026 से सख्ती से लागू करने का आदेश दिया है। जी हां, अब 120 माइक्रोन से पतले प्लास्टिक बैग स्ट्रॉ कटलरी पर पूरी तरह से रोक लग गई है और इसका उल्लंघन करने पर लगभग 1,00,000 रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ेगा। दोस्तों 22 जून 2026 को इसरो ने GS-80-32 सैटेलाइट जो है LVM-3 M5 रॉकेट से लॉन्च किया। 22 जून 2026 को विश्व रेन फॉरेस्ट दिवस मनाया गया और इसकी थीम इस वर्ष रही द टाइम इज नाउ। यूएन ने थीम रखी क्योंकि अमेजन और पश्चिमी घाट जैसे जंगल 2030 तक 10% खत्म हो सकते हैं। भारत ने 22 जून को पश्चिमी घाट में 1 करोड़ पेड़ लगाने का टारगेट भी किया है। 22 जून 2026 को भारत सरकार ने राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन मिशन 2.0 की घोषणा नागपुर महाराष्ट्र में की। कृषि मंत्री ने नागपुर में मिशन 2.0 लॉन्च किया और इसका टारगेट रहा 2026 से 2030 तक 20 लाख मधुमक्खी बॉक्स और 10 लाख किसानों की आय दोगुनी हो, शहद निर्यात को लगभग 15,000 करोड़ तक ले जाने का मकसद रखा गया है। 22 जून 2026 को राजस्थान की झांकी को राष्ट्रीय डिजिटल गवर्नेंस अवार्ड 2026 में गोल्ड मिला। राजस्थान की जनाधार प्लस थामाशाहर 2.0 एकीकृत पोर्टल को बेस्ट डिजिटल सेवा का गोल्ड। वन क्लिक में 300 प्लस सरकारी सेवाएं मिलती है। पुरस्कार भी जो है नई दिल्ली में इसे दिया गया। 22 जून 2026 को फोर्ब्स की सबसे शक्तिशाली महिला 2026 लिस्ट में भारत से रोशनी नादर मल्होत्रा टॉप पर रही। जी हां, SCLT की चेयरपर्सन रोशनी नादर 54वें नंबर पर और भारत से टॉप लिस्ट में शिक्षा हेल्थ टेक में योगदान देखा जाता है। 22 जून 2026 को भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब कांडला गुजरात फंक्शनल हुआ। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत कांडला पोर्ट पर हब शुरू हुआ। सालाना 1,00,000 टन ग्रीन हाइड्रोजन इसमें बनाया जाएगा। यूरोप जापान को निर्यात भी किया जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का विशेष कार्यक्रम करंट अफेयर्स।

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे हेलो ब्रदर फिल्म का गीत कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में। दोस्तों अगर हम देखें साइबर सुरक्षा के बारे में बात करें तो ये डिजिटल युग की बहुत बड़ी आवश्यकता बन गई है। जी हाँ, ये हमारी कंप्यूटर नेटवर्क और डिजिटल डेटा को साइबर हमलों और यूं कह सकते हैं कि चोरी से सुरक्षित रखने की एक प्रणाली है। जैसे जैसे हमारी निर्भरता इंटरनेट पर, ऑनलाइन बैंकिंग पर और डिजिटल सेवाओं पर बढ़ी है, साइबर सुरक्षा

रक्षा हमारी व्यक्तिगत और यूं कह सकते हैं कि राष्ट्र संपत्ति की रक्षा के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण हो गई है। व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा रखना, आज हम अपने फोन और कंप्यूटर पर निजी तस्वीरें, दस्तावेज और व्यक्तिगत जानकारी रखते हैं। साइबर सुरक्षा इसे हैकर्स और दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर से बचाती भी है। और जहां तक बात करें अगर वित्तीय धोखाधड़ी से, तो इससे भी बचाव होता है। जी हाँ, ऑनलाइन शॉपिंग, यूपीआई और नेट बैंकिंग के दौर में वित्तीय सुरक्षा बहुत जरूरी है। मजबूत साइबर सुरक्षा उपाय बैंक खातों और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन को सुरक्षित रखते हैं। व्यापारिक डेटा है, जैसे क्लाइंट लिस्ट है, रणनीतियां हैं, किसी भी कंपनी की सबसे बड़ी पूंजी होते हैं। साइबर सुरक्षा जो है डेटा लीक को रोक कर व्यापार को भारी नुकसान से बचाती है, यानी कि व्यावसायिक गोपनीयता जो है वो भी इसके द्वारा होती है। और सरकारी और राष्ट्रीय सुरक्षा यानी कि राष्ट्र के बुनियादी ढांचे जैसे कि पावर ग्रिड है, रक्षा प्रणालियां है, बैंकिंग नेटवर्क है, डिजिटल रूप से संचालित होते हैं और इन्हें विदेशी हमलों और आतंकवादियों से बचाने के लिए साइबर सुरक्षा अनिवार्य है। और डिजिटल दुनिया में हर व्यक्ति की निजता का सम्मान और बचाव साइबर सुरक्षा के माध्यम से ही संभव है, यानी कि प्राइवेसी अगर जो अपनी है उसका अधिकार अगर हमें चाहिए तो इसके लिए साइबर सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। जैसे फिशिंग है, मेलवेयर, ये कुछ डिजिटल दुनिया के खतरे होते हैं, उन्हें साइबर सुरक्षा के जरिए ही निपटा जा सकता है। उनसे फिशिंग हो, चाहे वो मेलवेयर है या पहचान की चोरी, आइडेंटिटी थीफ जो है, इन सब चीज़ों के लिए साइबर सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। तो सबसे ज़रूरी है कि आप अपना मजबूत पासवर्ड बनाएं, यानी कि अपने सभी अकाउंट्स पर जटिल पासवर्ड और टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का उपयोग करें। सॉफ्टवेयर अपडेट रखें, अपने फ़ोन और कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम और ऐप्स को हमेशा अपडेट रखें। और किसी भी अनजान ईमेल में आए लिंक या फिर लुभावने विज्ञापन पर आप कभी भी क्लिक न करें। और कभी भी सार्वजनिक स्थानों का यानी कि पब्लिक वाईफाई जो है उस पर संवेदनशील कार्य जैसे पैसों का लेन देन बिल्कुल भी न करें। साइबर सुरक्षा केवल सरकारों और कंपनियों का काम नहीं है, बल्कि एक जिम्मेदार डिजिटल नागरिक होने के नाते ये हम सब की व्यक्तिगत जिम्मेदारी भी है। इसीलिए हम सबको जो है साइबर सुरक्षा के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। और आधुनिक दुनिया में अभी फिलहाल अगर हम देखें डिजिटल युग की, ये बहुत बड़ी आवश्यकता भी है, तो इसके लिए हम सबको सतर्क रहना और जानकार रहना बहुत ज़रूरी है।

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में डुप्लीकेट फिल्म का ये गीत। समय हो चला है आपसे विदा लेने का, आपकी दोस्त मनीषा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हमारे युवा साथियों के लिए कार्यक्रम युवाणी। एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी जैसलमेर का ये गोल्डन सिटी चैनल है। शाम के 6 बजे हैं, आइए सुनते हैं हमारा दैनिक कार्यक्रम रामचरितमानस काल, एपिसोड नंबर 104।

परशुराम पर श्रीराम का वास्तविक स्वरूप प्रकट होने के साथ ही राजा जनक का धनुष यज्ञ पूर्ण रूप से संपन्न हो गया। मिथिलेश को अपने सम्मुख नतमस्तक देख मुनिवर विश्वामित्र बोले, हे राजन, यूं तो विवाह धनुष के अधीन था जो उसके टूटते ही संपन्न हो गया, फिर भी ब्राह्मणों, कुलगुरु तथा अन्य आदरणीय जनों से

पूछकर जो भी आपके कुल की रीतियां हों उन्हें पूरा कीजिए। अयोध्या दूत भेजकर राजा दशरथ को ये शुभ संवाद दीजिए ताकि उनके आगमन पर ये मंगल कार्य विधि पूर्वक पूरा हो सके। दूत अयोध्या को चले और इधर राजा जनक ने सगे संबंधियों तथा राज कर्मचारियों को पूरी नगरी, बाजार, राजमार्गों, भवनों, देवालयों को सजाने के आदेश दिए। मंडप बनाने वाले कुशल कारीगरों को बुला भेजा गया जिन्होंने हरित मणियों के पत्तों तथा फूलों और पद्मराग माणिकों के फलों से ऐसा मंडप बनाया जिसकी शोभा देख ब्रह्मा भी अपनी रचना भूल गए। भांति भांति के माणिक मोतियों, बहुमूल्य रत्नों तथा अन्य उपकरणों से नगर की सजावट होने लगी। जिस मंडप में जनक नंदिनी दुल्हन और रूप और गुणों के भंडार श्री राम दुल्हा होंगे वो मंडप त्रिलोक में अनूठा होना ही चाहिए।

ये भ्रंग बहुरंग विभंग कुंज ही पवन प्रसंगा।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हमारा दैनिक कार्यक्रम रामचरितमानस का। एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी जैसलमेर का ये गोल्डन सिटी चैनल है। शाम के 6:10 हुए हैं। अब आप सुनेंगे एक विशेष कार्यक्रम जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं। पद्मश्री से सम्मानित व्यक्तियों से साक्षात्कार, बात कर रहे हैं अशोक कुमार हलधर से बातचीत। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

स्नेह तस्मै उपदेशम दत्तवान। ऐसा उपदेश है एव भगवद्गीता नामना प्रसिद्ध है। प्रारंभे अर्जुन मोहग्रस्त आसीत। दृष्ट देवयम सवजनम कृष्ण है युधिष्ठिरम।

0: लिए काम करता था, यही हमारा उद्देश्य था। लेकिन जो मिल गया तो उसमें और थे, तो मैं हमारा इंस्पिरेशन बड़ा, समाज को हम और कुछ दे सकता है, यही सोच के अभी मेरा खुशी होता है। हाँ, जो काम धन्यवाद ज्ञापन करता है भारत सरकार को, उसके बाद मोदी जी को हमारा धन्यवाद ज्ञापन करते हैं, जो सही कर्मों का फल मिला है, मेरा मेरा समाज को मिला, हम दलित समाज में बिलोंग करता है उसको भी, और जो शिक्षा साहित्यिक अनुप्रेरणाएं, जिसको शिक्षा प्रेमी आदमी है, शिक्षा अनुरोगी मनुष्य, उसके साथ में जो हमारा विजय आज मिला है, उसको साथ मेरा विजय हम बांटना चाहता है।
1: अशोक जी, आपके अनुसार आज के युवाओं को अपने जीवन और करियर में आगे बढ़ने के लिए किन गुणों को विकसित करना चाहिए, उन्हें क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए?
0: नेक्स्ट जेनरेशन, देखिए, कोई काम दृष्टि ठीक रख के प्रोचेस्टा जारी रखना है अविराम, उसको डिसकंटिन्यू नहीं करना है। हमारा काम में बाधा आ सकता है, लुकआउट आ सकता है, लेकिन जब हमारा प्रोचेस्टा रहेगा, उसका ऊपर डिवोशन रहेगा काम का ऊपर, तब कामयाब हो जाएगा, यही मेरा सोच है। और यही मैंने सोच हम संसार को, मनुष्य आदमी को, समाज को देने चाहता है, जे शिक्षा चेतना आदमी को होता है, तब उसको सही दिशा सही काम में वो काम करेगा। देखिए, मुंह का तो जैसा वर्षा का पानी नदी में बह जाता है तो बह ही जाता है, तो समाज में पैसा बहुत ही आदमी आता है, भीड़ करता है।

0: अपना काम हो जाता है, चला जाता है, लेकिन वास्तविक में जो है वो एकेलाय है। सुनने से कोई चीज आविष्कार होता है और सुनने से ही विलीन हो जाता है, यही मेरा सिद्धांत है। तो इसमें कोई आवेश नहीं है, यही हमारा दीर्घ सिद्धांत है।
1: अशोक जी, आपका शैक्षणिक जीवन कैसा रहा और आपकी शिक्षा ने आपके व्यक्तित्व या फिर आपके कार्य क्षेत्र को किस प्रकार से प्रभावित किया, और जब आप एक छात्र थे तो किन अनुभवों ने आपको सबसे अधिक प्रेरित किया था?
0: शिक्षा तो चेतना देता ही है। देखिए, आज का जो समाज व्यवस्था है, आज का जो शिक्षा है, हमारा पीरियड में वैसा नहीं था, इतना फैसिलिटी भी नहीं था और इतना मोबाइल फोन भी नहीं था और टेलीफोन भी बहुत आदमी के पास नहीं था। बड़ा बड़ा आदमी जो था उसके पास टेलीफोन का ये व्यवस्था था, और जो सामान्य आदमी था उसके लिए एक ही काम था, जो हमको कुछ करना है तो क्या करेगा, हमको लेखा पढ़ा सीख के समाज को, परिवार को बचाना है, रोजगार करना है और उसके साथ हमारा जो चिंतन है उसको विकास करना है। जब मेरा विकास नहीं होगा तो हमारा परिवार का विकास भी नहीं होगा, समाज का विकास नहीं होगा। तो पहले अपना विकास करो, उसके बाद दूसरा विकास करने जाओ, चिंता करो, तब विकास होगा। तो वो सोच हम लोग मेरे को मिला इनिशियल स्टेज से, ये चीज हम अपना से सोचा। उस टाइम में कोई विनोदन का व्यवस्था नहीं था और शिक्षा चेतना छोड़ के दूसरा कोई रास्ता नहीं था। पोस्ट कार्ड का व्यवहार था, एक तो जोगाजोग व्यवस्था भी अच्छा नहीं था, पोस्ट कार्ड में सब कुछ, वो तो टाइमिंग फैक्टर था, जिससे कारण से एक ही चीज आनंद मिलता था, किताब में किताब पढ़ने से एक तो आनंद मिलता था और चेतना भी उसको साथ हो जाता है, शिक्षा भी उसमें ही जाता है, यही मेरा विचार था। तो हम शिक्षा के साथ में जुड़ा हुआ था, अभी तक जब तक जिंदा रहेंगे उसको संजय रहेगा।
1: अशोक जी, हमसे बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए और इन तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज आपने सुनी लेखक अशोक कुमार हल्दर के साथ विशेष बातचीत। सहेली मुखर्जी के सहयोग के साथ इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे निखिल कुमार। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में आप अपनी प्रतिक्रिया हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल पता है podcast.airnews@gmail.com।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विशेष कार्यक्रम जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे थे। एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी जैसलमेर का ये गोल्डन सिटी चैनल है। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हमारे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी जैसलमेर का ये गोल्डन सिटी चैनल है। शाम के 6:30 होने वाले हैं। अब आप सुनेंगे पहले हिंदी में प्रादेशिक समाचार, उसके पश्चात जिले की चिट्ठी और 6:45 का समय रहेगा राजस्थानी में प्रादेशिक समाचारों का, जिसे हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने हर नागरिक तक न्याय की पहुंच अधिक सुलभ और मजबूत करने के लिए दिशा 2.0 को मंजूरी दी। इस योजना को 5 साल के लिए लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नीति आयोग के सदस्य केवी राजू के साथ बैठक कर जिला आधारित विकास मॉडल पर चर्चा की। राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता UCC पर विधेयक बनाने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। और चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खेवसर ने कहा, कोटा, बीकानेर और जोधपुर प्रसूता मामले अलग अलग हैं, इन्हें एक दूसरे से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने दिशा 2.0 योजना को मंजूरी दे दी है। ये कार्यक्रम

0: इस साल पहली अप्रैल से 31 मार्च 2031 तक 5 साल तक की अवधि के लिए नए रूप में लागू किया जाएगा। 255 करोड़ रुपए की वित्तीय परिव्यय वाली इस योजना का उद्देश्य हर नागरिक तक न्याय की पहुंच सुलभ और मजबूत बनाना है। ये देश के 16 सतत विकास लक्ष्यों की प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाती है। इसे विकसित भारत 2047 के विजन से भी जोड़ा गया है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के अनुसार दिशा 2.0 में प्रौद्योगिकी सक्षम न्याय वितरण के लिए विधि संजीवनी नाम का नया घटक पेश किया गया है। टेली लॉ के जरिए ग्राम पंचायत स्तर पर VLE की ओर से 2.5 लाख सामान्य सेवा केंद्रों के नेटवर्क से सभी लोगों को मुकदमों से पहले मुफ्त कानूनी सलाह दी जाएगी। साथ ही कानूनी जागरूकता और साक्षरता के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन अभियान चलाए जाएंगे। नई दिल्ली में ब्रिक्स के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों NSA की आज बैठक हो रही है। 2 दिन की इस बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल कर रहे हैं। इसमें समूह के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख भाग ले रहे हैं। इन देशों में भारत, ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात शामिल है। वर्तमान समय में गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियां बैठक का मुख्य विषय है। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरों के तेजी से बदलते स्वरूप और उभरते सुरक्षा जोखिमों में नई तकनीक की भूमिका पर चर्चा की जा रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज नीति आयोग के सदस्य प्रोफेसर KV राजू की मौजूदगी में संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री निवास पर हुई इस बैठक में विकसित राजस्थान के संकल्प को पूरा करने के लिए जिला आधारित विकास मॉडल पर चर्चा की गई। इसके तहत हर जिले में आकांक्षी उपखंडों को जोड़ते हुए स्थानीय आवश्यकताओं और संसाधनों के अनुरूप विकास योजनाएं बनाने की बात कही गई। इससे आर्थिक गतिविधियों की रफ्तार बढ़ सकेगी, साथ ही स्थानीय स्तर पर रोजगार और निवेश के अवसर मिलेंगे। वन मंत्री संजय शर्मा ने CSR निवेश से संरक्षित वन क्षेत्रों में विकास पर जोर दिया है। श्री शर्मा आज सवाईमाधोपुर में राज्य स्तरीय CSR कॉन्क्लेव के उद्घाटन सत्र में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि वन विभाग और कॉरपोरेट क्षेत्र की साझेदारी से वन्य जीव संरक्षण, जैव विविधता और इको टूरिज्म पर अच्छा काम किया जा सकता है। 2 दिन के इस कॉन्क्लेव में राज्य के संरक्षित वन क्षेत्रों में CSR के माध्यम से किए जाने वाले कामों पर चर्चा की जा रही है। राजस्थान ATS ने जयपुर से जैश ए मोहम्मद से कथित रूप से जुड़ी एक महिला को गिरफ्तार किया है। मिलिट्री इंटेलिजेंस की सूचना पर पकड़ी गई बबीता धाकड़ उर्फ खदीजा नाम की ये महिला सवाईमाधोपुर जिले की मूल निवासी है। शुरुआती जानकारी के अनुसार ये लंबे समय से देश विरोधी नेटवर्क के लिए काम कर रही थी। पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी ने बताया कि UAPA एक्ट के तहत गिरफ्तार कर आरोपी महिला को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 27 जून तक रिमांड पर भेज दिया गया है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने आज जयपुर में समान नागरिक संहिता UCC को लेकर प्रेस वार्ता की। श्री पटेल ने कहा कि इससे समानता की भावना को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही भेदभाव को कम करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने UCC लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए विधेयक लाने के लिए उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया है।
1: राजस्थान सरकार नागरिक संहिता कानून बनाने हेतु एक विशेषज्ञों की कमेटी का गठन किया। उसमें माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती रंजना प्रकाश देसाई सेवानिवृत्त उच्चतम न्यायालय की न्यायाधिपति रही है, वो हमारी इस कमेटी की अध्यक्ष रहेगी। और इस कमेटी का गठन विधिवत पूर्व में किया जा चुका है और उनसे अपेक्षा की गई बहुत जल्दी से जल्दी इस कानून पर सभी तरह का मंथन कर ये राजस्थान समान नागरिक संहिता बना करके पेश करें।
0: वहीं श्री बेढम ने कहा कि UCC संविधान के अनुरूप है, ये लैंगिक समानता की दिशा में भी अहम है।
2: भारत में जन्म लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति हो, महिला हो या पुरुष हो, उनको समान नागरिक संहिता लागू हो, जिससे सभी वर्गों, सभी धर्मों और सभी लोगों को एक कानून मिलेगा तो एक जैसी सुविधाएं, व्यवस्थाएं, उनके अधिकार सुनिश्चित हो। समान नागरिक संहिता UCC राजस्थान के लिए लागू हो, इसके लिए विधेयक बनाने के लिए कमेटी का गठन किया।
0: चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खेवसर ने कहा है कि जोधपुर के पावटा सैटेलाइट

0: अस्पताल में प्रसूताओं के उपचार में पूरी गंभीरता बढ़ती जा रही है। विशेषज्ञों की देखरेख में उनका इलाज किया जा रहा है। मीडिया से बातचीत में चिकित्सा मंत्री ने कहा कि कोटा, बीकानेर और जोधपुर के मामले अलग अलग हैं, इन्हें एक दूसरे से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए।
1: इंजेक्टेबल जो अभी जोधपुर के अंदर मार्केट से जो ये ला रहे हैं, जो 25% अलाउड है, उसकी जांच करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। उसका जो है हम उस पर कड़ी निगरानी रखाए, क्योंकि ब्लीडिंग और इंजेक्टेबल और थोड़ा डिहाइड्रेशन, जो गर्मी पड़ रही है, और जो ये दो तीन चीजें ही हैं। तो हमारी डॉक्टर्स की टीम, मैंने जयपुर में भी गायनाकोलॉजिस्ट को और इसको बुलाया, डॉक्टर्स को बुला के हमने बैठ के बात करी, तो सब पॉइंटर्स जिन्हें पे आ रहे हैं, ये बहुत गंभीर विषय है जिसका एम्स की टीम ने भी जांच कर दी और हम भी जांच।
0: प्रसूताओं के स्वास्थ्य को लेकर जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर बीएस जोधा और अन्य डॉक्टरों के साथ बैठक की। मामले की जांच के लिए कमेटी गठित की गई है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने आज अपने आवास पर जनसुनवाई की। इस दौरान उन्होंने लोगों की परिवेदनाएं सुनी और उचित समाधान का आश्वासन दिया। मीडिया से बातचीत में श्री दिलावर ने कहा कि नए शैक्षणिक सत्र के लिए आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि जुलाई के पहले सप्ताह तक सभी विद्यालयों में शिक्षक लगाने के प्रयास किए जाएंगे।
2: 1 जुलाई को ही कोशिश करेंगे कि हम सबको शिक्षक मिल जाएं, और 1 जुलाई को नहीं तो कम से कम 10 जुलाई तक तो सबको शिक्षक मिल जाएंगे और किसी प्रकार की समस्या न होगी। हमारा प्रयास ये रहेगा कि सभी विद्यालयों में समान रूप से शिक्षक हो जाएं।
0: राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नए अध्यक्ष हनुमान सिंह राठौड़ ने आज अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया। उन्होंने बोर्ड के 41वें मुखिया के रूप में कमान संभाली। बोर्ड प्रशासक शक्ति सिंह राठौड़ ने उन्हें चार्ज सौंपा। श्री राठौड़ ने मीडिया से बातचीत में विद्यार्थियों के समग्र विकास के लिए नई शिक्षा नीति के समुचित क्रियान्वयन पर जोर देने की बात कही।
3: इस समय 2 प्रकार की योजनाएं हैं, कि हमारे राजस्थान के परिवेश के अनुसार विद्यार्थियों का शैक्षिक उन्नयन किस प्रकार से हो। दूसरा, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अपनी भारतीय ज्ञान परंपरा, ये विद्यार्थी काल से किस प्रकार उनके अंदर और प्रेषित की जाए कि वो विद्यार्थी आगे चलकर अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए हितकारक नागरिक के रूप में वो निकल कर आए। तो केवल परीक्षा परिणाम नहीं, तो साथ में उनका भौतिक, शैक्षिक, आध्यात्मिक, ये सब प्रकार का उन्नयन कैसा हो, इस प्रकार का प्रयत्न सबके सहयोग से करें।
0: राजस्थान लोक सेवा आयोग में सदस्य पद पर नियुक्त हुए डॉक्टर संतोष आनंद ने निष्पक्ष परीक्षा को अपनी पहली प्राथमिकता बताया है। श्री आनंद वर्तमान में भीलवाड़ा के माणिक्यलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय के प्राचार्य के रूप में काम कर रहे हैं। पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि वे जल्दी ही RPSC सदस्य के रूप में पदभार संभालेंगे।
4: प्राथमिकता ये है कि राजस्थान भर के जितने बच्चे मेहनत से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, उनको अपनी मेहनत के अनुरूप और उनकी योग्यता के अनुरूप उनका स्थान मिले, ये हमारी सबसे प्राथमिकता रहेगी। समय पर कैलेंडर हमने जारी कर चुकी है, RPSC कैलेंडर के अनुसार सारे काम हो रहे हैं, इसमें कोई इफ और बट और कोई प्रश्न चिन्ह नहीं।
0: राजस्थान लोक सेवा आयोग ने RAS मुख्य परीक्षा 2024 के अभ्यर्थियों को उत्तर पुस्तिकाएं ऑनलाइन देखने और डाउनलोड करने का मौका दिया है। आयोग सचिव ने बताया कि इसके लिए इच्छुक अभ्यर्थी 6 जुलाई से 27 जुलाई तक आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। सीमा सुरक्षा बल के महानिरीक्षक ML गर्ग ने आज राज्य के मुख्य सचिव V श्रीनिवास से भेंट की। इस दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव भास्कर ए सावंत भी मौजूद रहे। भेंट में विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। सीकर जिले के रामगढ़ सेठान क्षेत्र में आज सुबह एक सड़क हादसे में 2 लोगों की मृत्यु हो गई, वहीं एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया। रामगढ़ सेठान थानाधिकारी प्रकाश चंद्र ने बताया कि दुर्घटना सड़क किनारे खड़े ट्रोली और तेज रफ्तार ट्रेलर के बीच टक्कर से हुई। घायल व्यक्ति को चूरू रेफर किया गया है। उधर श्रीगंगानगर की सत्यम नगर में एक निर्माणाधीन भवन में करंट लगने से आज 2 श्रमिकों की मृत्यु हो गई। आज विश्व ऊंट दिवस है। ये दिन दुनिया के कई हिस्सों में आजीविका के लिए ऊंटों के महत्व को बताता है। रेगिस्तान का जहाज कहा जाने वाला ये जीव शुष्क क्षेत्रों का महत्वपूर्ण पशुधन है और भारत का गर्व माना जाता है। सहन शक्ति और सेवा का प्रतीक ऊंट लाखों लोगों के जीवन का सहारा है। ये कई दिनों और हफ्तों तक बहुत ही कम पानी के साथ जीवित रह सकता है और इसीलिए इसे रेगिस्तानी यात्रा के लिए आदर्श माना जाता है। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ऊंट को संस्कृति और परंपराओं का वाहक बताते हुए लोगों से इसे अपना

0: आदर्श साथी मानने का आग्रह किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने हर नागरिक तक न्याय की पहुंच अधिक सुलभ और मजबूत करने के लिए दिशा 2.0 को मंजूरी दी। इस योजना को 5 साल के लिए लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नीति आयोग के सदस्य केवी राजू के साथ बैठक कर जिला आधारित विकास मॉडल पर चर्चा की। राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता UCC पर विधेयक बनाने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। और चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खेवसर ने कहा, कोटा, बीकानेर और जोधपुर प्रसूता मामले अलग अलग हैं, इन्हें एक दूसरे से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप अब्दुल हनीफ से भरतपुर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख शिव कुमार वशिष्ठ ने तैयार किया है। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर भरतपुर में जिला स्तरीय समारोह विश्वप्रिय शास्त्री पार्क में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जल संसाधन मंत्री और जिला प्रभारी मंत्री सुरेश सिंह रावत मुख्य अतिथि रहे। इसके अलावा ब्लॉक और पंचायत स्तर पर भी योग कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान विभिन्न योगासन और प्राणायाम कराए गए। कार्यक्रम में विभिन्न जनप्रतिनिधियों के साथ आम जन ने भाग लिया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भरतपुर के बंद बारेठा पहुंचकर वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने बंद बारेठा की पाल का निरीक्षण किया और परियोजना के विस्तार कार्यों की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने बरसात के दौरान जल भराव की समस्या से निपटने के लिए बेहतर योजना बनाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने सर्किट हाउस में जनसुनवाई कर लोगों की समस्याएं सुनी और उनके समाधान के निर्देश दिए। सहकारिता विभाग की शासन सचिव और जिला प्रभारी सचिव आनंदी ने भरतपुर का दौरा कर अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने बजट घोषणाओं के कार्यों की समीक्षा की और अधिकारियों को योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुँचाने के निर्देश दिए। उन्होंने विभागों के बीच समन्वय के साथ गुणवत्ता और समयबद्धता पर विशेष ध्यान देने को कहा। संभागीय आयुक्त नलिनी काठोतिया ने संभाग स्तरीय शिकायत निवारण समिति की बैठक आयोजित की। बैठक में बरसात से पहले सड़कों की मरम्मत, विभागीय समन्वय और उद्योगों तथा आमजन से जुड़ी समस्याओं के समाधान पर चर्चा की गई। उन्होंने विद्युत संबंधी शिकायतों का समय पर निस्तारण करने के निर्देश दिए। विश्व पर्यावरण दिवस पर निर्वाचन विभाग की ओर से एक पेड़ लोकतंत्र के नाम कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके तहत सरकारी और निजी संस्थानों, कार्यालयों तथा सार्वजनिक स्थानों पर पौधारोपण कार्यक्रम किया गया। कौशल विकास और रोजगार के क्षेत्र में भरतपुर को पायलट परियोजना में शामिल किया गया है। स्किल डेवलपमेंट फॉर यू कार्यक्रम के तहत युवाओं की क्षमता और स्थानीय जरूरतों के अनुसार प्रशिक्षण दिया जाएगा। भारत सरकार के कौशल विकास मंत्रालय के सलाहकार डॉक्टर IB सुब्बा राव ने अधिकारियों के साथ बैठक कर वर्तमान स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने युवाओं का डाटा तैयार कर उनकी रुचि और स्थानीय रोजगार की संभावनाओं के अनुसार प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए। महिला और बाल विकास विभाग की ओर से ब्लॉक स्तर पर नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम आयोजित किए गए। ग्राम पंचायतों में विकास और जन कल्याण कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं को विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में सैन्य और प्रशासनिक अधिकारियों की समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में आपदा प्रबंधन, सुरक्षा व्यवस्था और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय पर चर्चा की गई। आमजन को राहत देने के लिए जिले में ग्रामीण और शहरी सेवा शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इन शिविरों में पट्टे, नामांतरण, निर्माण स्वीकृति, उपयोग परिवर्तन, प्रधानमंत्री आवास योजना और प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना सहित अनेक कार्य किए जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत स्तर और शहर में वार्ड स्तर पर शिविर लगाए जा रहे हैं। जल संसाधन मंत्री और जिला प्रभारी मंत्री सुरेश सिंह रावत ने वैर उपखंड के सरसेना गांव और भरतपुर विकास प्राधिकरण कार्यालय में आयोजित सेवा शिविरों का निरीक्षण किया। सूचना और जनसंपर्क कार्यालय में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं तथा उपलब्धियों पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन किया गया। प्रदर्शनी में किसान कल्याण, आयुष्मान भारत, पक्के आवास, सैन्य सुविधाओं और अन्य योजनाओं से संबंधित जानकारी चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित की गई। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कृषि विभाग की ओर से जागरूकता कार्यशाला आयोजित की गई। महात्मा गांधी वेटनरी कॉलेज में आयोजित इस कार्यक्रम में करीब 500 युवाओं, विद्यार्थियों और किसानों ने भाग लिया। कृषि वैज्ञानिकों ने मिट्टी स्वास्थ्य, जैविक खाद, जल संरक्षण और फसल विविधीकरण से संबंधित जानकारी दी तथा किसानों की जिज्ञासाओं का समाधान किया। जिला कलेक्टर कमर चौधरी ने शहर में जल

पहली खास समाचार। केंद्र सरकार हर नागरिक तई न्याय रिपू बत्ती सुलभ करावन सारू 2.0 ने मंजूरी दी। योजना ने 5 साल माए लागू करी जायला। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा नीति आयोग रा सदस्य केवी राजू रे साथे बैठक करने जिला आधारित विकास मॉडल माथे चर्चा करी। राज्य सरकार समान नागरिक संहिता UCC माथे विधेयक बनावण ने उच्च स्तरीय समिति बनाई। और चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर कयो कोटा बीकानेर और जोधपुर प्रसूता मामला न्यारा न्यारा है, आने एक दूजा जोड़ने नहीं देखा जावना चाहिए।

0: अहलकारा रे साथ मीटिंग करी। मुख्यमंत्री रेवास माते हुई ई बैठक में विकसित राजस्थान रा संकल्प ने पूरो करण सारू जिला आधारित विकास मॉडल माथे चर्चा करी जी। इन रे तहत हर जिला में आकांक्षी उपखंडा ने जोड़ता स्थानीय जरूरत संसाधन मुजब विकास योजना में बनाने की बात कही जी। आमाय माली गतिविधियां री रफ्तार बढ़ सकेला साथ ही स्थानीय थर माथे रोजगार और निवेश रा मौका मिलेला। जंगलात महकमारा मंत्री संजय शर्मा सीएसआर निवेश उन संरक्षित वन हल्का माय विकास माथे जोड़ दियो है। श्री शर्मा आज सवाई माधोपुर माय राज्य थर्रा सीएसआर कॉन्क्लेव रा उद्घाटन सत्र माय बोल रहा है। वना कयो के जंगलात महकमो और कॉरपोरेट हलकारी साझेदारियों वन्य जीव संरक्षण जैव विविधता और इको टूरिज्म माथे चोखो काम करियो जा सके है। दो दिन रा ई कॉन्क्लेव माय राज्य द्वारा संरक्षित वन हल्का माय सीएसआर री मार्फत करिया जावण वाला काम माथे चर्चा करी जावे। राजस्थान ईटीएस जयपुर जैश ए मोहम्मद री कथित रूप में जुड़ी एक महिला ने गिरफ्तार किया है। मिलिट्री इंटेलिजेंस री सूचना माथे पकड़ी जी बबीता धाकड़ उर्फ खदीजा नामरी आ महिला सवाई माधोपुर जिला री मूल रहवासी है। शुरुआती जानकारी मुजब आ लांबा बगतू देश विरोधी नेटवर्क साथे काम कर रही। पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी बतायो के यूएपीए एक्ट के तहत गिरफ्तार करी जी आरोपी महिला ने अदालत में पेश करी जा जठे उन्हें 27 जून तक रिमांड सारू भी दी जा है। ए समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रिया हो। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेठम आज जयपुर में समान नागरिक संहिता यूसीसी ने ले प्रेस वार्ता करी। श्री पटेल कहो के इन माय समानता री भावना ने बढ़ावो मिलेला और साथ ही भेदभाव ने कम करण माय मदद मिलेला। राज्य सरकार यूसीसी लागू करण री दिशा माय कदम बढ़ावता विधेयक लावण सारू ऊंचा थर री कमेटी बनाई है।
1: राजस्थान सरकार नागरिक संहिता कानून बनाने हेतु एक विशेषज्ञों की कमेटी का गठन किया। उसमें माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती रंजना प्रकाश देसाई सेवानिवृत्त उच्चतम न्यायालय की न्यायाधिपति रही है, वो हमारी इस कमेटी की अध्यक्ष रहेगी। और इस कमेटी का गठन विधिवत पूर्व में ही किया जा चुका है और उनसे अपेक्षा की गई कि बहुत जल्दी से जल्दी इस कानून पर सभी तरह का मंथन कर ये राजस्थान समान नागरिक संहिता बना करके पेश करें।
0: श्री बेडम कहो के यूसीसी संविधान मुजब है अरा लैंगिक समानता री दिशा में अहम है।
2: भारत में जन्म लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति वो महिला हो या पुरुष हो उनको समान नागरिक संहिता लागू हो जिससे सभी वर्गों सभी धर्मों और सभी लोगों को एक कानून मिलेगा तो एक जैसी सुविधाएं व्यवस्थाएं उनके अधिकार सुनिश्चित हो। समान नागरिक संहिता यूसीसी राजस्थान के लिए लागू हो इसके लिए विधेयक बनाने के लिए कमेटी का गठन किया है।
0: चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर कहो है कि जोधपुर रा पावटा सैटेलाइट अस्पताल में प्रसूतवा रा इलाज में पूरी गंभीरता बढ़ती जा रही है। विशेषज्ञ की देखरेख में वारो इलाज करियो जावे। मीडिया साथे बतल में चिकित्सा मंत्री कहो कि कोटा बीकानेर और जोधपुर रा मामला न्यारा न्यारा है आने एक दूजा जोड़ने नहीं देखा जावना चाहिए।
3: इंजेक्टेबल जो अभी जोधपुर के अंदर मार्केट से जो ये ला रहे हैं जो 25% अलाउड है उसकी जांच करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। उसका जो है हम उस पर कड़ी निगरानी रखें क्योंकि ब्लीडिंग और इंजेक्टेबल और थोड़ा डिहाइड्रेशन जो गर्मी पड़ रही है और जो ये दो तीन चीजें ही हैं तो हमारी डॉक्टर्स की टीम मैंने जयपुर में भी गायनाकोलॉजिस्ट को और इनको बुलाया डॉक्टर्स को बुला के हमने बैठ के बात करी तो सब पॉइंटर्स जिन्हें पे आ रहे हैं ये बहुत गंभीर विषय है जिसका एम्स की टीम ने भी जांच कर दी और हम भी जांच।
0: प्रसूतवारा स्वास्थ्य ने लिए जिला कलेक्टर अशोक रंजन मेडिकल कॉलेज रा प्राचार्य डॉक्टर बी एस जोधा और दूसरा डॉक्टरों के साथ मीटिंग करी। मामलारी जांचारू कमेटी बनाई जी है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर आज आपरा रहवास माते जन सुनवाई करी। इस दौरान वना लोगों री फरियादा सुनी और वाजिब निपटारा रा आश्वासन दिया। मीडिया साथ बतलमाए श्री दिलावर कहो के नुआ शैक्षणिक सत्र सारू जरूरी तैयारियां करी जा रही है। वना कहो के जुलाई रा पहला हफ्ता ताई सगली स्कूल में शिक्षक लगाने की कोशिश करी जावे।
4: एक जुलाई को ही कोशिश करेंगे कि हम सबको शिक्षक मिल जाएं और एक जुलाई को नहीं तो कम से कम 10 जुलाई तक तो सबको शिक्षक मिल जाएंगे और किसी प्रकार की समस्या ना होगी। हमारा प्रयास ये रहेगा कि

0: सभी विद्यालयों में समान रूप से शिक्षक हो जाए।
1: राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड रा नुआ अध्यक्ष हनुमान सिंह राठौर आज अध्यक्ष रा ओधव संभाल लियो। वणा बोर्ड रा 41वां मुखिया रा रूप में कमान संभाली। बोर्ड रा प्रशासक शक्ति सिंह राठौर वाने कामकाज सौंपियो। श्री राठौर मीडिया साथे बतलमाय परदेश रा समग्र विकास सारू नवी शिक्षा नीति रा वाजिब क्रियान्वयन माथे जोर देवन री बात कही।
2: इस समय दो प्रकार की योजनाएं हैं कि हमारे राजस्थान के परिवेश के अनुसार विद्यार्थियों का शैक्षिक उन्नयन किस प्रकार से हो। दूसरा जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अपनी भारतीय ज्ञान परंपरा ये विद्यार्थी काल से किस प्रकार उनके अंदर और प्रेषित की जाए कि वो विद्यार्थी आगे चलकर अपने देश के लिए अपने समाज के लिए हितकारक नागरिक के रूप में वो निकल कर आए। तो केवल परीक्षा परिणाम नहीं तो साथ में उनका भौतिक शैक्षिक आध्यात्मिक ये सब प्रकार का उन्नयन कैसा हो, इस प्रकार का प्रयत्न सबके सहयोग से करें।
1: राजस्थान लोक सेवा आयोग में सदस्य ओदा माते नियुक्त हुआ डॉक्टर संतोष आनंद निष्पक्ष परीक्षा ने पहली प्राथमिकता बताया है। श्री आनंद अबार माय भीलवाड़ा रा माणिकीलाल वर्मा राजकीय कॉलेज रा प्राचार्य रूप में काम कर रहा है। खबर नवीसा साथे बतलमाय वणा कयो के वे बेगाई आरपीएससी सदस्य रा रूप में ओ दो संभाल लेवेला।
3: प्राथमिकता ये ही कि राजस्थान भर के जितने बच्चे मेहनत से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं उनको अपनी मेहनत के अनुरूप और उनकी योग्यता के अनुरूप उनका स्थान मिले, ये हमारी सबसे प्राथमिकता रहेगी। समय पर कैलेंडर हमने जारी कर चुकी है, आरपीएससी कैलेंडर के अनुसार सारे काम हो रहे हैं, इसमें कोई पर बात और कोई प्रश्न चिन्ह नहीं।
1: बीएसएफ रा महानिरीक्षक एमएल गर्ग आज राज्य रा मुख्य सचिव वी श्रीनिवास रे साथे मिल्या। इस दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव भास्कर सामंती मौजूद रिया।

श्रोताओं अभी आप, एक मिनट, श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे हमारे ग्रामीण भाइयों के लिए कार्यक्रम ग्राम जगत एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी जैसलमेर का ये गोल्डन सिटी चैनल है। 7:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं शास्त्रीय संगीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत में आज आपने सुने गिरजा देवी के गाए कुछ गीत। FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी जैसलमेर का ये गोल्डन सिटी चैनल है। शाम के 8 बजे हैं, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में हमारी पहली पेशकश है फिल्म धड़कन से, जिसे आवाजें दी हैं अभिजीत ने।

0: रहते हो
1: सर।

अब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है कुल किले हुए, देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए।

ऐसे जैसे कोई दीवाना, ऐसे जैसे कोई दीवाना, मैंने नहीं जाना तुम्हें।

ऐसे जैसे कोई दीवाना, ऐसे जैसे कोई दीवाना, मैंने नहीं जाना तूने।

0: 白相待。
1: श्रोताओं हूँ, अभी आप सुन रहे थे अनुराधा पौडवाल और कुमार शानू की आवाज में फिल्म दिल है कि मानता नहीं थी। इस गीत के साथ ही हमारा फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी जैसलमेर का ये गोल्डन सिटी चैनल है। 8:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं सुगम संगीत। सुगम संगीत में आज हम सुनेंगे कुछ गजलें।

जो था वो झुका और नहीं रहा, उसमें कभी जो था

0: करीब 1.5-2 लाख नौजवान वहां होंगे। चलने के लिए भी मैं और फ्रांस के राष्ट्रपति अलग अलग स्टॉल पे जा रहे थे देखने के लिए भी नौजवानों ने क्या काम किया है। तो हम जोहो के स्टॉल पे गए, मैं हैरान था जी और गर्व होता था कि जोहो के स्टॉल पर यूरोप के नौजवानों की जो भीड़ लगी थी और वो समझना चाहते हैं कि ये क्या है दुनिया में नई चीज। भारत में शायद उतनी चर्चा नहीं होगी जितनी मैंने वहां फ्रांस में देखी।
1: शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज घोषणा की कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के 6 लोकसभा सांसद उनकी पार्टी शिवसेना में शामिल हो गए हैं। श्री शिंदे ने इन सभी सांसदों का पार्टी में स्वागत किया। मुंबई में संवाददाताओं से बातचीत में श्री शिंदे ने कहा कि आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक है।
2: आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक दिन है। हमारे 6 खासदार शिवसेना में शामिल हुए हैं, इससे शिवसेना की ताकत बढ़ रही है। शिवसेना सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी महाराष्ट्र में हो चुकी है और ये डबल इंजन की सरकार है। महाराष्ट्र को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी बहुत बड़े पैमाने पे सहयोग कर रहे हैं, इसलिए विकास हो रहा है।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच को मंजूरी दे दी है। इससे सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार होगा।
3: रेल मंत्रालय ने बताया कि इस परियोजना में पूर्वी तट रेलवे के 6 महत्वपूर्ण खंड शामिल हैं। इनमें बागुआपाला बुद्धा पंख, हरिदासपुर पारादी, खुर्दा रोड बलंगीर, नौपाड़ा गुनपुर, लांजीगढ़ रोड जूनागढ़ और बोबिल्ली सालूर शामिल हैं। इन मार्गों पर कवच की स्थापना से स्वचालित रेल सुरक्षा और किसी भी तरह की टक्कर से बचाव की क्षमता प्रदान करके रेलगाड़ी संचालन में उच्च स्तर की सुरक्षा प्राप्त करने में मदद मिलेगी। मंत्रालय ने कहा कि इस परियोजना से पूर्वी तट रेलवे द्वारा सेवा प्रदान किए जाने वाले ओडिशा और पड़ोसी क्षेत्रों के प्रमुख खंडों पर यात्री और मालगाड़ी दोनों के संचालन को लाभ होने की उम्मीद है। यह भीड़ भाड़ और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मार्गों पर कवच का विस्तार करने के उद्देश्य से जारी रेलवे के अभियान को मजबूती भी प्रदान करेगा। सौम्या की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। रोजगार और जन कल्याण को बढ़ावा देते हुए राज्य के विभिन्न विभागों में 1 लाख खाली पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई है।
4: वित्त मंत्री डॉक्टर ने आज 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक का राज्य बजट प्रस्तुत किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इसे विकसित भारत के साथ विकसित बंगाल के निर्माण का बजट बताया। बजट में राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 18% से बढ़ाकर 38% करने की घोषणा की गई। महिला सुरक्षा के लिए सभी थानों में नारी सहायता डेस्क और दुर्गा सुरक्षा स्क्वाड बनाया जाएगा। दार्जिलिंग और गंगा सागर को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। आकाशवाणी समाचार कोलकाता।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मंगोलिया के उलानबतार में मंगोलिया के राष्ट्रपति खुरेलसुख उखना से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पिछले साल श्री उखना की भारत यात्रा ने भारत मंगोलिया रणनीतिक साझेदारी को मजबूती प्रदान की थी। उन्होंने मुलाकात के दौरान मंगोलिया के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुभकामनाएं दी। इससे पहले दिन में विदेश मंत्री ने उलानबतार में मंगोलिया के विदेश मंत्री बत्सिस्तेग बचनमुख से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चर्चाओं में भारत मंगोलिया रणनीतिक साझेदारी मजबूती और संभावनाओं पर बात की गई। दोनों नेताओं ने विकास परियोजनाओं, क्षमता निर्माण, संस्कृति, शिक्षा, सुरक्षा और बहुपक्षीय मंचों में द्विपक्षीय सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में इसराइल के रक्षा मंत्रालय के महानिदेशक सेवानिवृत्त मेजर जनरल अमीर बराम से मुलाकात की। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि श्री बराम ने राजनाथ सिंह को दोनों देशों के विशेष रणनीतिक साझेदारी में भारत इसराइल रक्षा सहयोग को बढ़ाने के लिए इसराइल की प्रतिबद्धता से अवगत कराया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आज 16वीं ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बैठक से इतर नई दिल्ली में ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार परिषद के रक्षा मामलों के उप सचिव गादिर निजामीपुर से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों ने पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति

0: केस समीक्षा की। श्री डोभाल ने इथियोपिया की राष्ट्रीय खुफिया और सुरक्षा सेवा के विश्लेषण कार्यकारी निदेशक मिलियन लेमा तेदेसा से भी मुलाकात की। श्री डोभाल ने ब्राजील के बहुपक्षीय और राजनीतिक मामलों के सचिव कार्लोस कोजेंडे से भी मुलाकात की। दोनों पक्षों ने ब्रिक्स ढांचे के तहत भारत और ब्राजील के बीच सहयोग का स्वागत किया। गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार ने कहा है कि राष्ट्रीय विकास में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF की बहुत बड़ी भूमिका है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र के आर्थिक विकास में CISF के जवानों का बड़ा योगदान होता है। नई दिल्ली में आज CISF के नए मुख्यालय भवन की आधारशिला रखते हुए उन्होंने ये बात कही। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के संवादात्मक सत्र में भाग लिया। श्री शेखावत ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र का विकास लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन का साधन है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार रोजगार, विकास और समृद्धि के नए अवसर पैदा कर रही है। केंद्र सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने उन निजी छात्रों के मूल्यांकन के लिए एक नई नीति बनाई है जो हाल ही में ईरान अमेरिका संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा रद्द होने से प्रभावित हुए थे। न्यायमूर्ति SVN भट्टी और विपुल M पंचोले की पीठ को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि क्षेत्रीय संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में परीक्षा रद्द होने से प्रभावित छात्रों की चिंताओं को दूर करने के लिए नई अखिल भारतीय नीति तैयार की गई है। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ NEFED के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। पोर्टल का शुभारंभ नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता, दक्षता और सुगम संचालन को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। झारखंड में पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के विभिन्न हिस्सों में बिजली गिरने से 8 लोगों की मृत्यु हो गई और एक दर्जन से अधिक लोग घायल हुए। मृतकों में CPI के एक नेता, एक वार्ड सदस्य, एक किसान और अन्य निवासी शामिल हैं। घायलों को इलाज के लिए विभिन्न जिलों के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने प्रधानमंत्री और लेबर पार्टी के नेता पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। अपनी ही पार्टी के भीतर बढ़ते दबाव के बीच उन्होंने डाउनिंग स्ट्रीट में अपना कार्यकाल समाप्त किया। इस्तीफे का बयान देने से पहले स्टार्मर अपनी पत्नी के साथ 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर निकले, जहां लोगों ने उनका उत्साह के साथ स्वागत किया और तालियां बजाई। श्री स्टार्मर ने कहा कि सितंबर में संसद के सत्र के शुरू होने से पहले जब तक नया नेता नहीं चुन लिया जाता, तब तक वे पद पर बने रहेंगे।
1: Every decision I've taken,
2: मैंने जो भी फैसले लिए हैं उनमें हमेशा अपने देश को प्राथमिकता दी है, जिससे मैं प्यार करता हूं। इसीलिए मैं लेबर पार्टी के नेता का पद छोड़ रहा हूं। मैंने आज सुबह ब्रिटेन नरेश से बात करके उन्हें अपने फैसले के बारे में बता दिया है। अगर मुकाबले की स्थिति बनती है तो निश्चित रूप से सितंबर में संसद सत्र शुरू होने से पहले पार्टी का नेता चुन लिया जाए। प्रक्रिया पूरी होने तक मैं प्रधानमंत्री के पद पर बना रहूंगा।
0: कतर के औद्योगिक क्षेत्र रसलाफान में आज हुए विस्फोट में 13 लोगों की मौत हो गई। इनमें कुछ भारतीय नागरिक भी शामिल हैं। कतर के ऊर्जा मंत्री साद बिन फ्रीदा अलकाबी ने बताया कि कल शाम बरजान स्थानीय गैस आपूर्ति संयंत्र में विस्फोट के कारण लगी आग में 66 लोग घायल हो गए। जर्मनी के सुहल में ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में आज भारत के प्रीतम केंद्रे ने 10 मीटर एयर राइफल पुरुष स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। वहीं 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में महिलाओं और पुरुषों ने कांस्य पदक जीते। प्रतियोगिता में भारतीय निशानेबाजों ने आज अलग अलग स्पर्धाओं में 4 पदक हासिल किए। भारत 5 स्वर्ण, 1 रजत और 6 कांस्य पदक के साथ तालिका में शीर्ष पर है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप जे के मुकाबले में आज अर्जेंटीना ऑस्ट्रिया आमने सामने होंगे। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 10:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं ग्रुप आई में फ्रांस का सामना इराक से होगा। प्रतियोगिता के अन्य मुकाबलों में मिस्र और स्पेन ने शानदार जीत दर्ज की। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
3: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 291 अंक बढ़कर 77,094 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 90 अंक बढ़त के साथ 24,103 दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 35 पैसे कमजोर होकर ₹94.68 पर बंद हुआ।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के कोचिंग सेंटर में आज

घटना में 15 लोगों की मौत, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था होने के साथ ही भरोसेमंद विश्व शक्ति के रूप में उभर रहा है। उद्धव ठाकरे गुट वाले शिवसेना के 6 लोकसभा सदस्य शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट में शामिल। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच को मंजूरी दी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीन स्टारमर की लेबर पार्टी में असंतोष के बाद इस्तीफे की घोषणा। ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में प्रीतम केंद्रे के स्वर्ण पदक सहित भारतीय निशानेबाजों ने 4 और पदक जीते, तालिका में भारत शीर्ष पर। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: की धुन तुम धड़कन की धुन यही राग है।
1: दो दिल मिलेंगे ये उनके मिलन की शुरुआत है। हो
0: नैनों में सपने समाए थे जिसके

मिला के तो देखो इनमें है तस्वीर तेरी। ओ नैनों से नैना मिला के तो देखो इनमें है तस्वीर।

का कातिल वो तेरी अंगड़ाई है, तू बेमिसाल है तेरी तारीफ क्या करूं।

संगीत का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी जैसलमेर का ये गोल्डन सिटी चैनल है। 9:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं राजस्थानी लोक संगीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे राजस्थानी लोक संगीत FM बैंड 101.8 MHz पर आकाशवाणी जैसलमेर का ये गोल्डन सिटी चैनल है। रात्रि के 10 बजे हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम साहित्य की। आज आप साहित्य के में सुनेंगे डिंगल भाषा में मोहन दान जी का गायी काव्य पाठ।

कैलाशनी सकत अविश हति हंस वाहनी माता देहु सुमत दान मयादि जनादि तु ही भवानी तु ही जोग माजा तु ही बागबानी तु ही धरणी जाकाश विभो प्रसाद है तु ही बोह माजा विशेषूल धार है तु ही तार वेदन सटंग भात चेनी तु ही ज्ञान विज्ञान में सरु बिनी तो ही वेद विद्या चहुदय प्रकाशी कला मंड तो बीज की रूप राशि तो ही राग निराग वेदंग पुराणंग तो ही चंद्र में मंत्र में सर्व दानंग तो ही चंद्र में सूर्य में देक भाषंग तो ही तेज में पुंज में हो प्रकाशंग तो ही सौसनी पौसनी तीन लोकम तो ही जागरणी सौवनी दूर दोषंग तो ही धर्म नी कर्म नी जोग माजा तो ही खेत नी भूत नी भद्र काजा तो ही देखी जे कदाता तो ही जोग नी भोग नी हो विदाता तो ही चार बाणी तो ही चार खानी तो ही आत्मा पंच भूत ब्रह्मांडी तो ही सात दीपम नवे खंड मंडी तो ही घाट जो घाट ब्रह्मांड डंडी तो ही धरणी जाकाश तू वेद बाणी तो ही नित नव जोवना हो भवानी तो ही युद्र में लोक तीनु जपावे तो ही छन्न में खान पान खपावे तो ही एक जनेक माजा जपावे तो ही ब्रह्म भूतेश विष्णु कहावे तो ही मात हो एक ज्योति स्वरूपम तो ही काट माकाट माजा विरूपम तो ही और रंगार जो काट बांडी तो ही स्थावर जंगम पोष प्राणी तो ही एक चंडी हरिशन शंकर ब्रह्म भाषा जखंडी तो ही कत्स रूप मुद्दी बिलोही तो ही मोहनि देव देता विमोही तो ही देह वाराह देती जुपाजी तो ही दे धरा थम्ब दाडा जुठाजी तो ही विप्रहु मैं सुरापान टाजा तो ही काट बाजी रति देत मार्यो तो ही भारत जाजेंद्र को मान हार्या तो ही जाज के भक्त को गर्व गार्या तो ही काम करना विषय प्रेम भिन्नी तो ही देव देता दबी जीत दीनी तो ही जाग जोत निर्दान ले बै तो ही जीत देनी सदा देव विषय बै जदा नीन जो नहीं तुषा सीन सा सीन बैठी जो भीन पोड़े प्रकाशी जागे न सोवे न हाले न डोले गुप्त तीन छती करंती किलोले भुजालंग विशालंग उजालंग भवानी कृपालंग त्रिकालंग करालंग दिवानी युदानम जपानम चेहिन चेहिन मातान तातान भ्राता स्नेही विदिखान दिखान रूपान रेखिन माजान काजान साजा विचेखी युदासीन निजासीन निभासीन मंडी सरूपा विरूपान रूपा सचंडी कमंखान शंका शंका कहानी हरिंकार सतंग निरंकार बानी नवधान प्रधान मुग्धान बाली करोधा विरोधा निरोधा कृपाली जबंगान जंगा त्रिभंगान जानी जनगान जंगा सोरंगा पचानी शिखर पै फुहा राज सरूप तो राज जानी सुपापा कटे फंद मोरा पटे चंद चंदंग मैदान पापू निशाबा श्रृंग मात दुर्गे सुद्यावू सुनि साध की टेर ध्यावा भवानी गदम डूब दे ही ब्रतंग राज जानी भजे खेत नी भूत नी भूत प्रतंग भजे डाकर नी साकर नी छोड़ खेतंग पटे जीत देनी चबे देत नासंग भजे सिंकर नी काट भजे तोतला मंत्र जंत्र मंत्रंग बिरोले भजे नार सिंगी बली बीर रोले निशावास रम शक्ति को ध्यान धारे सुने नम करी नित दोष निवारे करी बीनती प्रेम सा भाट तंदक पढ़ते सुनते मिटे काल बंधक तो ही जाति जन्नादि की जेक माजा सबे पिंड ब्रह्मांड तो ही उपाजा तो ही वीर बाबन बंदे सुबारी तो ही वाहनी हंस देवी हमारी तो ही पंच तत्म धरी देख तारी तो ही गेह गे हम भाई शील वारी तो ही शैलदा श्री सावित्री स्वरूप तो शिव विष्णु अंतम तीर तपे तो ही पान कुंभ मधुपान करनी तो ही दुष्ट घाती निक प्राण हरणी तो ही जीव तो शीत तो रीत भरणी तो ही अंतरिखम तो ही धीर धरणी तो ही वेद में जीव रूपम कहा वै निराधार जधार संसार गावे तो ही त्रिगुणी तेज माजान भानी तो ही पंच भूतंग नमस्ते भवानी नमकार रूप कल्याणी कमला कला रूप तू कामदा तू विमला कुमारी करुणा कमंखा कराली जया विद्या भद्रकाली की काली शिवा शंकरी विश्व विमोहनी जंगवारा हिचा मुंडा दुर्गा जोगणी जम्मा हलक्ष्मी मंगला रति अखी महातेज जम्बार जालंद्र मखी तू ही गंग गोदावरी गोमती जंग तू ही नर्मदा जमुना सरस्वती यंग तो ही कोट सूरज तेजंग प्रकाशी तो ही कोट चंदानंद ज्योत भाषी तो ही कोट धाविश आकाश धार है तो ही कोट समीर साजा जपान है तो ही कोट दवानंद द्वार माना तो ही कोट दवे मित रूपम कराना तो ही कोट श्रृंगार लावण निकारी तो ही राध का रूप निधे मुरारी तो ही विश्व करता तो ही विश्व हरता तो ही स्थावर जंग मैं प्रवरता दुर्गा माधुरी जन बंदे ने जाजम जपे जाप जालन धरी तो सहायम नमस्ते नमस्ते जालन दिराड़ी सूर्य आश्रम नाग पुजंद प्राणी नमंकार रूपे सो आपो बिराजे कलिंकार हिंकार एंकार साजे अहंकार देवी सोहंकार भाषण शिंकार हुंकार त्रिंकार भाषण तो ही पात की नाशनी नार सिंगी तु ही जोग माजा अनेक असुरंगी तु ही तुझ जाने सुतोरो चरित्रम कहा मैं लखचंद तोरी सुकृतम अपारम अनंतम जुगु रूप जानी नमस्ते नमस्ते नमस्ते भवानी नमो ज्वाल ज्वाला मुखी तो हिजावे जबे शिखर वरदान को चंद पावे कहा न बखान लघु बुद्धि मेरी पतंगी कहा सूर्य सोम उजेरी रति है तुम्हारी मति है तुम्हारी चिति है तुम्हारी गति है तुम्हारी जुगम हाथ जोरी कहे चंद चंद घरो भक्ति के दुख आनंद कंदन ही मैं बिरादी करो आप बारी नमस्ते नमस्ते नमस्ते भवानी करी बिनती जो बंद जन सन्मुख रहो सुदान प्रकट अंबिका मुख कह मांग चंद वरदान जयति जयति जगमात जयति कारण सब करणी जयति भरण भंडार जयति तारण यर तरणी जयति दाज जयति बुद्धि गुरुदेव दत्त वालिक वरदाई जयति आदि अनादि पिंड ब्रह्मांड उपाय अवलोक लोक साध अखिल करणी असुर वद कालिकार होम होय साहिब सब ठोर पर

0: ਦੇਵੀ ਸੋਰਾ ਤਰਨਾ ਕਾਤ ਸੀਤਾ ਦੇਵੀ ਗਾਤ ਤਾ ਦੇਤ ਤਾ ਵਰਸ਼ ਗਮਿਆ ਦੇਵੀ ਨਵੇ ਖੰਡੇ ਬੂਨ ਤੋ ਨਿਵਿਆ ਦੇਵੀ ਬੰਨ ਮੈਂ ਸਮਾਧੀ ਸੁਰਤ ਬੁਰਨੀ ਦੇਵੀ ਪੂਜ ਤੇ ਪਾਸ ਪੂਰਨਾ ਪ੍ਰਸੰਨੀ ਦੇਵੀ ਬੰਸ ਰੂਰ ਤਰਾ ਦੀ ਹਿਵਲਿਆ ਦੇਵੀ ਤਮਨ ਤੋਰਾ ਕੀਆ ਜੋ पान ला दो देवी सप्तमी अष्टमी नाम नूदा देवी चौथ चौदश पूनम पूजा देवी सरस्वती लक्ष्मी महाकाली देवी कर्ण विष्णु विष्णु ब्रह्मा कमाली देवी रक्त नीलमणि चीतनगम देवी रूप जमार वी रूप जमम
1: गुप्ता जी मेरे कलिग थे। कई बार उन्होंने मुझे घर आने के लिए कहा तो एक दिन मैं सब पत्नी उनके घर पहुंच गया। उन्होंने अपनी पत्नी और दोनों बच्चों के साथ हमारा स्वागत किया। उनका घर छोटा तो था पर था सुरुचिपूर्ण सजा हुआ। सब कुछ करीने से सही जगह पर रखे हुए थे। दीवार और पर्दों का रंग मैच कर रहा था, वह भी लुभाने वाला था। पत्नी बहुत उत्सुकता से उन्हें देख रही थी। उसे गहराई से देखते और मिसेस गुप्ता से पूछताछ करते देख मुझे लग रहा था कि एक बड़ा खर्च शीघ्र ही मुझे झेलना पड़ सकता है। मगर इन सबके बीच मुझे दीवारों पर पेन और पेंसिल से लकीरें की हुई दिखाई दी। कहीं कहीं उस पर ABCD के साथ गिनती भी लिखी हुई थी। ये उल्टी सीधी लकीरें दीवार के उस हिस्से को बहुत भद्दा बना रही थी। मेरी नजर वहां अटकी देख मिसेस गुप्ता बोली, ये चार्मी और लक्ष्य करते रहते हैं। चार्मी 3.5 साल की हुई है, अभी अभी स्कूल जाना शुरू किया है। उसे देख 1.5 साल का यह लक्ष्य भी लकीरें करने लगता है। मैं तो साफ कर करके थक गई हूँ, मना करती हूँ पर ये मानते ही नहीं है। तभी चार्मी पास रखे 2 सोफों के पायों पर पैर रखकर खड़ी हो गई। लक्ष्य उसके नीचे से बार बार निकलने लगा। मिसेस गुप्ता लज्जित होकर खिसियाती सी उन्हें मना करने लगी। चार्मी नीचे उतरी, किनारे पड़े स्टूल को ठेला बनाकर घसीटने लगी। मिसेस गुप्ता ने फिर उसे मना किया, डांटा भी, पर चार्मी कहाँ मानने वाली थी। वह इस बार मामा के मोबाइल पर झपटी और उसे लेकर सोफे पर चढ़ गई। लक्ष्य भी उसके पीछे पीछे सोफे पर चढ़ गया। चार्मी को पासवर्ड पता था, उसने तेज आवाज में मोबाइल चलाना शुरू कर दिया। मिसेस गुप्ता को गुस्सा आ गया, उन्होंने एक झापट लगाई और पास के कमरे में बंद कर दिया। चार्मी रोने लगी तो साथ ही लक्ष्य भी रो पड़ा। उनके रोने के कारण मिसेस गुप्ता शर्मिंदा होने लगी, उन्होंने उन्हें फिर से बाहर निकाल दिया। गुप्ता जी उसे कवर करते हुए बोले, बहुत शैतान बच्चे हैं, हम टोकते रहते हैं, बच्चा ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ये मत करो, वो मत करो। हम उन्हें समझाते समझाते थक जाते हैं, मगर इनकी पिटाई करनी पड़ती है। सचमुच बहुत दुख होता है, पर क्या करें, ये मानते ही नहीं हैं। गुप्ता जी के चेहरे पर शर्मिंदगी साफ झलक रही थी। तभी मिसेस गुप्ता भी बाहर आ गई, वापस आ गई और चार्मी और लक्ष्य सुबकते हुए उनसे चिपके चिपके भयभीत सहमे सहमे गुप्ता जी की गोद में बैठ गए। मुझे बहुत तरस आ रहा था। बच्चों की आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते, उनकी आंखों में चमक और चेहरे पर मुस्कान होनी चाहिए। मिसेज ने उन्हें पुचकारा तो उन्होंने गुप्ता जी के सीने में मुंह छुपा लिया। मिसेज गुप्ता ने कहा, और तो और, ये बिना मोबाइल के न तो दूध पीते हैं और न खाना खाते हैं, इनके आगे कार्टून चला कर दो तो ये मानेंगे। तब भी खूब मिन्नतें करनी पड़ती है, डांट डपट करनी पड़ती है, खिलाते पिलाते हैं तो भी ध्यान मोबाइल में लगा रहता है, जल्दी से मुंह ही नहीं खोलते। आपको बताते हुए भी हमें शर्म आ रही है, पर क्या करें। चाय नाश्ता कर हम विदा हुए। बच्चे तब तक सहमे हुए बैठे रहे, मुझे अच्छा नहीं लगा, पर उस वक्त मैं कुछ कर भी नहीं सकता था। उन्हें प्यार से सहला कर बी ए गुड गर्ल, बी ए गुड बॉय कहकर हम वापस आ गए। घर आकर मिसेस ने कहा, देखो गुप्ता जी के बच्चे कितने शैतान हैं। शुक्र है हमारा सोनू ऐसा नहीं है, वह कभी हमें तंग नहीं करता, हमारा कहना भी मानता है। सोनू को उठाकर गोद में बिठाया और उसे प्यार करने लगी। हर बच्चा चंचल होता है, चंचलता तो हर को हम शैतानी कहते हैं। बचपन में बच्चा यह सब नहीं करेगा तो कब करेगा। बच्चे शांत नहीं बैठ सकते, वे कुछ न कुछ तो करेंगे ही। हमने अपने सोनू को एक रास्ता दिखा दिया, अब वह उसी पर चल पड़ा। अब किसी को कोई दिक्कत नहीं है, वह अपनी में लगा रहता है, हम अपनी में। उस दिन बात यहीं आई गई हो गई। एक दिन मैंने कुछ ड्राइंग सीटें, कलर, चॉकलेट्स, केक, बिस्किट, चिप्स लिए और पत्नी के साथ गुप्ता जी के घर पहुंच गया। दीवारों पर आड़ी तीसी लकीरें अभी भी थी। मुझे लकीरें देखते देख, मिसेस गुप्ता ने सफाई दी, मैं इन्हें साफ करती रहती हूँ पर ये फिर से कर देते हैं, क्या करूँ? अजी खूब मना करती हूँ पर मानते ही नहीं। मैंने बच्चों को अपने पास बुलाया, अब मान जाएंगे ना? मैंने उन्हें चॉकलेट चिप्स बिस्कुट देकर कहा, और ये देखो मैं आपके लिए सुंदर सुंदर ड्राइंग बुक भी लाया हूँ, और ये कलर भी इन डॉट्स को मिला के सुंदर सा चित्र बनाओ, फिर सामने दिए चित्र को देख देख कर इसमें कलर भर दो। अब दीवारों पर लकीरें खींचने की जरूरत नहीं है, इस बुक में करो। देखो ये हाथी मामा, गाय, झोपड़ा, नदी, सूरज, पेड़, चिड़िया, है ना? ये देखो रंग बिरंगा मोर नाच रहा है, ये सब आप भी बनाओ, ये सब आपसे बातें करने लगेंगे, पूरा जंगल घूमाओगे आप, है ना? अच्छा, बच्चे खुश होकर देखने लगे। गुप्ता जी और मिसेस गुप्ता हसरत और परेशानी से देख रहे थे। अरे इतना खर्च करने की क्या जरूरत थी, बच्चे हैं धीरे धीरे समझ जाएंगे। मैंने कहा हम बच्चों को हमेशा यही कहते हैं, बेटा ये मत करो, वो मत करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, कभी यह नहीं कहते कि बेटा ये करो ऐसा करो, हम ये कभी नहीं कहते। जब हम उन्हें यह कुछ बताएंगे ही नहीं तो वे वही करेंगे जो उनको पता है, जो उनको अच्छा लगता है। बात तो सही है, गुप्ता जी बोले। मिसेज गुप्ता ने उदास होकर कहा हम इनके लिए खूब खिलौने लाए हैं पर ये उनसे खेलते ही नहीं, मैं निकाल निकाल कर रखती हूँ पर ये तो उनकी तरफ देखते तक नहीं, दिन भर मोबाइल के पीछे भागते रहते हैं। मैंने फिर कहा पहले तो खिलौनों को लेकर उनके साथ आप खुद भी खेलो, तभी ये खेलना सीखेंगे, फिर ये अकेले भी खेल लेंगे। मोबाइल से अच्छी अच्छी ड्राइंग निकाल कर इन्हें बताइए, उनसे सुंदर चित्र बनाना सिखाइए, मोबाइल का दुरुपयोग भी ना होगा और ये सीखने लगेंगे, इनका मन भी लगा रहेगा। दोनों मेरी तरफ देख रहे थे। अब के मिसेज ने कहा बच्चों को समय दीजिए, बच्चों के साथ बच्चे बनकर रहिए, आपको भी अच्छा लगेगा और बच्चों को भी मजा आएगा, वे आपका कहना भी मानेंगे और शैतानी भी नहीं करेंगे। पत्नी ने चार्मी को अपनी तरफ खींचते हुए कहा और गोद में बिठा लिया। वह चार्मी के दोनों हाथों में केक और चॉकलेट लेने लगी तो वह अपनी मम्मी की तरफ देखने लगी। मम्मी ने लेने का इशारा किया तो उसने ले लिए। लक्ष्य अपने मम्मी की गोद में बैठा चॉकलेट और केक को देख रहा था। मैंने उसे चॉकलेट और केक देखकर कहा अब आप भी मम्मा को तंग नहीं करोगे, है ना, समझ गए? उसने नहीं, मैं सर गर्दन हिलाई और चॉकलेट और केक ले लिए। हम घर आ गए। कुछ दिनों बाद मैंने गुप्ता जी से बच्चों के हालचाल पूछे तो उन्होंने बताया वे दोनों मोबाइल को सिर्फ पेंटिंग देखने के लिए खोलते हैं, हमारे साथ खूब खेलते हैं, खेलकर थक जाते हैं तो जोरदार भूख लग जाती है और अपने आप भी दूध पी लेते हैं और खाना भी खा लेते हैं। मैंने कहा बस ये मत करो, वो मत करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो ना कहकर ये करो वो करो ऐसा करो वैसा करो यही कहने की जरूरत थी, उनको मार्ग दिखाने और उनके साथ थोड़ा सा बच्चा बनने की जरूरत थी, सब ठीक हो जाता है, बच्चे मारने के लिए नहीं प्यार करने के लिए होते हैं। मैंने खुश होकर ठहाका लगाया तो गुप्ता जी भी हंसने लगे।
2: बिटिया धन्य हुई तब कुटिया मेरी, जन्म लिया जब बिटिया तूने, कृत के हुई मैं ईश्वर की, पाकर तुस्सा तन्या धन, जब देखा पहली बार तुम्हें, नेत्र नीर युत दमक उठे, नेत्र नीर युत दमक उठे, देख मधुरी मुखमंडल तेरा, सबके चेहरे चमक उठे, संस्पर्श कर तेरा कोमल कलेवर, मेरा रोम रोम रमक उठा, देख मृदु मुस्कान तुम्हारी, अंग अंग उलसित महक उठा, जब आई इस संसार तब प्रथम बार, तुम व्याकुल सी प्यारी रोई थी, उस रोने में था मधुर राग, जीवन जीने का मृदु लिहास, मनमोहित तुझ पर हुआ मेरा, उन्मुत होकर मैं सोई थी, खुले जब चक्षु मेरे देखे मैंने, तुम ममता मही से ललित ललाई लिपटी थी, उनके स्नेहिल आंचल में तुम सिमटी थी, छलक रहे थे नैना निश्चल नानी के, जैसे उनकी तनुजा फिर से आई अंक धरा पर, हुआ हृदय अपार आनंदित मेरा, जब तुम इस आंचल में आई थी, मन में आच्छंदित प्रेम पुण्य वात्सल्य का घट छलका छल छल, हुई सुख अनुभूति मुझे, जब असीम ममता के अंबोधर, तेरा आनंद छू गया पयोधर, करने लगी तू पयपान, अतुलित आनंदित मैं निहार रही थी बार बार, यह जीवन नंदन वंसा खिल उठा, यह जीवन नंदन वंसा खिल उठा, सुवासित सौरभ

पसरी, जब चंचल चरण तुम्हारे हौले हौले चले थे आंगन। पद पायल भी चमक उठी मुक्त आकाश में उड़ने को आतुर, चाहत की चिड़िया चप चहक उठी। मेरा हृदय हर्षित विभोर वात्सल्य संपूरित हुआ, जब तेरी जीवा से माँ का मधुरिम उच्चार हुआ। वह स्वर तेरा अधरों की सी मिति पर जब जब प्रकटा, तब तब मन मयूर मुझ माँ का पल प्रति पल यूं नाच उठा था। तेरे कपोल की लाली माँ ओष्ठ की मृदुल मुस्कान सामिल, निर्जर सदर्श कल कल करती, गति मैं धूती मैं लय मैं बहती कल कल कल कल। तेरे आते ही आभासित हुआ मुझे ऐसा, वारिद वृष्टि से छाई चहु और हरितम आभा। चित चावन सा झूम उठा जब मैं की नटखट चंचलता, तेरी सौरभ से आह्लादित हो गया मेरा जीवन। यह जल अंधी में डूब गई जीवन की सरिता, ममता मई रंग में भीगी मैं समर्पित तुझ में हो गई। नारी तत्व का पूर्ण सुखद आभास बन माँ मैंने जाना, तुम जीवन का प्राण आधार हो मेरी अक्षय निधि, संपत्ति अतुल सृष्टि का संगार आत्मजा मेरा सुंदरतम संसार हो। सर्मिक अलंघ्य श्रृंग लांगता, मोड़ता सरिता मुख तोड़ता अभेद नग श्रम स्वेद को बहा, अहा प्रतिपल निकल नित्य करती विकल। भग्न मन रुग्ण तन श्वास प्रश्वास में फिर भी संकल्प दृढ़, और विश्वास भर श्रम पथ पर बढ़ा जा रहा है सर्मिक वर। सुखद संसार निज सहधर्मिणी सखा, सुखद संसार निज सहधर्मिणी सखा, स्वप्न बाल बने हैं आशा किरण भविष्य के, जी रहा है बार बार टूटता सहस्त्र बार, हारता नहीं मगर कंटा किरण पथ रौंदता जा रहा। तप्त बालू रेत जब अंगार अग्नसी लगे, तब भी डगर डगर क्रमरत श्रमरत सतृप्त मन बढ़ चला पुरुषार्थ मार्ग पर। शब्द कोश में नहीं पराजय शब्द जहां, सर्वत्र श्रम स्वेद से लिखे महाकाव्य सह जय के गीत महा। गुनगुनाता इन्हें विकट वक्त में सदा, रव न निकल सके पर अहा संकेत कर, परिचय करा रही श्रम साध्य क्रम का। विधाता विरंची नियंता भाग्य के, लिखा जो श्रम का अध्याय भीषण तम। साकार करने प्रातः से निशा तक पल पल टूटता नित प्रत जा रहा। सुन न सका जो गीत प्रेम प्रीत के, महसूस न सका जो समुद्री सहर्ष, कर न सका जो पढ़ने की बात भी यदा कदा हाँफता त्रस्तर तोड़ता। महसूस था वहाँ श्रम स्वर में छने गीत प्रेम प्रीत के, अह निस्तब रहा जठर की ज्वाला में, सौंदर्य का क्या करे क्या करे प्रेम का कृत्रिमता बांकपन। नहीं नहीं कभी नहीं चाह किंचित नहीं, सुन अहा का स्वर बस श्रम की डगर, बढ़ रहा निष्ठ मन लड़ रहा सुधा से लड़ेगा अंत तक। हृदय वीणा झन झन झनकृत होते सहसा हृदय वीणा के तार, अति मृदुल मंजुल है तान छेड़ा किसने या निराग। कौन है यह रहस्यमयी वादक जिसके सस्वर वांदन से उत्फुल्लित वदन नीरज सम खिल खिला अति। मोहक प्रमोदित हो जीवन वीथि का पर अंकित करता भाव विविध, द्युति युत स्वर की मधुरता सघन निवड कानन की रमणीयता, सर्वत्र अपार आकृष्ट कर विलोचन नित नूतन स्वप्न अलंकृत कर, अदर बिंफल सदस्य अमित सुखप्रद लगते। चंचल चंचला चपला सी उड़ त्रितंत्री का कल कल निर्झर नाद भाव विहलित होता गात। बता बता ओहिया विपची कौन है तेरा प्रिय साधक, जिहवा के अग्र भाग पर बैठी वीणा पाणी तुल्य रस में रसना पर जैसे अमृत कलश लुड़का रही, जिससे मैं की काया कुसुम चैकी चित चंचल था। अंतस आंगन में कण्वित होती प्रीत धुन क्षणभर में क्षण प्रभा की तरह, कोंद सहस्त्र वारिद के मध्य नहीं मेह से जीवन को प्रफुल्लित करती। बता ओ वादक इससे निश्रित राग पर अचानक कैसे झूम उठे खग दल सत दल, कैसे गा उठी इससे रागी नी मिला कोकिला, कैसे नृत्य कर उठे पंख विस्तारित कर मयूर। अहा सामवेद के मंत्रों सा अनुगुंजित नाद स्नेह स्नेह बहते पवन सा करे सनन सनन, भावों की उर्मियों लिए यह शब्द सुराग

कर्ण प्रिय अति कमनीय देख ठहर गए देव। स्वयं देवराज ने उर्वशी से कहा, रुको। नारद ने कहा, वीणा को छोड़ो, इस समय मृत्यु लोक का ध्वनि नाद स्वर्ण को छूता है, कौन बजा रहा हृदय वीणा, जिसका मजूल रा सवर अलकापुरी तक गूंज रहा। कोई हठी या पारंगत सर्व कुशल वादक बिरला ही होगा, जिसने साधा है इसे, जिसने आराधा है इसे। कैलाशपुरी पर ध्यान मग्न शिव सदैव रमते रहे, डमरू निनाद पर आज सहसा हृदय वीणा को सुन, ध्यान को छोड़ भाव विवल हो सुन रहे अद्भुत स्वर मनोहर। शेष सैया पर सोए विष्णु हत प्रभ हो कमला से बोले, ये किधर से आ रही अनवरत स्वर लहरी, मेरे श्रुति पट में गुलता मधुर विहास। कह उठे सृष्टि के सृजक विस्मय पूर्ण, किसने सज्जित की यह अद्भुत कृति, जो मैं भी ना निर्मित कर सका। आह अतुलित आनंद परमानंद प्रदात्री है यह वीणा, निश्चय ही त्रिलोक में दुर्लभतम अन्य वाद्य यंत्रों से विलग, देव ऋषि गर्दव यक्ष को अप्राय, किंतु महान मानव को सहज प्राय, यह हृदय वीणा जिसको कूथा पवित्र स्नेह के प्रेमिलता, देख रहा संसार निसृत मृदु मय राग, वीणा साधक तुम्हें प्रणाम। गृहिणी पाणी ग्रहण कर आई घर में, गृहिणी सदन बनाने स्वर्ग, अहर निसरत श्रम साधना भय भावना से भर प्राण, आलोकित कर गेह काज से सज्जित करती अपना आंगन, सब परिजन को एक सूत्र में बांध बताती न्यूतन रहा, चित में आलय हित रखे चाह, सुलक्षिणी श्रम साधि का सिधाई से चलती जाती, सुलक्षिणी श्रम साधि का सिधाई से चलती जाती, अनथक अनवरत स्वेद बहा आगार को अखिल अर्पण कर प्रमोदित करती है परिवार, आकांक्षा अभिलाषा न रख निज स्वप्न को स्वर हित चिंतन करती सदा समर्पित, करुणा निधि ये करुणा से निर्लय को करती है निर्मल, निश्चल ने की पैशनी अंतस में छलकाती, जिससे उमड़ी भाव उर्मियों से आत्मजन में सप्त सुप्त संपदा का उद्गम करती, अन्नपूर्णा की प्रतिछाया निस्दिन रत पाकशाला में सौजन के तन मन को संपोषित करने स्नेह पोषण है पकाती, सबका ध्यान रखाती, क्रम ही पूजा जिसकी श्रम ही साधना, किंतु नेपथ्य में रखकर श्रम क्रम को करती ईश्वर की आराधना, हितेशी अपनों की वह शुभ्र पलागम की आशा को अंतर मन में पाले, वात्सल्य की विधात्री संप्रीति से सरिता से बहते सिग्न सलील में निज जन मन निकेतन में विस्पारित करकट को सरल शांत बुआरी से स्वच्छ विमल है करती, सौख्य सदा सौपति, गृहिणी दृढ़ संकल्प न करती एक दिवस अवकाश, शीत उसमें सब ऋतुओं में अविराम आवास की, नित नूतन रूप आभरण से धूती मई छवि निखारे काम करे वह सारे, नव पर्व त्योहारों पर अभिनव साज प्रसादन से भवन को सखी सहेली भांति सजा धजा सोला श्रृंगार करवाती, देख सदन सौंदर्य सूची में मन ही मन मुस्काती, ग्रह की प्रस्तर भीतियां भी सच्चा दायित्व निभाती, गृहिणी की त्याग तपस्या अपनत्व की बन साक्षी सर्वत्र परिभाषा बतलाती, ढलती अर्ध सर्वरी में भी नहीं भूलती वो चंद्री का अपने कर्तव्य निभाने को, तज आलस्य छोड़कर तंद्रा प्रति पल कटिबंध रहती, परिवार की कुशल प्रबंधक ग्रह को सुशोभित करती, सकल कर्म काज को हृदय में कंज खिलाकर सूक्ष्मता से नियोजित करती, चंचल चपल विनम्र विनीता निस्वार्थ प्रेम की अनुचर श्रद्धा सुबरी की घोतक निज कुटुम्ब को कर ज्योतिर्मय दीप्तिमान बनाती, जो उजलित करता योम मंडल को प्रभा से तमी तिमिर की ससदर त्यों ही ग्रहणी आयतन आभा में अनुपम आभा से करती, ससुर की सास ससुर की आस सास की श्वास पति की प्राण प्रिया यह ग्रहणी जीवन की जगमग ज्योति ननंद की नेही देवर हित संबद्ध आत्मज हित तत्पर प्रतिदिन सकल कुटुंब की आभा ग्रहणी क्रम पुष्प की सौरभ।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम साहित्य की। एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी जैसलमेर का ये गोल्डन सिटी चैनल है। रात्रि के 10:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में हमारी पहली पेशकश है फिल्म ब्रह्मचारी से।

अगर देखे बिजली गालों को, अगर देखे बिजली बादल में शर्म से छुप जाए। तुझे मिसाल है तेरी, तारीफ क्या करूं, मस्ताना चाल है तेरी, तारीफ क्या करूं।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हेमलता की आवाज में फिल्म अखियों के भरोसे से ये गीत। फिल्म संगीत की अगली पेशकश है फिल्म शोर से।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत, फिल्म संगीत की आखिरी प्रस्तुति संतोष एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी जैसे में चाहिए गोलन स्पीकर रात्रि के 11 बजे हैं। अब आप सुन रहे हिंदी समाचार इसके पश्चात अंग्रेजी में समाचार इसे हम आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: इलाके में आज दोपहर आग दुर्घटना में 16 से 25 वर्ष की आयु के अधिकांश छात्र सहित 15 लोगों की मौत हो गई और 6 छात्र घायल हो गए। उन्हें लखनऊ के KGMC में भर्ती कराया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज घोषणा की कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के 6 लोकसभा सांसद उनकी पार्टी शिवसेना में शामिल हो गए हैं। श्री शिंदे ने इन सभी सांसदों का पार्टी में स्वागत किया। मुंबई में संवाददाताओं से बातचीत में श्री शिंदे ने कहा कि आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक है।
1: आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक दिन है। हमारे 6,000 शिवसेना में शामिल हुए हैं, इससे शिवसेना की ताकत बढ़ रही है। शिवसेना सेकंड लार्जेस्ट पार्टी महाराष्ट्र में हो चुकी है और ये डबल इंजन की सरकार है। महाराष्ट्र को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी बहुत बड़े पैमाने पे सहयोग कर रहे हैं, इसलिए विकास हो रहा है।
0: पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। रोजगार और जन कल्याण को बढ़ावा देते हुए राज्य के विभिन्न विभागों में 1,00,000 खाली पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के संवादात्मक सत्र में भाग लिया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शेखावत ने कहा कि पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र का विकास लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन का साधन है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार रोजगार, विकास और समृद्धि के नए अवसर पैदा कर रही है। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट के रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच की मंजूरी दे दी है। इससे सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार होगा। रेल मंत्रालय ने बताया कि इस परियोजना में पूर्वी तट रेलवे के 6 महत्वपूर्ण खंड शामिल हैं। इन मार्गों पर कवच की स्थापना से स्वचालित रेल सुरक्षा और किसी भी तरह की टक्कर से बचाव की क्षमता प्रदान करके रेलगाड़ी संचालन में उच्च स्तर की सुरक्षा प्राप्त करने में मदद मिलेगी। केंद्र सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने उन निजी छात्रों के मूल्यांकन के लिए एक नई नीति बनाई है जो हाल ही में ईरान अमेरिका संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा रद्द होने से प्रभावित हुए थे। न्यायमूर्ति SVN भट्टी और विपुल M पंचोली की पीठ को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि क्षेत्रीय संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में परीक्षा रद्द होने से प्रभावित छात्रों की चिंताओं को दूर करने के लिए एक नई अखिल भारतीय नीति तैयार की गई है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने प्रधानमंत्री और लेबर पार्टी के नेता पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। अपनी ही पार्टी के भीतर बढ़ते दबाव के बीच उन्होंने डाउनिंग स्ट्रीट में अपना कार्यकाल समाप्त किया। श्री स्टार्मर ने कहा कि सितंबर में संसद के सत्र के शुरू होने से पहले जब तक नया नेता नहीं चुन लिया जाता तब तक वे अपने पद पर बने रहेंगे।
2: Every decision I've taken,
3: मैंने जो भी फैसले लिए हैं उनमें हमेशा अपने देश को प्राथमिकता दी है जिससे मैं प्यार करता हूँ, इसीलिए मैं लेबर पार्टी के नेता का पद छोड़ रहा हूँ। मैंने आज सुबह ब्रिटेन नरेश से बात करके उन्हें अपने फैसले के बारे में बता दिया है। अगर मुकाबले की स्थिति बनती है तो निश्चित रूप से सितंबर में संसद सत्र शुरू होने से पहले पार्टी का नेता चुन लिया जाए। प्रक्रिया पूरी होने तक मैं प्रधानमंत्री के पद पर बना रहूंगा।
0: जर्मनी के सुहल में ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में आज भारत के प्रीतम केंद्रे ने 10 मीटर एयर राइफल पुरुष स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। वहीं 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में महिलाओं और पुरुषों ने कांस्य पदक जीते। प्रतियोगिता में भारतीय निशानेबाजों ने आज अलग अलग स्पर्धाओं में 4 पदक भी जीते। भारत 5 स्वर्ण, 1 रजत और 6 कांस्य पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: आकाशवाणी जयपुर अजमेर,
5: द न्यूज रेड बाय अभिनीत शुक्ला। People, most of them students, lost their lives in